0: ਹੁਣੇ ਤੁਸੀਂ ਸ਼੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਸ਼ਬਦ ਕੀਰਤਨ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਸਰਵਣ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਮੀਡੀਅਮ ਵੇਵ 343.6 ਮੀਟਰ ਯਾਨੀ 873 ਕਿਲੋ ਹਰਟਸ, ਡੀ ਆਰ ਐਮ 864 ਕਿਲੋ ਹਰਟਸ, ਐਫ ਐਮ ਬੈਂਡ 100.8 ਮੈਗਾ ਹਰਟਸ, ਐਫ ਐਮ ਬੈਂਡ 100.9 ਮੈਗਾ ਹਰਟਸ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਦੇ ਜਲੰਧਰ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਵੇਰ ਦੇ 6 ਵਜਣ ਵਾਲੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਤੋਂ ਕੁਝ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਸੁਣਾਂਗੇ ਹਿੰਦੀ 'ਚ ਸਮਾਚਾਰ।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मनोज। भारत आज नई दिल्ली में बिम्स्टेक गृह मंत्रियों की पहली बैठक की मेजबानी करेगा। बैठक में आतंकवाद, अंतर्राष्ट्रीय संगठित अपराध, मादक पदार्थ, कट्टरपंथ तस्करी, अवैध वित्तीय लेन देन और साइबर खतरों से जुड़े मुद्दों पर चर्चा होगी। गृह मंत्री अमित शाह ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि ये बैठक आतंकवाद और संगठित अपराध जैसी चुनौतियों से निपटने के लिए बिम्स्टेक देशों के साझा संकल्प को दर्शाती है। उन्होंने कहा कि सभी देश आपसी समन्वय के माध्यम से बिम्स्टेक क्षेत्र को अधिक सुरक्षित और मजबूत बनाने के लिए प्रतिबद्ध हैं। बंगाल की खाड़ी, बहुक्षेत्रीय तकनीकी और आर्थिक सहयोग पहल बिम्स्टेक एक क्षेत्रीय संगठन है जिसमें बांग्लादेश, भूटान, भारत, म्यांमार, नेपाल, श्रीलंका और थाईलैंड शामिल हैं। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि देश के युवाओं को नए विचारों, नवाचार और स्पष्ट उद्देश्यों के साथ भारत की विकास यात्रा में सक्रिय भागीदारी निभानी चाहिए। नई दिल्ली में कल दिल्ली संवाद को संबोधित करते हुए श्री गोयल ने वैश्विक चुनौतियों के बावजूद भारत की प्रगति और चुनौतियों से निपटने की क्षमता का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि 140 करोड़ की आबादी वाला भारत और उसकी युवा शक्ति देश की बड़ी ताकत है। जहां कई देशों में बुजुर्गों की आबादी बढ़ रही है, वहीं भारत की औसत आयु 30 वर्ष से कम है। अगले 3 दशकों तक इसके 30 वर्ष से कम रहने की उम्मीद है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 6 राज्यों में राज्यपालों की नियुक्ति की है। सिक्किम के राज्यपाल ओम प्रकाश माथुर अब केरलम के नए राज्यपाल होंगे। केरलम के राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अरलेकर को अब तमिलनाडु का राज्यपाल नियुक्त किया गया है। ब्रजमोहन राम ओडिशा के राज्यपाल नियुक्त किए गए हैं, जबकि डॉक्टर सुधा यादव कर्नाटक के राज्य

0: राज्यपाल होंगी। डॉक्टर ढाल सिंह बिसेन को उत्तराखंड का राज्यपाल बनाया गया है, जबकि दुष्यंत गौतम सिक्किम के राज्यपाल होंगे। सभी नियुक्तियां कार्यभार संभालने की तिथियों से प्रभावी होंगी। महाराष्ट्र में चुनाव आयोग ने ड्राफ्ट मतदाता सूची पर दावे और आपत्तियां दर्ज कराने की समय सीमा 26 अक्टूबर तक बढ़ा दी है। ड्राफ्ट मतदाता सूची 31 अगस्त को जारी की गई थी। नई समय सीमा के अनुसार दावों और आपत्तियों का निपटारा 10 नवंबर तक पूरा कर लिया जाएगा, जबकि अंतिम मतदाता सूची 16 नवंबर को जारी की जाएगी। पंजाब की सभी 117 विधानसभा सीटों के लिए विशेष गहन पुनरीक्षण SIR के बाद कल अंतिम मतदाता सूची जारी कर दी गई है। राज्य में मतदाताओं की कुल संख्या बढ़कर 2,10,00,000 से अधिक हो गई है। इनमें 506 ट्रांसजेंडर मतदाता शामिल है। छत्तीसगढ़ में चल रहे नक्सल विरोधी अभियान में सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी मिली है। इसमें सुकमा जिले के घने जंगलों में नक्सलियों द्वारा भारी मात्रा में छिपाकर रखे गए हथियार बरामद किए हैं, जिनमें स्वचालित हथियार, जिंदा कारतूस और विस्फोटक शामिल हैं। ग्रामीण विकास मंत्रालय आज से विजयवाड़ा में राष्ट्रीय सरस मेला आयोजित करेगा। विजयवाड़ा में पहली बार लगने वाला ये मेला ग्रामीण गरीबी उन्मूलन सोसाइटी और आंध्र प्रदेश सरकार के सहयोग से आयोजित किया जाएगा। इसमें देश के 30 से अधिक राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के स्वयं सहायता समूहों से जुड़ी 1,500 से अधिक महिला उद्यमी भाग लेंगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू इसका उद्घाटन करेंगी। मेला इस महीने की 31 तारीख तक चलेगा। भारत और ईरान के शीर्ष सुरक्षा अधिकारियों के बीच क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय नवीनतम घटनाक्रमों और परस्पर हित के मुद्दों पर बातचीत हुई। कल नई दिल्ली स्थित ईरान के दूतावास ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि ईरान की सर्वोच्च राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद सचिव मोहसिन रेजाई ने राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजित डोभाल के साथ फोन पर बातचीत की। बैडमिंटन में इस साल BWF वर्ल्ड टूर का खिताब जीतने वाली PV सिंधु और पुरुष डबल्स जोड़ी सात्विक साईराज रंकी रेड्डी तथा चिराग शेट्टी आज से आरंभ हो रहे डेनमार्क ओपन में भारतीय अभियान की अगुवाई करेंगे। सिंधु का महिला सिंगल्स में सामना ओलंपिक चैंपियन और दुनिया की नंबर एक खिलाड़ी कोरिया की एन से यंग से होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: मीडियम वेव 343.6 मीटर यानी 873 किलोहर्ट्ज से असी आकाशवाणी दे जलंधर केंद्र तो बोल रहे हैं। ज्ञान अमृत।

डीसीजी आज दा खेतीबाड़ी प्रोग्राम मीडियम वेव 343.6 मीटर यानी 873 किलोहर्ट्स ते असी आकाशवाणी दे जलंधर केंद्र तो बोल रहे हां। सवेर दे 6:40 होए ने। आओ हुण सरवण कर दिया श्री रामचरित मानस दा लड़ीवार पाठ मानस गान।

तथा कुलगुरु वशिष्ठ के साथ अयोध्या तथा जनकपुर से आए सभी लोग चित्रकूट में 4 दिनों से निवास कर रहे हैं। श्री राम को देख सभी नरनारी अत्यंत हुलसित हैं। सबकी यही इच्छा है कि वे श्री राम को साथ लिए बिना वापस न लौटें। उन्हें वन में छोड़कर जिन्हें घर नगर में रहना अच्छा लगे, समझ लेना चाहिए कि विधाता उनके विपरीत हो गया है। यदि देव अनुकूल हो तभी राम के निकट वन में निवास करने का सौभाग्य मिल सकता है। एक दिन माताओं के पास समय देख राजा जनक का रनिवास उनसे मिलने आया। कौशल्या ने आदर सहित उनका सत्कार किया, उन्हें उचित सम्मान से आसन दिए। दोनों टोलियों के व्यक्ति पुलकित किंतु शिथिल हैं, उनकी आंखों में हैं प्रेम और शोक के आंसू।

0: स्वास्थ्य सेवा सम्बद्ध निर्णयेषु सम्यगवबोधनाय साहाय्यं प्रदानं शुल्क सम्बद्ध विवादानां निवारणं तथा चिकित्सा सेवासु विश्वासं वर्धनं च अस्ति। केन्द्रीय स्वास्थ्य सचिवया पुण्यसलिला श्रीवास्तव इत्यनया अस्मिन् विषये सर्वेषां राज्यानां केन्द्रशासित प्रदेशानां च मुख्य सचिवेभ्यः पत्रं लिखितम्। केन्द्रीय वाणिज्य उद्योग मंत्री पीयूष गोयलः 30-2000 वर्षस्य सीमावधि पर्यन्तं भारत ब्रिटेन द्विपक्षीय व्यापारं द्विगुणीकर्तुं आह्वानं कृतवान्। मंत्री गोयलः नवदिल्ल्यां भारत ब्रिटेन संयुक्त आर्थिक व्यापार समित्याः 16 सत्रे जेट्को व्यापारिक पूर्ण अधिवेशनं सम्बोध्य इदं प्रतिपादितवान्। सतत संवादेन संस्थागत तंत्रैः प्रवर्धित सहकारित्वेन च भारत ब्रिटेन देशयोः आर्थिक सानिध्यं दृढीकरणाय भारतस्य दृढसंकल्पः वाणिज्य मन्त्रिणा समाहूतः। तेन अभिहितं यत् एतेन उपक्रमेण उभयोः देशयोः उद्यमेभ्यः नूतनाः अवसराः अनावृताः भविष्यन्ति। भारतर्तु विज्ञान विभागेन सूचितं यत् दिल्ली हरियाणा चंडीगढ़ पंजाब राज्यानां केषुचित् क्षेत्रेषु मेघगर्जन पुरस्सरं विद्युत्पातस्य संभावना अस्ति। अद्य आंध्रप्रदेश जम्मू कश्मीर लद्दाख गिलगित बालिस्तान मुजफ्फराबाद राजस्थानेषु अपि एतादृश्यः ऋतु परिस्थितयः संभाव्यन्ते। एतदतिरिक्तं पूर्वोत्तर भारते हिमाचल प्रदेश केरलं तमिलनाडु पुदुचेरी एतेषु राज्येषु अपि मेघगर्जनेन सह झंझावातस्य संभावना अस्ति इति वार्ताः।
1: मीडियम वेव 343.6 मीटर यानी 873 किलोहर्ट्ज ते असी आकाशवाणी दे जलंधर केंद्र तो बोल रहे हैं। सवेर दे 7 बजे ने पेश ने मुख समाचार। सर्वोच्च अदालत ने किया पटाकिया कारण होने वाले हवा प्रदूषण नाल निजिठण लई पाबंदी लगाउन दी बजाय जनतक जागरूकता अति स्वय इच्छा हिस्सेदारी वधेरे प्रभावशाली होवेगी। केंद्र सरकार ने पंजाब अते चंडीगढ़ समेत सारे राज्यां अते केंद्र शासित प्रदेशां नूं क्लीनिकली अदारियां विच मुहैया करवाईयां जाण वालियां सेवावां अते सहूलतां दियां दरां स्पष्ट तौर ते दर्शाउण दे लई किया है। पंजाब विच विशेष तरतीब सोध SIR 226 मुकम्मल सारे 117 विधानसभा हल्कियां दियां अंतिम वोट सूचियां जारी। पंजाब सरकार वल्लों पहुंच तो दूर वाले इलाकियां विच मच्छरां दे लार्वे नूं नष्ट करन लई उन्नत ड्रोनां दी वरतों दी शुरुआत। पंजाब पुलिस मुखी गौरव यादव ने सारे संबंधित अधिकारियां नूं खुफिया जानकारी सांझी करन अते शांति भंग करन दी किसी भी कोशिश नूं रोकन लई उच्च चौकसी बनाई रखन दे निर्देश दित्ते। पंजाब सरकार ने दिग्गज क्रिकेट खिडारी युवराज सिंह वल्लों स्थापित यूवी कैन फाउंडेशन नाल पटियाला विखे छाती अते मूंह दे कैंसर दी व्यापक स्क्रीनिंग दा प्रोजेक्ट चलाउण लई इक समझौता सहबंध कीता। माई पागो आर्म्ड फोर्सेस प्रेपरेटरी इंस्टीट्यूट मोहाली दियां 17 महिला कैंडिडेट्स ने NDA दी लिखित परीक्षा पास करके वड्डी उपलब्धि हासिल कीती। ईसन हुन तक दियां मुख खबरां। मीडियम वेव 343.6 मीटर यानी 873 किलोहर्ट्ज ते असी आकाशवाणी दे जलंधर केंद्र तो बोल रहे हां। हुन पेश है जी प्रोग्राम सुनी सवेर। प्रोग्राम लेके हाजिर ने रीमा गुगलानी।

जे ऐप नहीं डाउनलोड की थी ते हुण कर लो पर वेव्स ऐप ते भी सुन सकदे हो नहीं ता फिर डायरेक्ट रेडियो दा कान मरोड़ के 100.8 मेगाहर्ट्ज़ 100.9 मेगाहर्ट्ज़ या फिर 343.6 मेगाहर्ट्ज़ 873 किलोहर्ट्ज़ ते सानू सुनो बिल्कुल लाइव ए है जी सोनी सवेर ते मैं हां तुहाडी आरजे रीमा अज दा दिन है 13 अक्टूबर बहुत ही ज्यादा खास है जी अज दे दिन भारत इतिहास विच कई महत्वपूर्ण मोड़ आए कई सियासी तब्दीलियां भी हुई और कई महान शख्सियतां दी जिंदगी दे नाल अज दा दिन जुड़िया हुआ है भारत दीआं कुछ अजिहीआं अहम घटनावां दे बारे तुहानूं दसना चाहुंदी हां किशोर कुमार दा देहांत अज दे दिन होया सी 1987 दे विच ते अज दा दिन 1999 दे विच 13 अक्टूबर नूं साडे साबका प्रधानमंत्री मरहूम प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने तीजी बार प्रधानमंत्री वजों सहुं चुकी सी एनडीए दी अगवाई वाली इह उहनां दी सरकार सी ते 2000 दा उह सन याद करो जदों पुलाड़ यात्री कल्पना चावला दी दूजी उड़ान दा ऐलान होया सी अमरीकी पुलाड़ एजेंसी नासा वल्लों भारती मूल दी साडे कल्पना चावला STS-107 मिशन दे विच दूजी बार पुलाड़ च गए सी इहदा अधिकारत ऐलान होया सी इस दे नाल ही अज दे दिन ही RTI यानी कि सूचना दे अधिकार दे कानून नूं मंजूरी मिली सी और अज दा दिन 2005 दे विच जम्मू कश्मीर च इतिहासिक अमन सेतु दा दोबारा उद्घाटन होया सी सो जी ए सी अज दे दिन दा इतिहास ते हुण वधदे आं कहानी वल

0: ਇਸੀ ਅੱਜ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੋਹਣੀ ਸਵੇਰ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਰੀਮਾ ਗੁਗਲਾਨੀ। ਮੀਡੀਅਮ ਵੇਵ 343.6 ਮੀਟਰ ਯਾਨੀ 873 ਕਿਲੋ ਹਰਟਸ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਦੇ ਜਲੰਧਰ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਵੇਰ ਦੇ 8 ਵਜ ਰਹੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਸੁਣਾਂਗੇ ਸਮਾਚਾਰ ਪ੍ਰਭਾਤ, 8:15 ਵਜੇ ਮਾਰਨਿੰਗ ਨਿਊਜ਼ ਤੇ 8:30 ਵਜੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖ਼ਬਰਾਂ।
1: ਨਮਸਕਾਰ, ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਸੇ ਸਮਾਚਾਰ ਪ੍ਰਭਾਤ ਕੇ ਸਾਥ ਮੈਂ ਫਰਹਤ ਨਾਜ਼। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 6 राज्यपालों की नियुक्ति की। राजेंद्र विश्वनाथ अरलेकर तमिलनाडु और ओपी माथुर केरलम के राज्यपाल होंगे। भारत आज नई दिल्ली में बिम्स्टेक के गृहमंत्रियों की पहली बैठक की मेजबानी करेगा। चुनाव आयोग ने सभी पात्र मतदाताओं का नाम मतदाता सूची में सुनिश्चित करने के लिए राष्ट्रव्यापी जागरूकता अभियान शुरू किया। जम्मू कश्मीर के पुंछ जिले में नियंत्रण रेखा के पास हुए विस्फोट में लश्कर ए तैयबा के 4 आतंकवादी मारे गए। भारत में इंटरनेट ग्राहकों की संख्या 111 करोड़ से अधिक हुई। और बैडमिंटन में डेनमार्क ओपन 2026 आज से ओडेंस में शुरू होगा। अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 6 राज्यों में राज्यपालों की नियुक्ति की है। सिक्किम के राज्यपाल ओम प्रकाश माथुर अब केरलम के नए राज्यपाल होंगे। केरलम के राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अरलेकर को अब तमिलनाडु का राज्यपाल नियुक्त किया गया है। ब्रजमोहन राम उड़ीसा के राज्यपाल नियुक्त किए गए हैं, जबकि डॉ सुधा यादव कर्नाटक के राज्यपाल होंगे। डॉ ढाल सिंह बिसेन को उत्तराखंड का राज्यपाल बनाया गया है, जबकि दुष्यंत गौतम सिक्किम के राज्यपाल होंगे। सभी नियुक्तियां कार्यभार संभालने की तिथियों से प्रभावी होंगी। भारत आज नई दिल्ली में बिम्स्टेक गृहमंत्रियों की पहली बैठक की मेजबानी करेगा। हमारी संवाददाता ने बताया है कि बैठक में आतंकवाद, अंतर्राष्ट्रीय संगठित अपराध, मादक पदार्थ, कट्टरपंथ, तस्करी, अवैध वित्तीय लेनदेन और साइबर खतरों से जुड़े मुद्दों पर चर्चा होगी।
2: केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सभी भाग लेने वाले गृह मंत्रियों और सदस्य देशों के प्रतिनिधि मंडलों का हार्दिक स्वागत करते हुए कहा कि यह ऐतिहासिक बैठक आतंकवाद और संगठित अपराध जैसी चुनौतियों से निपटने के लिए बिम्स्टेक देशों के साझा संकल्प को दर्शाती है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में श्री शाह ने कहा कि सभी देश आपसी समन्वय के माध्यम से बिम्स्टेक क्षेत्र को अधिक सुरक्षित और मजबूत बनाने के लिए प्रतिबद्ध हैं। बहुक्षेत्रीय तकनीकी और आर्थिक सहयोग के लिए बंगाल की खाड़ी क्षेत्र की पहल बिम्स्टेक एक क्षेत्रीय संगठन है में बांग्लादेश, भूटान, भारत, म्यांमार, नेपाल, श्रीलंका और थाईलैंड शामिल हैं। इसका उद्देश्य बंगाल की खाड़ी से लगे देशों और आसपास के क्षेत्रों में आर्थिक तथा तकनीकी सहयोग को बढ़ावा देना है। सौम्या शरण, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि देश के युवाओं को नए विचारों, नवाचार और स्पष्ट उद्देश्यों के साथ भारत की विकास यात्रा में सक्रिय भागीदारी निभानी चाहिए। नई दिल्ली में कल दिल्ली संवाद को संबोधित करते हुए श्री गोयल ने वैश्विक चुनौतियों के बावजूद भारत की प्रगति और चुनौतियों से निपटने की क्षमता का जिक्र किया।
3: 140 करोड़ की आबादी वाला भारत और उसकी युवा शक्ति देश की बड़ी ताकत है। जहां कई देशों में बुजुर्गों की आबादी बढ़ रही है, वहीं भारत की औसत आयु 30 वर्ष से कम है। अगले 3 दशकों तक इसके 30 वर्ष से कम रहने की उम्मीद है। हमें विश्वास है वर्ष 2047 तक भारत की अर्थव्यवस्था $30 ट्रिलियन की हो जाएगी।
1: निर्वाचन आयोग ने प्रत्येक पात्र नागरिक का नाम मतदाता सूची में सुनिश्चित करने के प्रयास तेज कर दिए हैं। इसके लिए सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में विशेष अभियान चलाया जा रहा है। राष्ट्रीय

0: राजधानी में 13 जिला निर्वाचन अधिकारी, 70 मतदाता पंजीकरण अधिकारी, 1313 बूथ स्तर के अधिकारी, बीएलओ पर्यवेक्षक और 14,900 से अधिक बूथ स्तर के अधिकारी इस कार्य को पूरा करने के लिए काम कर रहे हैं। दिल्ली के मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने सूचित किया है कि 18 अक्टूबर को सभी मतदान केंद्रों पर विशेष शिविर भी आयोजित किए जाएंगे। पंजाब की सभी 117 विधानसभा सीटों के लिए विशेष गहन पुनरीक्षण SIR के बाद कल अंतिम मतदाता सूची जारी कर दी गई है। राज्य में मतदाताओं की कुल संख्या बढ़कर 2,10,00,000 से अधिक हो गई है। इनमें 506 ट्रांसजेंडर मतदाता भी शामिल हैं। महाराष्ट्र में चुनाव आयोग ने ड्राफ्ट मतदाता सूची पर दावे और आपत्तियां दर्ज कराने की समय सीमा 26 अक्टूबर तक बढ़ा दी है। ड्राफ्ट मतदाता सूची 31 अगस्त को जारी की गई थी। नई समय सीमा के अनुसार दावों और आपत्तियों का निपटारा 10 नवंबर तक पूरा कर लिया जाएगा, जबकि अंतिम मतदाता सूची 16 नवंबर को जारी की जाएगी। ये समाचार हमारी न्यूज ऑन AIR ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं।
1: दांत खाज खुजली में आराम, हानि रहे बेदाग जालिम लोशन।
2: तो शुरू करें इन्वेस्टिंग का पार।

0: सेबी इन्वेस्टर जागरूकता पहल, जानकारी के लिए सेबी इन्वेस्टर वेबसाइट विजिट कीजिए। डाउनलोड सेबी सारथी ऐप।
1: सुनती हो, कमाल ही हो गया।
2: क्या हो गया ऐसा?
1: सिलेंडर आने में देरी हो रही थी ना, देखो आज आ गया।
2: ये कमाल कैसे हो गया?
1: मैंने www.tgportal.gov.in पर जाकर अपनी कंप्लेंट को बोल कर दर्ज किया और देखो तुरंत एक्शन हुआ।
2: ये तो बहुत बढ़िया पोर्टल है।
1: 22 भारतीय भाषाओं में आप अपनी शिकायत दर्ज कराएं, अपनी समस्या का समाधान और प्राथमिकता का अनुभव पाएं, जैसे हमने पाया। सारी शिकायतों का समाधान सीपी ग्राम्स की समाधान दीदी।
3: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। जम्मू कश्मीर के पुंछ जिले में कल नियंत्रण रेखा के पास घुसपैठ की कोशिश के दौरान बारूदी सुरंग फटने से लश्करे तैयबा के एक शीर्ष कमांडर सहित 4 आतंकवादी मारे गए। उनकी पहचान लश्करे शीर्ष कमांडर मोहम्मद फैजान, मोहम्मद इश्तियाक, मोहम्मद वकास और मोहम्मद आसिम के रूप में हुई है। ये सभी पाकिस्तानी अवैध कब्जे वाले पुंछ जिले के हाजिरा तहसील के मंडला मडारपुर के निवासी थे। जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ जिले ने प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना के अंतर्गत सिंचाई अवसंरचना में सुधार की दिशा में अनुकरणीय प्रदर्शन करने के लिए देश के 100 जिलों में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। ये उपलब्धि सिंचाई सुविधाओं को बेहतर बनाने, कृषि गतिविधियों के लिए जल उपलब्धता में सुधार करने और टिकाऊ कृषि पद्धतियों को बढ़ावा देने की दिशा में जिले के प्रयासों को दर्शाती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जनसेवा में 25 वर्ष पूरे कर लिए हैं। जनसेवा से देश सेवा उनकी इस यात्रा का मूल मंत्र रहा है। सेवा और सुशासन के इसी दृष्टिकोण के साथ सरकार भारत को 2047 तक विकसित राष्ट्र बनाने का लक्ष्य हासिल करने के लिए लगातार काम कर रही है। आज हम इस विशेष श्रृंखला में जानकारी दे रहे हैं नालंदा विश्वविद्यालय के बारे में, जो आधुनिक भारत के दृष्टिकोण को आगे बढ़ा रही है।
4: राजगीर की पहाड़ियों के बीच नालंदा की कहानी इतिहास से निकलकर वर्तमान में आती है। साल 2024 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नालंदा विश्वविद्यालय के नए परिसर का उद्घाटन किया। इस परिसर के उद्घाटन में 17 देशों के मिशन प्रमुख शामिल हुए। नालंदा की पहचान सिर्फ उसकी प्राचीनता नहीं बल्कि ज्ञान को दुनिया के साथ बांटने की परंपरा रही है। उद्घाटन के मौके पर प्रधानमंत्री ने इसी विरासत को याद किया।
5: नालंदा के ध्वंस ने भारत को अंधकार से भर दिया था, अब इसकी पुनर्स्थापना भारत के स्वर्णिम युग की शुरुआत करने जा रहा है। नालंदा का नवजागरण, ये नया कैंपस विश्व को भारत के सामर्थ्य का परिचय देगा। नालंदा बताएगा जो राष्ट्र मजबूत मानवीय मूल्यों पर खड़े होते हैं वो राष्ट्र इतिहास को पुनर्जीवित करके बेहतर भविष्य की नींव रखना जानते हैं।
4: नालंदा की ये नई यात्रा भी सीमाओं से परे है। आज यहाँ 20 से अधिक देशों के विद्यार्थी अध्ययन कर रहे हैं। अलग अलग देशों से आए ये विद्यार्थी उस विचार को आगे बढ़ाते हैं जिसे भारत वसुधैव कुटुम्बकम के रूप में देखता है। नालंदा विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर सचिन चतुर्वेदी बताते हैं कि हम विकास भी और विरासत भी की सोच को आगे बढ़ा रहे हैं।
6: ये जब हम नालंदा विश्वविद्यालय में

0: अलग अलग तरह की कोशिश शुरू करते हैं, अलग अलग तरह के चिंताएं जताते हैं। तो मैं समझता हूं कि ये जो नई पीढ़ी है उसके माध्यम से उसी ज्ञान परंपरा को आगे बढ़ाने का काम हम करते हैं।
1: पुरानी नालंदा की विरासत आज प्रधानमंत्री के प्रयासों से विकास और आधुनिक शिक्षा की नई ताकत बन रही है, जहां अतीत की सीख भारत के भविष्य को दिशा दे रही है। आकाशवाणी समाचार के लिए पटना से निदेशश्री की रिपोर्ट।
2: भारत में इंटरनेट उपभोक्ताओं की संख्या इस वर्ष जून के अंत तक बढ़कर 111 करोड़ 41 लाख से अधिक हो गई है। मार्च 2026 के अंत तक ये लगभग 109 करोड़ 28 लाख थी। इस वृद्धि दर में तिमाही आधार पर 96% की वृद्धि दर्ज की गई है। एक रिपोर्ट।
3: भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण ने अपनी भारतीय दूरसंचार सेवा प्रदर्शन संकेतक रिपोर्ट में बताया कि कुल इंटरनेट उपभोक्ताओं में से 4,77,00,000 से अधिक वायर्ड इंटरनेट उपभोक्ता और लगभग 106,64,00,000 वायरलेस इंटरनेट ग्राहक हैं। इंटरनेट उपभोक्ता आधार में ब्रॉडबैंड और नैरो बैंड दोनों प्रकार के ग्राहक शामिल हैं। रिपोर्ट के अनुसार जून 2026 के अंत तक ब्रॉडबैंड इंटरनेट ग्राहकों की संख्या में 2.03% की वृद्धि हुई, जबकि नैरोबैंड इंटरनेट ग्राहकों की संख्या में 0.89% की कमी आई। रिपोर्ट के अनुसार भारत के टेलीफोन ग्राहकों की संख्या मार्च 2026 के अंत में लगभग 133 करोड़ से बढ़कर जून 2026 के अंत में 134 करोड़ हो गई, जो तिमाही आधार पर 1.31% की वृद्धि है। समाचार कक्ष से मैं सरफिरोजी।
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि देवी वैष्णवी की दैवीय शक्ति असीम वीरता का प्रतीक है और वे ब्रह्मांड की सर्वोच्च शक्ति हैं। अपने सोशल मीडिया पोस्ट में एक संस्कृत श्लोक साझा करते हुए श्री मोदी ने कहा कि देवी पूरे ब्रह्मांड को चलाती हैं और प्रसन्न होने पर मोक्ष का प्रदान करती हैं। ग्रामीण विकास मंत्रालय आज से विजयवाड़ा में राष्ट्रीय सरस मेला आयोजित करेगा। विजयवाड़ा में पहली बार लगने वाला ये मेला ग्रामीण गरीबी उन्मूलन सोसाइटी और आंध्र प्रदेश सरकार के सहयोग से आयोजित किया जाएगा। इसमें देश के 30 से अधिक राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के स्वयं सहायता समूहों से जुड़ी 1500 से अधिक महिला उद्यमी भाग लेंगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू इसका उद्घाटन करेंगी। मेला इस महीने की 31 तारीख तक चलेगा। कर्नाटक उच्च न्यायालय ने अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण बढ़ाने वाले 2022 के राज्य कानून को रद्द कर दिया है। मुख्य न्यायाधीश विभू भश्रू और न्यायाधीश के एस हेमालेखा की खंडपीठ ने इस कानून को असंवैधानिक बताया। पीठ ने कहा कि आरक्षण में ये बढ़ोतरी सर्वोच्च न्यायालय के ऐतिहासिक इंदिरा साहनी फैसले में तय की गई 50% की कानूनी सीमा का उल्लंघन करती है। डेनमार्क ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट आज ओरियंस में शुरू हो रहा है। दो ओलंपिक पदक विजेता पीवी सिंधु महिला सिंगल्स के राउंड ऑफ 32 में ओलंपिक चैंपियन और विश्व नंबर 1 दक्षिण कोरिया की आन से यंग से खेलेंगी। तन्वी शर्मा का मुकाबला जापान की नादुसुकी निदेरा से होगा। अश्मिता चालिहा, देविका सिहाग और उन्नति हुडा अपने प्री क्वार्टर फाइनल मैच आज खेलेंगी। वहीं पुरुष सिंगल्स में लक्ष्य सेन और पूर्व विश्व नंबर 1 किदांबी श्रीकांत आज राउंड ऑफ 32 में अपनी अपनी चुनौती पेश करेंगे। आयुष शेट्टी का मैच कल होगा। पुरुष डबल्स में सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी कल अपना अभियान शुरू करेंगे। मौसम विभाग ने आज दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़ और पंजाब के कुछ हिस्सों में बिजली कड़कने और तेज हवाओं के साथ आंधी तूफान की संभावना व्यक्त की है। आंध्र प्रदेश, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, गिलगित, बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद और राजस्थान में भी कल तक ऐसे ही मौसम की उम्मीद है। छत्तीसगढ़ में चल रहे नक्सल विरोधी अभियान में सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी मिली है। इसमें सुकमा जिले के घने जंगलों में नक्सलियों द्वारा भारी मात्रा में छिपाकर रखे गए हथियार बरामद किए गए हैं, जिनमें स्वचालित हथियार, जिंदा कारतूस और विस्फोटक शामिल हैं। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
4: ACP-NDT कानून के विभिन्न प्रावधानों के तहत लिंग जांच करने और करवाने वाले दोनों को 3 से 5 साल तक की कैद और जुर्माने की सजा है।
5: स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
2: और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ है मनोज।
6: धन्यवाद फरहत। दिल्ली के ऐतिहासिक जंतर मंतर पर प्रदर्शनों पर रोक लगाने का समाचार सभी अखबारों ने प्रकाशित किया है। दैनिक जागरण लिखता है जंतर मंतर पर अब प्रदर्शन नहीं, गृह मंत्रालय की समिति की सिफारिश पर दिल्ली पुलिस ने लगाई रोक। राजस्थान पत्रिका की सुर्खी है कई आंदोलनों के गवाह जंतर मंतर पर अब प्रदर्शन नहीं, 3 नए स्थान तय,

0: रामलीला मैदान, बुराड़ी मैदान, सीबीडी मैदान। समुद्र में दुश्मन की पनडुब्बियों को परास्त करेगा मंगरोल। नौसेना के बेड़े में शामिल हुआ तीसरा पनडुब्बी रोधी युद्धपोत। हिंदुस्तान ने उपलब्धि शीर्षक से खबर प्रकाशित की है। दैनिक भास्कर ने सऊदी अरब में मिसाइल ड्रोन हमलों की वजह से रियाद एयरपोर्ट के बंद होने का समाचार दिया है। पत्र लिखता है, सऊदी से उड़ाने बंद, केरलम के 10 लाख लोगों का त्योहारी प्लान अटका। 51% लोग शॉपिंग करने में ले रहे एआई की मदद, सोशल मीडिया पर वीडियो देखकर कर रहे शॉपिंग। नव भारत टाइम्स की खबर है, पोर्टलैंड के पास ओरेगन के जंगलों में गुस्सा निकालने का अनूठा शिविर। जंगल में जुटता है महिलाओं का समूह, भड़ास निकालने के साथ खुद को करती हैं शांत। 7 दिन का पैकेज 4 लाख रुपए, अमर उजाला की सुर्खी है।
1: धन्यवाद मनोज। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 6 राज्यपालों की नियुक्ति की। राजेंद्र विश्वनाथ अरलेकर तमिलनाडु और ओपी माथुर केरलम के राज्यपाल होंगे। भारत आज नई दिल्ली में बिम्स्टेक के गृह मंत्रियों की पहली बैठक की मेजबानी करेगा। चुनाव आयोग ने सभी पात्र मतदाताओं का नाम मतदाता सूची में सुनिश्चित करने के लिए राष्ट्रव्यापी जागरूकता अभियान शुरू किया। जम्मू कश्मीर के पुंछ जिले में नियंत्रण रेखा के पास हुए विस्फोट में लश्कर ए तैयबा के 4 आतंकवादी मारे गए। भारत में इंटरनेट ग्राहकों की संख्या 111 करोड़ से अधिक हुई। और बैडमिंटन में डेनमार्क ओपन 2026 आज से ओडेंस में शुरू होगा। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। गुड मॉर्निंग, आई एम सरबजीत कौर। द हेडलाइंस। प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू अपॉइंट 6 गवर्नर्स। राजेंद्र विश्वनाथ अरलेकर मूव टू तमिलनाडु एंड ओपी माथुर टू केरलम। इंडिया टू होस्ट फर्स्ट एवर बिम्स्टेक होम मिनिस्टर्स मीटिंग इन न्यू दिल्ली टुडे। Election Commission launches nationwide outreach drive to ensure no eligible voter is left out of electoral rolls. 4 Lashkar-e-Taiba terrorists killed in landmine blast at LOC in Poonch district of Jammu and Kashmir. India's internet subscriber base crosses 111 crores. And in badminton, Denmark Open 2026 to begin today in Odense. And now the news in detail. President Draupadi Murmu has appointed governors for 6 states. Mr. O.P. Mathur, who is currently serving as the governor of Sikkim, will be the new governor of Keralam. He will replace the current governor of Keralam, Rajendra Vishwanath Arlekar, who has been appointed as the governor of Tamil Nadu. Mr. Dushyant Gautam has been appointed as the new governor of Sikkim. Besides, the President has appointed Mr. Braj Mohan Ram as the Governor of Orissa, Dr. Sudha Yadav as the Governor of Karnataka, and Dr. Dhal Singh Bisen as the Governor of Uttarakhand. Their appointments will take effect from the dates on which they assume charge of their respective offices. India will host first ever BIMSTEC Home Ministers meeting in New Delhi today. Union Home Minister Amit Shah will chair the high-level meeting. The meeting underscores the shared resolve to combat terrorism, transnational organized crime, narcotics, radicalization, trafficking, illicit financial flows, and cyber threats. We have a report.
3: Extending a warm welcome to all the participating home ministers and member state delegations, Union Home Minister Amit Shah said that the historic meeting underscores the shared resolve of the BIMSTEC members to strengthen cooperation in tackling common security challenges, including terrorism and organized crime. In a social media post, Mr. Shah said that through decisive coordination, the members will remain committed to building a safer, stronger and more secure BIMSTEC region. The Bay of Bengal Initiative for Multisectoral Technical and Economic Cooperation, BIMSTEC, is a regional grouping comprising Bangladesh, Bhutan, India, Myanmar, Nepal, Sri Lanka and Thailand. It aims to promote economic and technical cooperation among countries bordering the Bay of Bengal and its neighborhood. Soumya Sharan for Akashwani News, Delhi.
2: In Jammu and Kashmir, 4 terrorists, including a top Lashkar-e-Taiba LET commander, were killed in a landmine blast along the line of control when they were trying to infiltrate into Poonch district yesterday. The deceased terrorists have been identified as top LET commander Mohammed Faizan, Mohammed Ishtiaq, Mohammed Waqas and Mohammed Asim. All of them were residents of Mandala Madarpur in Hajira Tehsil of POJK's Poonch district. The group of terrorists was trying to sneak across the LOC in the Nangi Tekri area of Krishnaghati sector when they

ओलंपिक तमगा जेतु पीवी सिंधु अते औरतां दे सिंगल्स दे राउंड ऑफ 32 विच ओलंपिक चैंपियन अते विश्व दी नंबर 1 खिडारन दक्षिणी कोरिया दी आन सिंह खिलाफ खेडेगी। तन्वी शर्मा दा मुकाबला जापान दी नात्सुकी निदायरा नाल होएगा। अश्मिता चालिया देविका सिहाग अते उन्नति हुड्डा अज आपो आपने प्री क्वार्टर फाइनल मैच खेडन किया। मर्दां दे सिंगल्स विच लक्ष्य सेन अते साबका विश्व नंबर 1 किदांबी श्रीकांत अज राउंड ऑफ 32 विच आपो आपनियां चुनौतियां पेश करनगे। आयुष शेट्टी दा मैच कल होएगा। मर्दां दे डबल्स विच सात्विक साई राज रणकी रेड्डी अते चिराग शेट्टी वी कल अपनी मुहिम दी शुरुआत करनगे। आखिर च खास खबरां। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 6 राजां लई राजपाल नियुक्त कीते ने। भारत अज नवी दिल्ली विच बिमस्टेक गृह मंत्रियां दी पहली मीटिंग दी मेजबानी करेगा। चोण कमिशन ने सारे योग वोटरां दा नां वोटर सूची विच यकीनी बनाउण लई देश भर विच जागरूकता मुहिम शुरू कीती। जम्मू कश्मीर दे पुंछ जिले विच कंट्रोल रेखा नेड़े घुसपैठ दी कोशिश दौरान होए बारूदी सुरंग धमाके विच लश्करे

0: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 6 राज्यां विच राजपाल नियुक्त कीते ने। भारत अज नवी दिल्ली विच बिमस्टेक गृह मंत्रियों की पहली मीटिंग की मेजबानी करेगा। जम्मू कश्मीर दे पुंछ जिले दे विच कंट्रोल रेखा नेड़े घुसपैठ करन दी कोशिश दौरान बारूद सुरंग धमाके विच लश्करे तैयबा दे एक चोटी दे कमांडर समेत 4 दहशतगर्द मारे गए। केंद्रीय सरकार ने पंजाब अते चंडीगढ़ समेत सारे राज्यां अते केंद्र शासित प्रदेशां नूं क्लिनिकली अदारियां विच मुहैया करवाईयां जाण वालियां सेवावां अते सहूलतां दीआं दरां स्पष्ट तौर ते दर्शाउण दे लई किहा है। पंजाब विच विशेष गहन सोध SIR 2026 मुकम्मल सारे 117 विधानसभा हलकियां दीआं अंतम वोट सूची प्रकाशित कीतीआं गईआं। पंजाब सरकार वालों पहुंच तो दूर वाले इलाकों विच मच्छरां ते लार्वे नूं नष्ट करन लई उन्नत ड्रोना दी वरतों दी शुरुआत। पंजाब पुलिस मुखी गौरव यादव ने सारे संबंधित अधिकारियों नूं खुफिया जानकारी सांझी करन अते शांति भंग करन दी किसी भी कोशिश नूं रोकन दे लई उच्च चौकसी बनाई रखन दे निर्देश दिते। माई भागो आर्मड फोर्स प्रेपरेटरी इंस्टीट्यूट मोहाली दियां 17 महिला कैडेट ने NDA दी लिखित परीक्षा पास करके वड्डी उपलब्धि हासिल की। बैडमिंटन विच PV सिंधु अते मर्दां दी सात्विकता साई राज रंकी रेड्डी ते चिराग शेट्टी दी डबल्स जोड़ी अज तो शुरू हो रहे डेनमार्क ओपन 2026 विच भारत दी अगवाई करनगे। इस अंजी हुण तक दियां मुख खबरां। मीडियम वेव 343.6 मीटर यानी 873 किलोहर्ट्ज़ से असी आकाशवाणी दे जलंधर केंद्र तो बोल रहे हैं। गाता रहे मेरा दिल इस प्रोग्राम दे लई बस कुछ कु पलां दा इंतजार।
1: ले लो झोले बेगाले ससानू मंगदियां पिछों रोंदियां कंदां दे ओले
2: जेड़ी गल असी बोलचाल दी भाषा च नहीं कर सकदे लोक गीतां दा सहारा लेके बखूबी कह दिंदे आ। लोक गीतां दे वख-वख रूप ने जन्म तो लेके अंत समय तक जिन्हां विच

0: एक विशेष सूचना। आकाशवाणी जलंधर वालों कुछ खाली स्टाफ क्वार्टर ते ऑफिस स्पेस किराए जां लीज ते दित्ते जाण दा प्रस्ताव है, जो सिर्फ केंद्र सरकार, सूबा सरकार, जनतक खेतर दे अदारे यानी PSU ते विधानिक संस्थावां नूं दित्ते जाणगे। इन्हां च शामिल ने आकाशवाणी जलंधर स्थित ऑफिस स्पेस ते आकाशवाणी स्टाफ कलोनी BMC चौंक जलंधर ते अर्बन एस्टेट फेज 1 जलंधर स्थित रिहायशी फ्लैट्स। चाहवान आकाशवाणी जलंधर दे उप महानिदेशक नाल संपर्क करन। फोन नंबर है 0181-298-3036। ईमेल ID jalandhar@prasarbharati.gov.in। एक विशेष सूचना। आकाशवाणी जलंधर वालों कुछ खाली स्टाफ क्वार्टर ते ऑफिस स्पेस किराए जां लीज ते दित्ते जाण दा प्रस्ताव है, जो सिर्फ केंद्र सरकार, सूबा सरकार, जनतक खेतर दे अदारे यानी PSU ते विधानिक संस्थावां नूं दित्ते जाणगे। इन्हां च शामिल ने आकाशवाणी जलंधर स्थित ऑफिस स्पेस ते आकाशवाणी स्टाफ कलोनी BMC चौंक जलंधर ते अर्बन एस्टेट फेज 1 जलंधर स्थित रिहायशी फ्लैट्स। चाहवान आकाशवाणी जलंधर दे उप महानिदेशक नाल संपर्क करन। फोन नंबर है 0181-298-3036। ईमेल ID jalandhar@prasarbharati.gov.in।
1: आकाशवाणी दा ए जलंधर केंद्र है। जी हां, लेके हाजिर हो गए हां प्रोग्राम गाता रहे मेरा दिल। अज दे इस प्रोग्राम दे विच सारे सुनन वालेयां दा स्वागत करदे हां। अज दा ए प्रोग्राम समर्पित है जी भारतीय फिल्म संगीत दे उस महान फनकार नूं, जिन्हां दी आवाज विच प्यार भी है, शरारत भी है, दर्द भी है ते जिंदगी नूं खुल के जीण दा अंदाज भी है। जी हां, बिल्कुल सही समझ रहे हो। अज असीं याद कर रहे हां महान गायक, अदाकार, संगीतकार किशोर कुमार होना जी नूं, जिन्हां दी बरसी 13 अक्टूबर नूं यानी कि अज दे दिन है। किशोर कुमार होना दा नाम आउंदिया ही ना ज़हन विच कई मिठियां धुनां गूंजण लग पैंदियां ने। उन्हां दी आवाज़ ने कई पीढ़ियां दे दिलां नूं छू लिया ते अज वी उन्हां दे जिहड़े गीत ने ना उह हर उमर दे सरोते पसंद करदे ने। उन्हां दे गीत दे विच एक अलग ही अंदाज जिहड़ा है उह हमेशा कायम रहा है। उन्हां ने अपने इसे खूबसूरत अंदाज दे नाल सारियां दा दिल मोया ते उन्हां दे गीत जिहड़े ने उह साडे सारियां दे दिलां दे विच घर घर गए ते इह गीत हर किसी दी जुबान ते आ गए ते असी प्रोग्राम दे विच चुन लिया जी सब तो पहले एक खूबसूरत गीत जिहड़ा उन्हां ने अपने हिस्से विच जदों लिखिया ते उदों सारियां दे ही जहन दे विच पक्का हो गया। ऐ मेरी दिल के चैन, किशोर कुमार होना दी आवाज़, मेरे जीवन साथी फिल्म दे विचों ये खूबसूरत नगमा।

मेरे जीवन साथी दा ये बेहद ही खूबसूरत गीत ओ मेरे दिल के चैन, अपनी सुरीली आवाज़ दे नाल इस गीत नू सदा बहार बना दिता गायक किशोर कुमार हुणा ने। कुछ गीत अजिहे हुंदे ने ना जिन्हां नू सुणदिआं ही दिल दे विच आप ही गुनगुनान लग जाने आ, ते मन विच मिठे सुरां दा अहसास अपने आप ही आ जांदा। ते बिल्कुल अजिहे बहुत सारे गीत ने भारतीय हिंदी फिल्म सिनेमा दे कोल जिन्हां नू अपनी आवाज़ दित्ती किशोर कुमार हुणा ने। रोमांटिक ये गीत, चलो इसी लड़ी दे विच एक होर गीत जोड़ दिंदे आ, खास अदायगी दे लई मिठी धुन दे लई सरोतियां दे दिलां दे राज करन वाला ये गीत आराधना फिल्म तो किशोर कुमार हुणा दी आवाज़ दे विच बहुत ही प्यारा ते वखरे ही अंदाज वाला ये गीत

बिल्कुल जी, खूबसूरत अंदाज ते बड़ा ही प्यारा जिहा ये गीत असी हुणे सुनिया। एक दिलचस्प गल ये है कि किशोर कुमार ने रस्मी तौर ते शास्त्री संगीत की सिक्ख्या लई ही नहीं, फिर भी उन्होंने अपनी मेहनत, कुदरती प्रतिभा ते वखरे अंदाज दे नाल संगीत की दुनिया विच अपनी खास थां बनाई। ते हाँ, ये गीत जदों भी आउंदा है ना, सब नूं ही बहुत वधिया लगता है। फिल्मफेयर पुरस्कार दे नाल सम्मानित ये गीत। ते लो, हुण प्रोग्राम दे विच उन्हां दा एक वखरा होर अंदाज, क्योंकि इन्हां दी आवाज़ दी पछाण ना योडलिंग दे नाल, जी हाँ, योडलिंग करन दे अंदाज दे नाल भी पछाणी जांदी है। इस तकनीक विच आवाज़ बड़ी ही खूबसूरत ते वख-वख सुरां विचकार बदलदी। उन्होंने विदेशी गायकों तो प्रेरणा लैके इस अंदाज नूं अपनी विलक्षण पछाण बना लिया। ते हाँ, हुण इह गीत जिंदगी एक सफर है सुहाना, इस गीत की रौनक किशोर कुमार हुणा दा अंदाज सच्ची दिल नूं ना खुश कर जांदा है। ते आओ फिर सुनते हैं गीत।

इसी अजा प्रोग्राम गाता रहे मेरा दिल। मीडियम वेव 343.6 मीटर यानी 873 किलोहर्ट्स ते असी आकाशवाणी दे जलंधर केंद्र तो बोल रहे हैं। सवेर दे 9:30 होए ने शास्त्रीय संगीत दा प्रोग्राम सुर साधना। आओ इस दे विच सुनदे हां उस्ताद सतविंदर पाल सिंह हुणा दा सारंगी ते वजाया राग बैरागी।

0: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 6 राज्यां विच लई राज्यपाल नियुक्त कीते। भारत अज नवी दिल्ली विच बिमस्टेक गृह मंत्रियां दियां पहली मीटिंग दी मेजबानी करेगा। चुनाव कमिशन ने सारे योग वोटरां दा नां वोटर सूची च यकीनी बनाउण दे लई देश भर च जागरूकता मुहिम शुरू कीती। पंजाब विच ज्ञान सोध SIR 226 मुकम्मल। सारे 117 विधानसभा हल्कियां दियां अंतम वोट सूचियां प्रकाशित होईयां। जम्मू कश्मीर दे पुंछ जिले विच कंट्रोल रेखा नेड़े घुसपैठ दी कोशिश दौरान होई बारूदी सुरंग धमाके विच लश्करे तैयबा दे इक चोटी दे कमांडर समेत 4 दहशतगर्द मारे गए। केंद्र सरकार ने कैंसर विरोधी दवाइयां दे मुनाफे नूं वध तों वध परचून कीमत ते 30% तक सीमित करन दा फैसला कीता है। केंद्र सरकार ने पंजाब ते चंडीगढ़ समेत सारे राज्यां ते केंद्र शासित प्रदेशां नूं क्लिनिकली अदारियां विच मुहैया करवाईयां जाण वालियां सेवावां ते सहूलतां दियां दरां स्पष्ट तौर ते दर्शाउण दे लई कहा। पंजाब सरकार वल्लों पहुंच तों दूर वाले इलाकियां विच मच्छरां दे लार्वे नूं नष्ट करन दी लई उन्नत ड्रोना दी वरतों करन दी शुरुआत। पंजाब पुलिस मुखी गौरव यादव ने सारे संबंधित अधिकारियां नूं खुफिया जानकारी सांझी करन अते शांति भंग करन दी किसी भी कोशिश नूं रोकन उच्च चौकसी बरतन लई निर्देश दिते। माई पागो आर्म फोर्स प्रेपरेटरी इंस्टीट्यूट मोहाली दियां 17 महिला कैडिट ने NDA दी लिखित परीक्षा पास करके वड्डी उपलब्धि हासिल कीती। डेनमार्क ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट आज ओडेंस विखे शुरू हो रहा है। ई संजी हुन तक दिया मुख खबरां। मीडियम वेव 343.6 मीटर यानी 873 किलोहर्ट्ज़ ते असी आकाशवाणी दे जलंधर केंद्र तो बोल रहे हां। प्रोग्राम हैलो फरमाइश। आज दे इस प्रोग्राम दे लई बस कुछ को पलां दा इंतजार।
1: विशेष सूचना, आकाशवाणी जलंधर वालों कुछ खाली स्टाफ क्वार्टर ते ऑफिस स्पेस किराए जां लीज ते दित्ते जाण दा प्रस्ताव है, जो सिर्फ केंद्र सरकार, सूबा सरकार, जनतक खेतर दे अदारे यानी PSU ते विधानिक संस्थावां नूं दित्ते जाणगे। इन्हां च शामिल ने आकाशवाणी जलंधर स्थित ऑफिस स्पेस ते आकाशवाणी स्टाफ कलोनी BMC चौंक जलंधर ते अर्बन एस्टेट फेज 1 जलंधर स्थित रिहायशी फ्लैट्स। चावान आकाशवाणी जलंधर दे उप महानिदेशक नाल संपर्क करन। फोन नंबर है 0181-298-3036। ईमेल ID jalandhar@prasarbharati.gov.in। खेडां नूं उत्साहित करन लई आकाशवाणी जलंधर दा शानदार उपराला प्रोग्राम खेड संसार। गिरगिट वांग रंग बदलदी क्रिकेट दे भेद दसदा, हॉकी दी चलाकी दियां रमज़ां बयान करदा, खिडारियां दा जनून, मैदानां दा रोमांच, मैदानां च जित दी खुशी ते हार तों सबक लैण दी दिलचस्प कहानी तुहानूं सुणाउंदा प्रोग्राम खेड संसार हर मंगलवार रात 9:30 बजे सिर्फ आकाशवाणी जलंधर ते।

0: सो जी फिर गीत केड़ा सुना दिए।
1: मैं तो कह रहा हूँ तुम्हारा ना कोई भी गाना खड़ा रहे जी, सम्मान वो ही है
0: जी। ठीक है जी, कॉल करने के लिए शुक्रिया,
1: धन्यवाद जी।

0: प्रोग्राम चल रहा जी। हेलो फरमाइश ते वेला हो गया है एक छोटे जहे अंतराल दा।
1: साइबर फ्रॉड या धोखाधड़ी की जानकारी लई 1930 हेल्पलाइन नंबर डायल करो जां www.cybercrime.gov.in ते शिकायत दर्ज करवाओ।
2: ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਝੋਨੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਖਰੀਦ ਹੈ ਉਹ 1 ਅਕਤੂਬਰ

0: लो जी, इस अंतराल तो बाद एक बार फिर तो तुहाड़ा स्वागत कर दिया प्रोग्राम हैलो फरमाइश दे विच। ते कर दिया गल अपने अगले कॉलर होना दे नाल। हैलो
1: हैलो भैन जी, सत श्री अकाल।
0: सत श्री अकाल जी, बहुत बहुत स्वागत कर दिया जी। हैलो लो जी, हैलो तो बाद उन्हां दी आवाज़ जिहड़ी है साडे तक पहुँच नहीं कर पा रही, ते पर तुहाड़े तक जिहड़े गीत ने ना उन्हां दी पहुँच असीं बिल्कुल भी खारिज नहीं करनी, रोकनी नहीं है, ते तुहाड़े तक पहुँचा लैने ने खूबसूरत गीत। ते हाँ, एक खूबसूरत गीत होर सुनाने तो पहला किशोर कुमार होना जी दा एक किस्सा। बिल्कुल जी, इन्हां दी जिन्नी नटखट शख्सियत, जिन्नी दिलचस्प शख्सियत, उन्हें ही किस्से भी इन्हां दे निराले हुंदे सी। एक मशहूर किस्से दे मुताबिक एक बार एक फिल्म दे निर्माता ने उन्हां नूं पूरी फीस देण दी बजाए अद्धे पैसे दित्ते, ते अगले दिन किशोर कुमार जी सैट ते अद्धी मुछ मुनवा के आ गए। उन्होंने बड़े मजाकिया अंदाज च कहा कि जे पैसे अद्धे ने तां फिर शूटिंग भी अद्धे चेहरे दे नाल ही करा लो। ते ये दिखाउंदा सी कि वह किन्ने बेबाक सी, ते नाल हसमुख भी सी। ते इस तरह के उन्होंने बहुत सारे किस्से जिहड़े फिल्मी जगत दे विच मशहूर होए, उन्होंने यादां नूं हमेशा दे लई आबाद कर गए। ते यादगार इस गायक का ये खूबसूरत जिहड़ा नगमा वो असीं तुहानूं सुना रहे हां, मिस्टर एक्स इन बॉम्बे इस फिल्म दे विचों।

0: न्यू इकॉनमी फोरम को संबोधित करते हुए श्री मोदी ने कहा कि भारत की प्रगति सामूहिक विकास और साझा अवसरों पर टिकी हुई है। उन्होंने कहा कि शक्ति केवल आगे बढ़ने की क्षमता नहीं है, बल्कि ये दूसरों को सशक्त बनाने की क्षमता भी है।
1: पावर इज नॉट जस्ट एबिलिटी टू मूव अहेड, इट इज ऑल्सो द एबिलिटी टू एम्पावर अदर्स टू मूव अहेड। भारत का मानना है कॉम्पिटिशन जरूरी है, लेकिन कंपेशन भी होना चाहिए।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि वर्तमान युग में डिजिटल शक्ति इस बदलाव के प्रमुख चालकों में से एक बनकर उभरी है और इस दृष्टिकोण को आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। श्री मोदी ने कहा कि डिजिटल शक्ति ने भारत के लिए अधिक से अधिक अवसरों के द्वार खोले हैं। श्री मोदी ने कहा कि 21वीं सदी में प्रौद्योगिकी, डेटा, ज्ञान और नवाचार शक्ति के महत्वपूर्ण स्रोत बन गए हैं। उन्होंने कहा कि सरकार का निरंतर प्रयास ये सुनिश्चित करना है कि भारत की क्षमताएं अन्य देशों के लिए भी अवसरों के नए द्वार खोलें।
1: ग्लोबल चैलेंजेस के लिए सॉल्यूशंस में भी योगदान देना होगा। क्लाइमेट चेंज हो, वाटर गवर्नेंस हो, पब्लिक हेल्थ हो या इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज का रिस्पॉन्सिबल यूज हो, दुनिया को ऐसा सामर्थ्य चाहिए जो सॉल्यूशन दे, नए अवसर पैदा करे।
0: श्री मोदी ने कहा कि भारत ने पिछले दशक में 25 करोड़ लोगों को गरीबी से बाहर निकाला है। प्रधानमंत्री ने कहा कि वर्ष 2014 के बाद से स्टार्टअप्स के लिए भारत के पारिस्थितिकी तंत्र का काफी विस्तार हुआ है और स्टार्टअप्स की संख्या 2,50,000 को पार कर गई है। भारत नई दिल्ली में बहुपक्षीय तकनीकी और आर्थिक सहयोग के लिए बंगाल की खाड़ी की पहल बिम्स्टेक संगठन के गृहमंत्रियों की पहली बैठक की मेजबानी कर रहा है। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि ऐतिहासिक बैठक आतंकवाद, संगठित अपराधों, नशीले पदार्थों, तस्करी, अवैध वित्तीय प्रवाह तथा साइबर खतरों से निपटने के साझा संकल्पों को उजागर करती है। मजबूत बिम्स्टेक क्षेत्र बनाने के लिए प्रतिबद्ध हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 6 राज्यों में राज्यपालों की नियुक्ति की है। सिक्किम के राज्यपाल ओम प्रकाश माथुर अब केरलम के नए राज्यपाल होंगे। केरलम के राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अर्लिकर को अब तमिलनाडु का राज्यपाल नियुक्त किया गया है। ब्रजमोहन राम ओडिशा के राज्यपाल नियुक्त किए गए हैं, जबकि डॉ सुधा यादव कर्नाटक की राज्यपाल होंगी। डॉ ढाल सिंह बिसेन को उत्तराखंड का राज्यपाल बनाया गया है। दुष्यंत गौतम सिक्किम के राज्यपाल होंगे। सभी नियुक्तियां कार्यभार संभालने की तिथियों से प्रभावी होंगी। निर्वाचन आयोग ने प्रत्येक पात्र नागरिक का नाम मतदाता सूची में सुनिश्चित करने के प्रयास तेज कर दिए हैं। इसके लिए सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में विशेष अभियान चलाया जा रहा है। मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने सूचित किया है कि 18 अक्टूबर को सभी मतदान केंद्रों पर विशेष शिविर आयोजित किए जाएंगे। नेपाल में आई बाढ़ के कारण मध्य क्षेत्र में पैदल यात्रा के रास्ते और पुल बहने से विभिन्न स्थानों पर 100 से अधिक विदेशी ट्रैकर्स फंस गए हैं। काठमांडू से लगभग 100 किलोमीटर पश्चिम में गोरखा जिले में तड़के हुए भूस्खलन के बाद आज अधिकारियों ने 12 विदेशियों सहित 321 लोगों को सुरक्षित बचाया। सेना ने कहा कि नदी का जलस्तर कम होने के बावजूद बचाव अभियान कल भी जारी रहेगा। दिल्ली में कानून व्यवस्था की स्थिति के मद्देनजर यातायात पुलिस ने परामर्श जारी किया है। राष्ट्रीय राजधानी के विभिन्न हिस्सों में आज दिनभर यातायात प्रभावित होने की संभावना है। कई जगह यातायात मार्ग परिवर्तित किया जा सकता है। इनमें मिंटो रोड, मंडी हाउस और पटेल चौक गोलचक्कर, गुरु नानक चौक, लोधी रोड फ्लाईओवर, सरदार पटेल मार्ग और कनॉट प्लेस आउटर सर्कल शामिल है। यातायात पुलिस ने प्रभावित मार्गों पर अनावश्यक यात्रा से बचने, मार्ग बदले जाने के संकेतों और यातायात पुलिस के निर्देशों का पालन करने की अपील की है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: मीडियम 343.6 मीटर यानी 873 किलोहर्ट्ज़ से असी आकाशवाणी दे जलंधर केंद्र तो बोल रहे हैं। दिन के 11:05 बज रहे ने ते हुण समा हो रहा तुहाडा मन पसंद प्रोग्राम पेश करन दा, जिसका नाम है तमक जलंधर पैंदी। जी दोस्तों, इस प्रोग्राम नू रोज़ाना तुसी इसे वेले सुनते हो ते इस प्रोग्राम विच तुसी सुनते हो अपने मनपसंद गीत सानू वट्सअप दे जा रही है। सो वट्सअप दे जरिए तुसी अपने मनपसंद पंजाबी गीतां दी फरमाइश साडे कोल कर सकदे हो, अपने मनपसंद दिल दे करीब गाने सुन सकदे हो।

करना की है व्हाट्सएप पे जाके एक नंबर डायल करके ते सानू मैसेज करो, अपना नाम, अपने शहर का नाम, गीत दे बोल टाइप करके भेजो जिहड़ा गीत तुसी सुनना चाहुंदे हो, या फिर उस गायक कलाकार का नाम भी टाइप करके तुसी सानू भेज सकते हो जिसते गाए हुए गीत तुहानू बहुत पसंद ने। सो फोन नंबर नोट करो 9465536077 यानी 9465536077। सो साढ़े को सिलसिला जारी हो जाएगा जदों फरमाइशा साढ़े तक पहुँच जाएगियाँ, असी उस वेले थोड़ी फरमाइशा थोड़े तक पहुँचावे। अज इन्हों फरमाइशा थोड़े तक पहुँचाने का सिलसिला थोड़ी दोस्त वीनस नाल है थोड़े। सो प्रोग्राम का शुरुआती गीत थोड़ा पेश कर जा रही हाँ, तो नाल दे नाल टाइप कर दो अपने मनपसंद गीतों के बोल या गायक कलाकार के नाम, तो मैं थोड़ी द जो फरमाइशा ने थोड़े तक पहुँचाऊँगी। सो आओ हूँ सुनते हैं प्रोग्राम का शुरुआती गीत।

0: जदों जदों भी बने रे भुलेखा मैनू तेरे सोवे मेरे सजना
1: जी। दमक जलंधर पैंदी प्रोग्राम तुसी सुन रहे हो आकाशवाणी दे जलंधर केंद्र तो। बहुत सारिया फरमाइशां साढ़े कोल पहुँच रही ने, सिलसिला जारी है। हुण अगली फरमाइश तुहाडे तक पहुँचाउण जा रही हां सी, ते ए फरमाइश सानू आई है जी हरजीत कैंत मौजी होरां वल्लों। ते ए फरमाइश भेजी कलोनी डब्बा लुधियाना तो। इन्होंने कहा जी इन्हों फरमाइशी गीत सुनाया जाए मनमोहन वारिस का कोई भी। सो मनमोहन वारिस के गाए हुए गीत ही सुनना चाहते हैं। पद्मा टॉकीज नेपा नगर मध्य प्रदेश तो भेजन वाले ने फरमाइश। सुदर्शन शाह, पलवी शाह, प्रखव शाह, कुशल शाह, नीति शाह, सुरभी शाह, अश्विनी शाह, मंगलाबेन शाह, राजेंद्र शाह, इन्होंने भी यही फरमाइश की थी। अगली फरमाइश सानू आई है जी मेन बाजार शेरपुर थाना संगरूर तो भेजन वाले ने फरमाइश। मिंटू, अमनजोत ते रमनजोत। अगली फरमाइश सानू आई है जी पिंड खोखरा वाली श्रीनगर तो, श्री गंगानगर तो भेजन वाले ने फरमाइश। विनोद बरासा, विशाल बरासा, विकास बरासा, रोशनी बरासा ते शगुन बरासा। अगली फरमाइश सानू आई है जी गुरमीत सिंह मीता, साउथ एक्सटेंशन नवीं दिल्ली तो। वह भी फरमाइश कर रहे हैं जी मनमोहन वारिस के गाए हुए गीत नूं सुनन दी। अगली फरमाइश है जी भोपालगढ़ राजस्थान तो भेजन वाले ने फरमाइश। धर्मेंद्र चिंपा, कमल चिंपा, ईशान ते पूजा चिंपा तो इलावा इन्हों का पूरा परिवार। अगली फरमाइश जोड़ी आई है जी सानू सतनाम सिंह गिल होरां वल्लों आई है जी पिंड पक्की खुर्द फरीदकोट तो। अगली फरमाइश सानू भेजिए अब्दुल गफार डावर, खुश नसीब, अब्दुल हक डावर, जियाउल हक डावर, मोहम्मद उमर डावर हो रहे थे। फरमाइश आई है जी नागचुन रोड संजय कॉलोनी खंडवा तो। अगली फरमाइश भेजन वाले ने राजकुमार शर्मा, स्मृति शर्मा, मानविश, प्रगत, जगदी, जिनीश। ये फरमाइश आई है जी सानू लुधियाना तो। अगली फरमाइश सानू भेजी है जी कलीम रोड और गोबिंद नगर नवाज शहर तो भेजन वाले ने फरमाइश। सुरिंदर सिंधु, अनीता संधु, रोहित संधु, रितेश संधु, शिखा संधु, प्रतिशा संधु ते मैक्स होरा वालों। अगली फरमाइश है जी पिंड बांडी वाला फाजिलका पंजाब तो भेजन वाले ने फरमाइश। क्रियंश बांगड़िया, योगेश बांगड़िया, ओम बांगड़िया, रजत ते बेबी गरिमा बांगड़िया। अगली फरमाइश आई है जी सानू गोवर्धन बिहारी कॉलोनी दिल्ली तो भेजन वाले ने फरमाइश। वीना मुस्कान मस्कीन, तुलसी मस्कीन, आशा राजा, चैतन्य मस्कीन, मेघा मस्कीन, डब्बू सम्राट। ते चंडीगढ़ तो ही फरमाइश भेजिए राहुल खुराना, रचिता खुराना, केशु ते रिधान खुराना होरा ने। अगली फरमाइश सानू आई है जी रावर करनाल तो भेजन वाले ने फरमाइश। ज्ञान भूषण शर्मा, सोमनाथ कालिया ते इन्हां दे बहुत सारे साथी। अगली फरमाइश आई है जी वरिंड खेड़ा, वड़िंग खेड़ा पंजाब तो भेजन वाले ने। मिंटू थॉमस, पिंकी लवली, आरती अरोड़ा। एक होर फरमाइश सानू आई है जी पदमपुर तो भगवान दास तनेजा, पवन कुमार, योगेश तनेजा, आस्था तनेजा, मोहित मक्कड़ ते मुखिम जी। सो इन्हां सब की फरमाइश पूरी करते हैं। तो आओ तुहानू सुनाउंदी हां मनमोहन वारिस की आवाज़ विच एक गीत।

सुरेश, राजपाल पंकज, काजल सीमा, मानवी तन्वी, लक्ष्य सोनी, मोहिनी रितिक, बलवीर सिंह ते इन्हां दे बहुत सारे साथी फरमाइश कर रहे हैं। अगली फरमाइश है जी लवई छत्तीसगढ़ तो पिचल वाले लिए फरमाइश, गुलाब दास मानिकपुरी, राजा दास मानिकपुरी। अगली फरमाइश है जी कुंडी सैक्टर 5 सूर्य नगरी जोधपुर राजस्थान तो पिजन वाले ने फरमाइश, रमेश चंद्र चौहान, मोहिनी चौहान, कल्पित चौहान, बेबी गैरवी ते बेबी बाय हिमांश। अगली फरमाइश सानू भेजी है जी शाहजी नगर देगलू जिला नांदेड़ महाराष्ट्र तो भेजन वाले ने फरमाइश, संतोष भाकरे, सुनैना सुकन्या ते सविता भाकरे। अगली फरमाइश सानू आई है जी महेश नगर नाभा तो भेजन वाले ने फरमाइश, सोमदत्त, कैरव, ज्योति रानी, गुरमन्नत ते इन्हां दे बहुत सारे साथी। अगली फरमाइश है जी अलीका तहसील डब वाली तो भेजन वाले ने फरमाइश, रूप सिंह लखोत्रा, करमजीत लखोत्रा, सरबजीत लखोत्रा, रानी सोनू ते रजनी हुरा वालों। अगली फरमाइश है जी सैक्टर 18 जगाधरी जिला यमुनानगर हरियाणा तो भेजन वाले ने फरमाइश, विनय मोहन खान खार, मीनाक्षी पलोमा ते डॉक्टर ईशानी। अगली फरमाइश है जी पिंड तमोट जिला लुधियाना तो भेजन वाले ने फरमाइश, बूटा बिंदर, प्रगट सिंह धालीवाल, पारसो नरिंदर, बीबा बेअंत सिंह ते हेयर ड्रेसर शिंडा। अगली फरमाइश है जी सानू डाबकी रोड अकोला तो भेजन वाले ने फरमाइश, सुशीला देवी मंदुकर, सदानंद मंदुकर, कुमार गौरव मंदुकर, आरव ते अर्पिता होरा वालों। अगली फरमाइश है जी सानू अमरीक सिंह टेलर मास्टर जलान जिला संगरूर तो ते एक होर फरमाइश सानू आई है जी रेलवे कॉलोनी हनुमानगढ़ जंक्शन राजस्थान तो भेजन वाले ने फरमाइश, जगमाल सिंह डागला, हैप्पी डागला, जे एस नायक, शोभा नायक ते सारा डागला परिवार। अगली फरमाइश पिंड जंड वाला नेड़े सादिक जिला फरीदकोट तो भेजन वाले ने मुख्तार सिंह संधु, रेशम फौजी, करम संधु सरपंच, हरजोत सिंह, जगपाल सिंह ते इन्हां दे बहुत सारे साथी फरमाइश कर रहे ने। सुरेंद्र कौर दे गाए गीत नूं सुनन दी अगली फरमाइश है जी पिंड सारागढ़ मलौट तो भेजन वाले ने फरमाइश, तरसीम सिंह सैकटरी, गुरसिमरन वीर कौर, हुसन मान, जसवीर कौर, सरदार बलकार सिंह ते इन्हां दे बहुत सारे साथी। अगली फरमाइश है जी कृष्ण लाल, सिमरी देवी, मनोज कुमार, पुष्पा राणी, शैलेंद्र कुमार होर ने फरमाइश भेजी है जी पिंड सावंत खेड़ा नेले मंडी डब वाली तो। सो इन्हां दी फरमाइश पूरी करदे हां ते आओ आपां वी सारे सुनदे हां सुरिंदर कौर दी आवाज़ विच इह प्यारा जिहा गीत।

तो फरमाइश है जी, हाँ जी इशफाक कोलामनी मोहम्मद उमर कासमी ते हाजी अयूब शहरी होरा वल्लों। अगली फरमाइश सुनो आई जी, पिंड चंद्रमारी ते भेजन वाले ने फरमाइश, मंगत राम जगदीश रानी संदीप मिढा ममता रानी अभिषेक मिढा ते दिव्या होरा वल्लों। अगली फरमाइश आई है जी सानू जम्मू तो, ये फरमाइश सानू भेजी है जी, नेक राम यशपाल खेदू राम बाबा राम ते उन्होंने बहुत सारे साथियों वालों। अगली फरमाइश सानू आई है जी, ताज मुहम्मद अंसारी गुलाम साबिर रहा मेहरा जहां होरा वालों। तो फरमाइश सानू भेजी है आज़ाद नगर लक्सर हरिद्वार उत्तराखंड तो। अगली फरमाइश

तो ये फरमाइश सानू भेजी है जी, नेक राम यशपाल, खेदू राम, बाबा राम ते उन्हें दे बहुत सारे साथियों वालों। अगली फरमाइश सानू आई है जी, ताज मोहम्मद अंसारी, गुलाम साबिर रहा, मेहरा जहां होरा वालों। ते फरमाइश सानू भेजी है आज़ाद नगर लक्सर हरिद्वार उत्तराखंड तो। अगली फरमाइश आई है सानू मनीला फिलीपींस, गंगासर बाजार करतारपुर तो। भेजन वाले ने फरमाइश मदन लाल लहर, सरबजीत लहर, संजू लहर, नीतिका लहर, अजय लहर, एंजल लहर, लाडला पोता अनवर लहर होरा वालों। अगली फरमाइश आई है जी, जिला मुरादाबाद, पिंड दहलापुर, उत्तर प्रदेश तो। भेजन वाले ने फरमाइश मोहम्मद फरमान, मोहम्मद सलमान, मोहम्मद इरफान, मोहम्मद इसरार ते नरगिस खातून होरा वालों। अगली फरमाइश आई है जी सानू बिल्लीमार जलालाबाद तो। भेजन वाले ने फरमाइश प्रेम खुराना, परवीन, अलीशा अरमान, राकेश, ममता, अनन्या ते अंकुशा खुराना होरा वालों। सो इन्हों की फरमाइश पूरी करते हैं तो आओ सुना इन्हों शमशाद बेगम ते मोहम्मद रफी की आवाज़ विच ए प्यारा जिहा गीत।

ओ चांजर ते कोई शैने बलिए जानवे अपनी देना ओ सोने दा की पौना कुड़िए ओ पाल प्यार दा गहना ओ मैं दिल

0: ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਸੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਧਮਕ ਜਲੰਧਰ ਪੈਂਦੀ ਮੀਡੀਅਮ ਵੇਵ 343.6 ਮੀਟਰ ਯਾਨੀ 873 ਕਿਲੋਹਰਟਜ਼ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਦੇ ਜਲੰਧਰ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਦਿਨ ਦੇ 12 ਵਜ ਰਹੇ ਨੇ, ਲਓ ਸੁਣੋ ਸਮਾਚਾਰ।
1: ਨਮਸਕਾਰ, ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਸਮਾਚਾਰ ਕੇ ਸਾਥ ਮੈਂ ਕਨਕਲਤਾ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि केंद्र सरकार ने अपने शासन के दृष्टिकोण और कार्य संस्कृति में पावर टू एम्पावर के सिद्धांत को अपनाया है। नई दिल्ली में आए ब्लूमबर्ग न्यू इकोनॉमी फोरम में श्री मोदी ने कहा कि 21वीं सदी में प्रौद्योगिकी, डेटा, ज्ञान और नवाचार शक्ति के महत्वपूर्ण स्रोत बन गए हैं। उन्होंने कहा कि सरकार का निरंतर प्रयास ये सुनिश्चित करना है कि भारत की क्षमताएं अन्य देशों के लिए भी अवसरों के नए द्वार खोलें।
2: इनोवेशन की पावर भी ऐसी ही है, एक आइडिया को प्रोडक्ट में बदलना, एक प्रॉब्लम

0: को सॉल्यूशन में बदलना, ये अपने आप में एक बड़ी क्षमता है। लेकिन जब यह अवसर समाज के अधिक से अधिक लोगों को मिलता तो शक्ति का संतुलन बनता है और इसका प्रभाव कई गुना बढ़ जाता है। भारत की स्टार्टअप जर्नी इसी बदलाव का उदाहरण है।
1: श्री मोदी ने कहा कि सरकार ने पिछले दशक में 25 करोड़ लोगों को गरीबी से बाहर निकालने में सहायता की है।
0: पावर के पर्पज पर जो फोकस है, यही सोच गवर्नेंस में भी जरूरी है। सरकार के पास अथॉरिटी है, लेकिन इसका उद्देश्य ये नहीं होना चाहिए कि देश का नागरिक सिस्टम पर ही निर्भर हो जाए, बल्कि इसका मकसद ये होना चाहिए कि देश के नागरिक सक्षम हो, सशक्त हो। और भारत इसी रास्ते पर चल रहा है। इसी रास्ते पर चलते हुए भारत ने बीते एक दशक में 25 करोड़ लोगों को गरीबी से बाहर निकाला है।
1: श्री मोदी ने कहा कि शक्ति केवल आगे बढ़ने की क्षमता नहीं है, बल्कि ये दूसरों को सशक्त बनाने की क्षमता भी है। प्रधानमंत्री ने कहा कि वर्ष 2000 के बाद से स्टार्टअप के लिए भारत में काफी विस्तार हुआ है और स्टार्टअप्स की संख्या 2,50,000 को पार कर गई है। भारत नई दिल्ली में बहुपक्षीय तकनीकी और आर्थिक सहयोग के लिए बंगाल की खाड़ी क्षेत्र की पहल बिम्स्टेक संगठन के गृहमंत्रियों की पहली बैठक की मेजबानी कर रहा है। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि ये ऐतिहासिक बैठक आतंकवाद, संगठित अपराधों, नशीले पदार्थों, तस्करी, अवैध प्रवाह तथा साइबर खतरों से निपटने के साझा संकल्प को उजागर करती है। उन्होंने कहा कि सदस्य देश आपसी समन्वय के माध्यम से सुरक्षित और मजबूत बिम्स्टेक क्षेत्र बनाने के लिए प्रतिबद्ध हैं। कनाडा की विदेश मंत्री अनीता आनंद आज से 2 दिन की भारत यात्रा पर रहेंगी। इस दौरान वे विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर तथा कौशल विकास और उद्यमिता मंत्री जयंत चौधरी से कल मुलाकात करेंगी। इस बीच भारत में कनाडा के उच्चायुक्त क्रिस्टोफर कूटर ने कहा है कि कनाडा प्रस्तावित मुक्त व्यापार समझौते, अधिक निवेश और दोनों देशों के बीच लोगों की आवाजाही के जरिए भारत के साथ द्विपक्षीय व्यापार सुदृढ़ करने का इच्छुक है। उन्होंने कहा कि दोनों देशों के बीच पर्यटन भी एक महत्वपूर्ण क्षेत्र है। दिल्ली पुलिस ने सीजेपी के नेता सौरभ दास और आशुतोष रांका को हिरासत में ले लिया है। ये लोग राष्ट्रीय राजधानी में जंतर मंतर में घुसने की कोशिश कर रहे थे। दिल्ली पुलिस ने कल जंतर मंतर को निर्धारित प्रदर्शन स्थल की सूची से हटा दिया था। पूर्वी दिल्ली में 3 नए प्रदर्शन स्थल रामलीला मैदान, बुराड़ी मैदान और सीबीडी मैदान सूचित किए गए हैं। नेपाल में आई बाढ़ के कारण मध्य क्षेत्र में ट्रैकिंग और पुल ढहने से विभिन्न स्थानों पर 100 से अधिक विदेशी ट्रैकर्स फंस गए हैं। काठमांडू से लगभग 100 किलोमीटर पश्चिम में गोरखा जिले में तड़के हुए भूस्खलन के बाद आज अधिकारियों ने 12 विदेशियों सहित 321 लोगों को सुरक्षित बचाया। सेना ने कहा है कि नदी का जलस्तर कम होने के बावजूद बचाव अभियान कल भी जारी रहेगा। डेनमार्क ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट आज ओडेंस में शुरू हो रहा है। महिला सिंगल्स के पहले दौर में पीवी सिंधु और तन्वी शर्मा अपनी अपनी चुनौती पेश करेंगी। पुरुष सिंगल्स के पहले दौर में लक्ष्य सेन और किदांबी श्रीकांत भी आज अपने अपने मुकाबले खेलेंगे। आयुष शेट्टी का मैच कल होगा। पुरुष डबल्स में सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी कल अपना अभियान शुरू करेंगे। घरेलू शेयर बाजार का संवेदी सूचकांक में आज 0.6% की वृद्धि दर्ज की गई। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स लगभग 433 अंक की वृद्धि के साथ 72,357 पर था, जबकि निफ्टी 22,490 पर कारोबार कर रहा था। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: मीडी वेव 343.6 मीटर यानी 873 किलोहर्ट्ज से असी आकाशवाणी के जलंधर केंद्र तो बोल रहे हैं। दिन के 12 बज के 5 मिनट बज रहे हैं। आओ सुनते हैं पारिवारिक प्रोग्राम वसदे वेड़े।

0: सही गल है। सवेरे सवेरे साफ सफाई करके है ना, जो तुसी माता दी पूजा अर्चना करते हो तां मन वाकई खुशहाल हो जाता है, पॉजिटिविटी आती है। तुसी जानते हो पंजाबी परिवारों में नरात्या का बहुत खास ते धार्मिक सभ्याचारक महत्व है।
1: बिल्कुल जी, ते जदों असीं तीजे नराते की गल करते हाँ तो तीजा नराता हुंदा है माँ चंद्र घंटा का
0: जी।
1: तो जिहड़ा जिहड़ा माता का स्वरूप है उहदा सुनेहा यही है कि माँ का स्वरूप चंद्र घंटा हिम्मत शांति निडरता अते बुराई उत्ते जित दा प्रतीक है। जो असीं गल करते हाँ माँ के वाहन की गल करते हाँ तो माँ सवारी करती है शेर की या बाघ की, जिहड़ा शक्ति ते बहादुरी का प्रतीक है।
0: बिल्कुल, माँ चंद्रघंटा माँ दुर्गा की तीजी शक्ति है। इन्हों का स्वरूप कल्याणकारी ते शांति प्रदान करने वाला है। मस्तक के घंटे के आकार का अर्ध चंद्रमा होने करके इन्हों चंद्र घंटा देवी किया जाता है। इन्हों दस माह ने जिन्हां च खड़ग कमंडल त्रिशूल बाण सुशोभित ने। इन्हों का वाहन शेर है जिवें कि अर्चना ने दस्सिया सानू। इन्हां दी मूरत जिहड़ी हैगी है वह युद्ध लई तैयार रहन वाली है। इन्हां दे घंटे की जिहड़ी है धुनी है उस नाल दानव दैत राक्षस बेताल सभ्याचारी अत्याचारी सदा कंबदे रहिंदे ने। ते मां चंद्र घंटा का सिमरन करदिआं साधक अपना मन मनपुर चक्र च एकाग्र करते ने। सो जो जदों आप चंद्र घंटा माँ याद करते हुए नवरात्रे का तीजे रूप की पूजा करते हैं ना, तो एक अजीब जी अंदरों उत्साह ते शक्ति आती है।
1: बिल्कुल जी, जदों असी पूजा करते हाँ तो जिंदगी दे विच चाहे किन्नियां भी मुश्किलां आ जान सानू कदे हिम्मत ते अपनी जिहड़ी शांति दे नाल उन्हां चीज़ां दा सामना करना चाहिए। माता रानी दा भी यही सुनेहा हुंदा सारिआं नूं जदों असीं उहदे सामने अपना आसन लगा के अपनी अरदास लाने आ, ते उहदे नाल नाल माता चंद्र घंटिया हमेशा सारिआं नूं आशीर्वाद दिंदी है कि जीवन दे विच सारिआं दे खुशहाली ते उहदे नाल नाल सुख शांति बनी रहे।
0: अर्चना, इन्हां दी जे आपां पूजा अर्चना की गल करिए ना, तां इन्हां नूं चमेली ते गुड़हल दे फुल प्यारे ने। इन्हां नूं दुध दा खीर दा भोग लगाया जांदा है। अजिहा करन नाल दुखां ते कष्टां दी मुक्ति मिलदी है। भोग दी थाली चों ब्राह्मण लई वी हिस्सा कढ़िया जांदा है। बहुत श्रद्धा भाव दे नाल जिहड़े साडे समाज दे विच लोग ने उह चंद्र घंटा माँ दी पूजा करदे ने।
1: ते जदों असीं पूजा दी गल कीती है ते आओ सुणदे आं एक
0: प्यारा जा भजन।

0: पापा दी उमर भर दी कमाई, उना दी सिख्या
1: अते हमेशा साडी फिकर करना। वैसे उना दी इक जमा पूंजी बैंक विच भी है,
0: पर क्लेम करना मुश्किल होवेगा।
1: हुण होर भी आसान हो गया है। बैंक दी वेबसाइट जा शाखा ते जाओ, क्लेम फॉर्म भरो, दस्तावेज जमा करो, 15 दिनां च रकम प्राप्त करो, अते नॉमिनी नाल क्लेम दा निपटारा होवे होर भी आसान।
2: RBI कहिंदा है,
1: जानकार बनो, सचेत रहो।
3: जिस तरह तुहानू पता ही है कि झोने की जिहड़ी खरीद है वो 1 अक्तूबर

0: द्वारा इन्वेस्टर जागरूकता पहल। और जानकारी ले सभी इन्वेस्टर वेबसाइट पे विजिट करो या सभी सारथी ऐप डाउनलोड करो।
1: साइबर फ्रॉड या धोखाधड़ी की जानकारी ले 1930 हेल्पलाइन नंबर डायल करो या www.cybercrime.gov.in ते शिकायत दर्ज करवाओ।

0: ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਸੀ ਪਰਿਵਾਰਿਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਸਦੇ ਵੇੜੇ। ਅਸੀਂ ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਦੇ ਜਲੰਧਰ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਦਿਨ ਦਾ ਇੱਕ ਵਜਣ ਵਾਲਾ, ਆਓ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ ਹਿੰਦੀ ਵਿੱਚ ਸਮਾਚਾਰ।
1: ਨਮਸਕਾਰ, ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਸਮਾਚਾਰ ਕੇ ਸਾਥ ਮੈਂ ਕਨਕਲਤਾ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि केंद्र सरकार ने अपने शासन के दृष्टिकोण और कार्य संस्कृति में पावर टू एम्पावर सिद्धांत को अपनाया है। नई दिल्ली में आज ब्लूमबर्ग न्यू इकोनॉमी फोरम में श्री मोदी ने कहा कि शक्ति केवल आगे बढ़ने की क्षमता नहीं है, बल्कि दूसरों को सशक्त बनाने की क्षमता भी है। प्रधानमंत्री ने कहा कि वर्ष 2014 के बाद से भारत में स्टार्टअप का काफी विस्तार हुआ है।
2: भारत में कुछ 100 स्टार्टअप ही हुआ करते, अब देश में इनकी संख्या 2.5 लाख से अधिक हो गई। करीब आधे स्टार्टअप छोटे शहरों और कस्बों से आते हैं। 45% से अधिक स्टार्टअप्स में कम से कम एक महिला डायरेक्टर या पार्टनर है, यानी इनोवेशन के अवसर अधिक लोगों तक पहुंच रहे हैं।
1: प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि वैश्विक अनिश्चितता के बीच भारत का आर्थिक विकास एक मजबूत नींव पर हो रहा है। उन्होंने कहा कि इस चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही में सकल घरेलू उत्पाद विकास दर 7.8% रही। श्री मोदी ने कहा कि आज भारत का विदेशी मुद्रा भंडार 700 अरब डॉलर से अधिक हो गया है और बैंकिंग प्रणाली कई दशकों में अपनी सबसे मजबूत स्थिति में है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत की रिफॉर्म एक्सप्रेस तेज गति से आगे बढ़ रही है।

0: भारत नई दिल्ली में बहुपक्षीय तकनीकी और आर्थिक सहयोग के लिए बंगाल की खाड़ी क्षेत्र की पहल बिम्स्टेक संगठन के गृहमंत्रियों की पहली बैठक की मेजबानी कर रहा है। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि ये ऐतिहासिक बैठक आतंकवाद, संगठित अपराधों, नशीले पदार्थों, तस्करी, अवैध वित्तीय प्रवाह तथा साइबर खतरों से निपटने के साझा संकल्प को उजागर करती है। उन्होंने कहा कि सदस्य देश आपसी समन्वय के माध्यम से सुरक्षित और मजबूत बिम्स्टेक क्षेत्र बनाने के लिए प्रतिबद्ध हैं।
1: ये केवल नशे का कारोबार नहीं है, बल्कि हमारे युवाओं के जीवन, हमारे समाज, हमारी संस्कृति और आने वाली पीढ़ियों पर हमला है। यह एक देश के प्रयासों से रुक नहीं सकता। हमें होल ऑफ रीजन अप्रोच अपनाना होगा। ड्रग की अवैध कमाई संगठित अपराध को आर्थिक शक्ति देती है और आतंकवादी वित्त पोषण में भी इसका इस्तेमाल होता है। प्रीकर्सर्स रसायनों का डायवर्जन और डार्क वेब के माध्यम से लेनदेन इस चुनौती को और जटिल बनाते हैं।
0: आतंकवाद को कतई बर्दाश्त न करने की भारत की नीति पर गृहमंत्री ने इस दिशा में सामूहिक संकल्प का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि किसी भी आतंकी नेटवर्क को पनाह, भर्ती, प्रशिक्षण, धन या पड़ोसी देशों के विरुद्ध गतिविधियां चलाने के लिए क्षेत्र में कोई जगह न मिले। कनाडा की विदेश मंत्री अनीता आनंद आज से दो दिन की भारत यात्रा पर रहेंगी। इस दौरान वे विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर तथा कौशल विकास और उद्यमिता मंत्री जयंत चौधरी से कल मुलाकात करेंगे। इस बीच भारत में कनाडा के उच्चायुक्त क्रिस्टोफर कूटर ने कहा है कि कनाडा प्रस्तावित मुक्त व्यापार समझौते, अधिक निवेश और दोनों देशों के बीच लोगों की आवाजाही के जरिए भारत के साथ द्विपक्षीय व्यापार सुदृढ़ करने का इच्छुक है। दिल्ली पुलिस ने सीजेपी के नेता सौरभ दास और आशुतोष रांका को हिरासत में ले लिया है। ये लोग राष्ट्रीय राजधानी में जंतर मंतर में घुसने की कोशिश कर रहे थे। दिल्ली पुलिस ने कल जंतर मंतर को निर्धारित प्रदर्शन स्थल की सूची से हटा दिया था। पूर्वी दिल्ली में 3 नए प्रदर्शन स्थल रामलीला मैदान, बुराड़ी मैदान और सीबीडी मैदान सूचित किए गए हैं। डेनमार्क ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट आज ओडेंस में शुरू हो रहा है। महिला सिंगल्स के पहले दौर में पीवी सिंधु और तन्वी शर्मा अपनी अपनी चुनौती पेश करेंगी। पुरुष सिंगल्स के पहले दौर में लक्ष्य सेन और किदांबी श्रीकांत भी आज अपने अपने मुकाबले खेलेंगे। आयुष शेट्टी का मैच कल होगा। पुरुष डबल्स में सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी कल अपना अभियान शुरू करेंगे। घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक में आज 0.8% की वृद्धि दर्ज की गई। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 554 अंक बढ़कर 72,479 पर पहुंच गया, जबकि निफ्टी 176 अंक की वृद्धि के साथ 22,540 पर पहुंचा। नवरात्रि का आज तीसरा दिन है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि ये दिन साहस, शांति और दिव्य शक्ति की प्रतीक देवी चंद्रघंटा को समर्पित है। उन्होंने सभी के लिए सुख, समृद्धि और सफलता की कामना की। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: असी आकाशवाणी ते जलंधर केंद्र तो बोल रहे हैं। आओ तुहानू साडे दिन विच बाकी दे रहिंदे प्रोग्राम ते उहनां दा प्रसारण समां दस दईए। हुण तो थोड़ी देर बाद यानी 1:15 तो लैके 1:40 तक ते फिर 2 बजे तो लैके 2:15 तक तुसी सुनोगे प्रोग्राम फौजी वीरां लई।

शामी 6:30 प्रायोजित प्रोग्राम सुनोगे किसान वाणी। आज इस प्रोग्राम च किसान संदेश, किसान समाचार तो इलावा एक सवानी मनप्रीत सपनप्रीत कौर नाल मुलाकात सुनवाई जाएगी। इस तो इलावा झोने दी पराली च कनक दी बिजाई टंग, इस विषय ते जानकारी देंगे डॉक्टर परमिंदर सिंह। रात 7:00 पंजाबी गीत सुनवाए जाएंगे। साढ़े दिल्ली केंद्र राही एक विशेष प्रोग्राम सुनोगे जन सेवा से देश सेवा, रात 7:10 ते। रात 7:45 ते एक वार्ता सुनोगे, अंग्रेजी वार्ता सुनोगे मिशन वेलनेस, वार्ताकार नवदीप सिंह। 8:00 हिंदी गीत सुनाए जाएंगे ते रात 8:10 ते जन सेवा तो संदेश सेवा दे तहत भारत की राष्ट्रीय की नवी परिभाषा, इस बारे गलबात की जाएगी। रात 8:00 पंजाबी गीत सुनाए जाएंगे ते इस तो इलावा रात 9:30 निर्धारित रागा ते शब्द कीर्तन सरवन करोगे। रात 10:02 ते शास्त्रीय संगीत के प्रोग्राम सुर साधना दे विच उस्ताद सतविंदर पाल सिंह का सरंगी ते बजाया राग बिहार सुनाया जाएगा। फोन ते व्हाट्सएप दे रही थोड़ियां प्यारे प्यारे गीतां दी फरमाइशां नूं पूरा कीता जाएगा, प्रोग्राम होएगा थोड़ी फरमाइश। पूरे दिन विच समाचार ते मुख समाचार अपने निर्धारित समय ते वारोवार प्रसारित कीते जाएंगे। ए सन साडे अज दे बाकी दे रहिंदे प्रोग्राम्स ते उन्हां दा प्रसारण समां।

0: मैं ता टीका ला लिया हुण तू भी ला ले।
1: नहीं यार मैं नहीं लाउणा।
0: ए ता फिर यार मार वाली गल होगी।
1: नशा करन लई मजबूर करन वाले दोस्त दोस्त नहीं दुश्मन हुंदे आ। नाले ए तेरी सुइयां सांझी करन नाल तेनू एचआईवी दा वी खतरा हो सकदा है।
2: अज ही सरकार दी युद्ध नशा विरुद्ध मुहिम दा हिस्सा बनो ते दोस्तां दा वी नशा छुड़वाओ। बाकी जेकर एचआईवी होण दा शक है ते सरकारी हॉस्पिटल विच एचआईवी दा टेस्ट मुफ्त करवाओ। वधेरे जानकारी लई डायल करो टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर 1097। पंजाब स्टेट एड्स कंट्रोल सोसाइटी वल्लों जनहित विच जारी।
3: लाओ जी अज तुहानू दसांगा वायरल ना होण दे तरीके।
1: ओ लोकी तां वायरल होण दे तरीके दसदे आ ते तू वायरल ना होण दा।
3: सोशल मीडिया ते वायरल होण नालों वी वध जरूरी है जिम्मेदार नागरिक बनना ते उस दे लई जरूरी है ए जानना कि एचआईवी एड्स किवें नहीं फैलदा। एचआईवी एड्स नाल जी रहे व्यक्ति नू छोण जां हथ मिलाउण नाल संक्रमित व्यक्ति द्वारा वरते उपकरणां या भांडियां दे इस्तेमाल नाल संक्रमित व्यक्ति द्वारा वरते गए गुसलखाने दे इस्तेमाल जां मच्छर दे कट्टण नाल।
2: वधेरे जानकारी लई टोल फ्री एड्स हेल्पलाइन नंबर 1097 ते कॉल करो। पंजाब स्टेट एड्स कंट्रोल सोसाइटी द्वारा जनहित विच जारी।
4: साइबर फ्रॉड या धोखाधड़ी की जानकारी लई 1900

0: क्या नॉलेज केवल कुछ लोगों की ताकत बनी रहेगी या सबकी क्षमता बढ़ाएगी? यहीं से एक नया विचार जन्म लेता है और ये विचार है पावर टू एम्पावर, पावर टू एम्पावर, पावर टू कंट्रोल से आगे पावर टू एनेबल, पावर टू कॉम्पीट से आगे पावर टू कोलैबोरेट, पावर टू सक्सीड से आगे पावर टू हेल्प अदर सक्सीड। और इसलिए आज मैं यहाँ जिस विजन के साथ आया हूँ वो है पावर टू एम्पावर।
1: प्रधानमंत्री ने कहा कि विश्वव्यापी अनिश्चितता के बावजूद भारत का आर्थिक विकास

0: टू कोलैबोरेट, पावर टू सक्सीड से आगे पावर टू हेल्प अदर सक्सीड। और इसलिए आज मैं यहाँ जिस विजन के साथ आया हूँ वो है पावर टू एम्पावर।
1: प्रधानमंत्री ने कहा कि विश्वव्यापी अनिश्चितता के बावजूद भारत का आर्थिक विकास मजबूत नींह ते टिकिया होया है। उन्होंने कहा कि मौजूदा वित्तीय साल की पहली तिमाही में जीडीपी वाधा दर 7.8% रही है। श्री मोदी ने कहा कि आज भारत के विदेशी मुद्रा भंडार 700 अरब डॉलर तो वध है ते बैंकिंग प्रणाली दहाकों में अपनी सब तो मजबूत स्थिति में है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत की सुधार एक्सप्रैस तेज रफ्तार नाल अगे बढ़ रही है। श्री मोदी ने कहा कि 21वीं सदी में भारत की तरक्की सारियां दे नाल अगे वधण अते सारियां नूं इकट्ठे लियाउण दी कहानी है। उन्होंने कहा कि जदों भी दुनिया नूं एक मजबूत थम की लोड़ हुंदी है तां भारत अपनी जिम्मेवारी नूं समझते हुए मदद का हथ वधाउंदा है। श्री मोदी ने कहा कि अज भारत में 2000 तो वध ग्लोबल कंपीटेंस सेंटर ने जो दुनिया भर दीआं कंपनियां नूं सेवावां प्रदान करदे ने। श्री मोदी ने कहा कि 21वीं सदी में तकनोलॉजी डाटा ज्ञान और नवीनता शक्ति के महत्वपूर्ण स्रोत बन गए हैं। उन्होंने कहा कि सरकार का निरंतर यत्न यह यकीनी बनाना है कि भारत की समर्थावां दूजे देशों लिए भी मौकों के नवे दरवाजे खोलन। श्री मोदी ने कहा कि भारत लोकतंत्र की जननी है।
0: भारत मदर ऑफ डेमोक्रेसी है। भारत में 100 से ऊपर भाषाएं हैं। करीब 80,000 रजिस्टर्ड न्यूज़पेपर और पब्लिकेशंस हैं। 1000 से ज्यादा सैटेलाइट टीवी चैनल्स हैं। हमारे यहाँ अलग अलग मुद्दों पर खुलकर बहस होती है, अलग अलग दृष्टिकोण पर जनता चर्चा करती है। और वर्तमान समय में इसमें जिसने एक बड़ी भूमिका निभाई है वो है डिजिटल पावर।
1: श्री मोदी ने कहा कि भारत ने पिछले दहाके 25 करोड़ लोगों को गरीबी तो बाहर कढ़िया है। भारत नवी दिल्ली में बहुपक्षी तकनीकी ते आर्थिक सहयोग लिए बंगाल की खाड़ी खेत्र के पहलकदमी बिमस्टेक के गृह मंत्रियों की पहली मीटिंग की मेजबानी कर रहा है। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा कि यह इतिहासिक मीटिंग दहशतगर्दी, संगठित अपराधा, नशीले पदार्थां, तस्करी, गैर कानूनी वित्तीय प्रवाह और साइबर खतरों का मुकाबला करने के सांझे संकल्प को उजागर करती है। उन्होंने कहा कि मैंबर देश आपसी तालमेल राही एक सुरक्षित मजबूत बिमस्टेक खेत्र बनाने लिए वचनबद्ध ने। इस मौके बोलदे गृहमंत्री ने कहा कि बिमस्टेक खेत्रीय एकता आर्थिक सहयोग और समूहक सुरक्षा लिए एक महत्वपूर्ण मंच वजों उभरिया है। उन्होंने कहा कि भारत हमेशा शांति और मनुखी भलाई लिए वचनबद्ध रहा है जो वसुदैव कुटुंबकम के मंत्र से आधारित है। श्री शाह ने कहा कि भारत सारे देशों की प्रभुसत्ता और खेतरी अखंडता का सत्कार करता है और विवादों के शांतिपूर्ण हल का समर्थन करता है। दहशतगर्दी प्रति भारत की जीरो टॉलरेंस नीति को दोहराते हुए गृहमंत्री ने कहा कि इस दिशा में समूहक संकल्प का सद्दा दिया जाना चाहिए।
2: ये केवल नशे का कारोबार नहीं है बल्कि हमारे युवाओं के जीवन, हमारे समाज, हमारी संस्कृति और आने वाली पीढ़ियों पर हमला है। ये एक देश के प्रयासों से रुक नहीं सकता। हमें होल ऑफ रीजन अप्रोच अपनाना होगा। ड्रग की अवैध कमाई संगठित अपराध को आर्थिक शक्ति देती है और आतंकवादी वित्त पोषण में भी इसका इस्तेमाल होता है। प्रीकर्सर्स रसायनों का डाइवर्जन और डार्क वेब के माध्यम से लेनदेन इस चुनौती को और जटिल बनाते हैं।
1: ने खुफिया ते कानून लागू करने वाली एजेंसियां वित्तीय निगरानी ते सरहदी प्रबंधन विचकार मजबूत सहयोग ते तालमेल दी लोड़ ते जोर दिता। ये खबरां तुसी आकाशवाणी तो सुन रहे हो। साडा एक्स हैंडल है @AIRRNU जलंधर। अंतरराष्ट्रीय मुद्रा फंड IMF ने मौजूदा ते अगले वित्तीय साल लई भारत दी GDP विकास दर दा अनुमान वधा के 7% कर दिता है। बैंकॉक में IMF की अंतरराष्ट्रीय मुद्रा फंड की सालाना मीटिंग में अक्तूबर 2026 विश्व आर्थिक दृष्टिकोण च महत्वपूर्ण सोध की गई है। IMF ने जुलाई में विकास दर के अनुमान मौजूदा वित्तीय साल 6.4% आने वाले वित्तीय साल 6.7% रहने की पेशीनगोई की थी। बहुत ही अस्थिर विश्व आर्थिक हालात के बावजूद कई ढांचागत ताकत भारत की आर्थिकता मजबूती दे रही ने। इन मजबूत घरेलू मंग, सेवावान की मजबूत गतिविधि, ढांचागत सुधार से जनसंख्यकी शामिल ने। दिल्ली पुलिस ने कॉकरोच जनता पार्टी CJP के आगुआ सौरभ दास से आशुतोष रंका हिरासत में लै लिया। ये राष्ट्रीय राजधानी में जंतर मंत्र में दाखिल होने की कोशिश कर रहे सन। दिल्ली पुलिस ने कल जंतर मंत्र निर्धारित विरोध प्रदर्शन स्थानों की सूची चो हटा दिता सी। 3 नवे विरोध प्रदर्शन स्थान रामलीला मैदान, बुराड़ी ग्राउंड।

0: एक प्रॉब्लम को सॉल्यूशन में बदलना, यह अपने आप में एक बड़ी क्षमता है। लेकिन जब यह अवसर समाज के अधिक से अधिक लोगों को मिलता है तो शक्ति का संतुलन बनता है और इसका प्रभाव कई गुना बढ़ जाता है। भारत की स्टार्टअप जर्नी इसी बदलाव का उदाहरण है।
1: वजीर आजम ने कहा कि हुकूमत की यह मुसलसल कोशिश है कि इस बात को यकीनी बनाया जाए कि भारत की सलाहियतें दीगर मुल्कों के लिए भी मौके के नए दरवाजे खोलें। जनाब मोदी ने इस बात को उजागर किया कि भारत ने पिछली दहाई में 25 करोड़ लोगों को गरीबी के सतह से बाहर निकाला है।
0: पावर के पर्पज पर जो फोकस है, यही सोच गवर्नेंस में भी जरूरी है। सरकार के पास अथॉरिटी है, लेकिन इसका उद्देश्य ये नहीं होना चाहिए कि देश का नागरिक सिस्टम पर ही निर्भर हो जाए, बल्कि इसका मकसद ये होना चाहिए कि देश के नागरिक सक्षम हो, सशक्त हो। और भारत इसी रास्ते पर चल रहा है। इसी रास्ते पर चलते हुए भारत ने बीते एक दशक में 25 करोड़ लोगों को गरीबी से बाहर निकाला है।
1: भारत आज नई दिल्ली में कसीर रुखी तकनीकी और इक्तिसादी ताउन के प्लेटफॉर्म यानी बिम्स्टेक के वज़राए दाखिला की पहली मीटिंग की मेजबानी कर रहा है। ये तारीखी मीटिंग दहशतगर्दी, मुनज़्ज़म जराइम, नारकोटिक्स, इंतहा पसंदी, गैर कानूनी तिजारत और साइबर खतरात से निमटने के तई मुश्तरक अज़्म की अलामत है। इस मौके पर खिताब करते हुए वज़ीर दाखिला अमित शाह ने कहा कि इलाकाई सालमियत, इक्तिसादी ताउन और मजमू सलामती के लिए बिम्स्टेक एक अहम प्लेटफॉर्म बनकर उभरा है। उन्होंने कहा कि भारत वसुधैव कुटुंबकम के उसूल के तहत हमेशा अमन और इंसानी फलाह व बहबूद के लिए पुरअज़्म रहा है। भारत की दहशतगर्दी को हरगिज बर्दाश्त न करने की पॉलिसी की तौसीक करते हुए वजीर दाखला ने इज्तिमाई अज़्म के लिए कहा, जिससे इस बात को यकीनी बनाया जा सके कि खित्ते में पनाह भर्ती करने, तरबियत देने, फंडिंग करने और पड़ोसी मुल्कों के खिलाफ सरगर्मियों की खातिर दहशतगर्द अपने नेटवर्क के लिए जगह हासिल न कर सकें।
2: आतंकवादियों, उनके सहायकों, आपराधिक नेटवर्क, वित्तीय चैनल और सीमा पार गतिविधियों पर सत्यापित तथा कार्रवाई योग्य सूचना का समय पर आदान प्रदान हमारी सामूहिक सुरक्षा को मजबूत कर सकता है।
1: दहशतगर्दी के खिलाफ ताउन पर बात करते हुए वजीर मौसूफ ने नोडल एजेंसियों के जरिए इंटेलिजेंस के तबादले और दहशतगर्दी को फंडिंग करने और मुनज़्ज़म जराइम के खिलाफ बेहतर ताउन की जरूरत पर जोर दिया। उन्होंने सभी बिम्स्टेक मेंबर मुल्कों से ताउन को मजबूत करने को कहा, ताकि इस बात को यकीनी बनाया जा सके कि कोई भी मुजरिम या दहशतगर्द कानून की गिरफ्त से बाहर न रह सके, भले ही वो कहीं भी छुपा हुआ हो। बिम्स्टेक एक इलाकाई तंजीम है जिसका कयाम साल 1997 में अमल में आया था। खलीज बंगाल के अतराफ के मुल्कों और इसके पड़ोसी मुल्कों के दरमियान तकनीकी और इकतसादी ताउन को फरोग देना इसका मकसद है। बिम्स्टेक में 7 मेंबर ममालिक शामिल हैं, जिनमें बांग्लादेश, भूटान, भारत, म्यांमार, नेपाल, श्रीलंका और थाईलैंड हैं। बैनुल अक्वामी मालियाती फंड IMF ने साल 2026-27 के लिए भारत की मजमूई घरेलू पैदावार GDP की शरह नमू के तखमीने को 6.4 से बढ़ाकर 7% कर दिया है। IMF ने अपनी रिपोर्ट वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक में कहा कि तखमीने में ये तजिया तवक्को से ज्यादा नमू की बुनियाद पर किया गया है। उसने कहा कि भारत तरक्की के तजज़ियों की बुनियाद पर मुमताज़ मुल्क बनकर उभर रहा है, जिससे मुस्तहकम और ताकतवर तरक्की की निशानदेही होती है। वज़ीर-ए-आज़म के प्रिंसिपल सेक्रेटरी PK मिश्रा ने आज कहा कि शवाहिद पर मबनी पॉलिसी बनाने और ख़ास तौर से मसनूई ज़हानत के दौर में डेटा को जमा करना और इसका तजज़िया करना बहुत ज़रूरी है। नई दिल्ली के भारत मंडपम में आदाद और शुमार की वजारत और प्रोग्राम के निफाज से मुतालिक कॉन्क्लेव में खिताब करते हुए जनाब मिश्रा ने यह बात कही। ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने अवामी खिदमत के 25 साल मुकम्मल कर लिए हैं। जनसेवा से देश सेवा के मंत्र और पुख्ता अज़्म के साथ ये सफर आगे बढ़ा है और ये सिलसिला आज भी जारी है। आज अपनी खसूसी सीरीज के तहत हम इस बात का तज़किरा कर रहे हैं कि भारत के शुमाल मशरक़ी खित्ते में इस नज़रिए से किस तरह अमन इस्तेहकाम और तरक्की को अमली शक्ल दी गई है। पेश है एक रिपोर्ट।
3: मरकजी हुकूमत ने साल 2014 से अपनी मशरक नवाज पॉलिसी के तहत शिमाल मशरकी खित्ते को स्ट्रेटजिक गेटवे के तौर पर पोजीशन दी है। वजारत दाखिला के मुताबिक खित्ते में शोरश पसंदी से मुतालिक वाकयात में 70% से ज्यादा की कमी आई है। सलामती की सूरत हाल में यह बेहतरी मुसल्ह ग्रुपों के साथ 12 से ज्यादा अमन समझौतों का नतीजा है। इन ग्रुप

0: में बोडो, कड़वी और उल्फा के धड़े शामिल हैं, जिनके 10,000 से ज्यादा लड़ाकों ने खुद सुपुर्दगी की। साल 2023 में अपने आसाम दौरे में वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा था कि अब शिमाल मशरकी भारत मुल्क के बड़े माशी मराकज में से एक बनने की राह पर गामजन है। माहरीन का मानना है कि हुकूमत का यह हमागीर नजरिया शिमाल मशरकी भारत को एक ही सरहदी महाज से निकालकर मुल्क के अहम माशी तरक्की के इंजन के तौर पर काम कर रहा है। गुवाहाटी से राकेश डोले की रिपोर्ट के साथ उर्दू खबरों के लिए मेहताब आलम।
1: कनाडा की खारजी उमूर की वजीर अनीता आनंद आज से भारत का 2 दिन का दौरा करेंगी। अपने दौरे के दौरान कल वो वजीर खारजा डॉक्टर एस जयशंकर और हुनरमंदी की तरक्की और एंटरप्रेन्योरशिप के वजीर जयंत चौधरी से मुलाकात करेंगी। दिल्ली पुलिस ने सीजेपी रहनुमा सौरव दास और आशुतोष रांका को हिरासत में ले लिया है, जो कौमी राजधानी दिल्ली के जंतर मंतर में दाखिल होने की कोशिश कर रहे थे। दिल्ली पुलिस ने कल नामजद एहतजाज करने के मकाम के तौर पर जंतर मंतर को फहरिस्त से हटा दिया है। एहतजाज और मुजाहिरों की नई जगहें रामलीला मैदान, बुराड़ी का मैदान और मशरकी दिल्ली में सीबीडी मैदान है। माहौलियात और जंगलात के मरकजी वजीर भूपेंद्र यादव ने दिल्ली के वजीर आला रेखा गुप्ता के साथ आज नई दिल्ली में 5 अवामी ईवी चार्जिंग स्टेशनों का आगाज किया और 13 नए कंटिन्यूस एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग स्टेशनों का इफ्तिताह किया। मीडिया से बात करते हुए जनाब यादव ने दिल्ली में आलूदगी पर काबू पाने के इकदाम के निफाज में मोहतरमा गुप्ता की क्यादत की यह कहते हुए सताइश की कि हुकूमत ने आलूदगी के बड़े हॉटस्पॉट पर 11 इकदाम पर अमलावरी के इकदाम किए हैं। कोस्टा रिका के सैन जोस में भारत के नए रेजिडेंट मिशन ने कामकाज शुरू कर दिया है। इस कदम से वस्ती अमेरिका में भारत की सिफारती पहचान को तकवीत मिलेगी। शेफाली वर्मा और शुभमन गिल को आईसीसी की जानिब से सितंबर 2026 के लिए खवातीन और मर्दों के प्लेयर ऑफ द मंथ करार दिया गया है। और आखिर में खास खबरें एक बार फिर। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा है कि हुकूमत की ये लगातार कोशिश रही है कि वो इस बात को यकीनी बनाए कि भारत की सलाहियतें दूसरे मुल्कों के लिए भी इम्कान के नए दरवाजे खोलें। वज़ीर-ए-आज़म ने नई दिल्ली में ब्लूमबर्ग न्यू इकोनॉमी फोरम से खिताब किया। भारत ने पहली बिम्स्टेक गुजराए दाखिला मीटिंग की मेजबानी की। वजीर दाखिला अमित शाह ने कहा कि बिम्स्टेक इलाकाई यकजहती, इकतसादी तआवुन और इज्तिमाई सलामती के अहम प्लेटफॉर्म के तौर पर उभरा है। बैनुल अक्वामी मालियाती फंड IMF ने साल 2026-27 के लिए भारत की मजमूई घरेलू पैदावार GDP की तरक्की के तखमीने को बढ़ाकर 7% कर दिया है। और कनाडा की वजीर खारजा अनीता आनंद आज से अपने 2 रोजा भारत दौरे पर रहेंगी। इसके साथ ही आकाशवाणी से खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ।
2: समाचारों तो बाद एक बार फिर तो हाजिर है प्रोग्राम फौजी वीरा लैला के। प्रोग्राम अगे तोरदे हां ते आओ सुनदे हां प्रोग्राम दा अगला गीत।

रोमांस इस फिल्म का गीत तुसी सुन रहे सी लता मंगेशकर ते अमित कुमार दी आवाज़ विच। आओ सुनते हैं प्रोग्राम दा अगला गीत लव फिल्म चलिया गया। आवाज़ा SP बाला सुब्रमण्यम ते चित्रा दिया।

0: ब्लूमबर्ग न्यू इकोनॉमी फोरम को संबोधित किया। गृहमंत्री अमित शाह ने बिम्स्टेक को क्षेत्रीय एकीकरण, आर्थिक सहयोग और सामूहिक सुरक्षा के लिए एक महत्वपूर्ण मंच बताया। यूपीआई पर ग्राहक से व्यापारी के बीच 2,000 रूपए पर यूपीआई मर्चेंट डिस्काउंट दीपावली के बाद लागू। आईएमएफ ने 2026-27 के लिए भारत की जीडीपी वृद्धि दर का अनुमान बढ़ाकर 7% किया। कनाडा के विदेश मंत्री अनीता आनंद आज से 2 दिन के भारत दौरे पर और शेफाली वर्मा तथा शुभमन गिल को सितंबर 2026 के लिए आईसीसी महिला और पुरुष प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सरकार ने अपने शासन के दृष्टिकोण और कार्य संस्कृति में पावर टू एम्पावर के सिद्धांत को अपनाया है। नई दिल्ली में आज ब्लूमबर्ग न्यू इकोनॉमी फोरम में श्री मोदी ने कहा कि भारत की प्रगति सामूहिक विकास और साझा अवसरों पर टिकी हुई है। उन्होंने कहा कि शक्ति केवल आगे बढ़ने की क्षमता नहीं है, बल्कि ये दूसरों को सशक्त बनाने की क्षमता भी है। प्रधानमंत्री ने कहा कि डिजिटल शक्ति ने भारत के लिए नए अवसर खोले हैं। श्री मोदी ने कहा कि भारत लोकतंत्र की जननी है।
1: भारत मदर ऑफ डेमोक्रेसी है। भारत में 100 से ऊपर भाषाएं हैं। करीब 80,000 रजिस्टर्ड न्यूज़पेपर और पब्लिकेशंस हैं। 1,000 से ज्यादा सैटेलाइट टीवी चैनल्स हैं। हमारे यहाँ अलग अलग मुद्दों पर खुलकर बहस होती है।

0: अलग अलग दृष्टिकोण पर जनता चर्चा करती है और वर्तमान समय में इसमें जिसने एक बड़ी भूमिका निभाई है वो है डिजिटल पावर।
1: प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि वैश्विक अनिश्चितताओं के बीच भारत का आर्थिक विकास मजबूत नींव पर टिका हुआ है।
0: ग्लोबल चैलेंजेस के लिए सॉल्यूशंस में भी योगदान देना होगा। क्लाइमेट चेंज हो, वाटर गवर्नेंस हो, पब्लिक हेल्थ हो या इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज का रिस्पॉन्सिबल यूज हो, दुनिया को ऐसा सामर्थ्य चाहिए जो सॉल्यूशन दे, नए अवसर पैदा करे।
1: श्री मोदी ने कहा कि चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही में सकल घरेलू उत्पाद विकास दर 7.8% रही। उन्होंने कहा कि आज भारत का विदेशी मुद्रा भंडार 700 अरब डॉलर से अधिक हो गया है और बैंकिंग प्रणाली कई दशकों में अपनी सबसे मजबूत स्थिति में है। श्री मोदी ने कहा कि भारत की रिफॉर्म एक्सप्रेस तेज गति से आगे बढ़ रही है। प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार ने पिछले दशक में 25 करोड़ लोगों को गरीबी से बाहर निकाला है।
0: पावर के पर्पज पर जो फोकस है, यही सोच गवर्नेंस में भी जरूरी है। सरकार के पास अथॉरिटी है, लेकिन इसका उद्देश्य ये नहीं होना चाहिए कि देश का नागरिक सिस्टम पर ही निर्भर हो जाए, बल्कि इसका मकसद ये होना चाहिए कि देश के नागरिक सक्षम हो, सशक्त हो। और भारत इसी रास्ते पर चल रहा है। इसी रास्ते पर चलते हुए भारत ने बीते एक दशक में 25 करोड़ लोगों को गरीबी से बाहर निकाला है।
1: प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि वर्ष 2014 के बाद से भारत के नवाचारों का काफी विस्तार हुआ है।
0: भारत में कुछ 100 स्टार्टअप ही हुआ करते, अब देश में इनकी संख्या 2.5 लाख से अधिक हो गई। करीब आधे स्टार्टअप 5% से अधिक स्टार्टअप में कम एक महिला डायरेक्टर या पार्टनर है, यानी इनोवेशन के अवसर अधिक लोगों तक पहुंच रहे हैं।
1: गृहमंत्री ने कहा कि सदस्य देश आपसी समन्वय के, कृपया इसे फिर से सुन ले, भारत नई दिल्ली में बहुपक्षीय तकनीकी और आर्थिक सहयोग के लिए बंगाल की खाड़ी क्षेत्र की पहल बिम्स्टेक संगठन के गृहमंत्रियों की पहली बैठक की मेजबानी कर रहा है। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि ऐतिहासिक बैठक आतंकवाद, संगठित अपराधों, नशीले पदार्थों, तस्करी, अवैध वित्तीय प्रवाह तथा साइबर खतरों से निपटने के साझा संकल्प को उजागर करती है। श्री शाह ने मादक पदार्थों की तस्करी के खिलाफ अभियान में सभी पक्षों के सहयोग का आह्वान किया।
2: ये केवल नशे का कारोबार नहीं है, बल्कि हमारे युवाओं के जीवन, हमारे समाज, हमारी संस्कृति और आने वाली पीढ़ियों पर हमला है। ये एक देश के प्रयासों से रुक नहीं सकता। हमें होल ऑफ रीजन अप्रोच अपनाना होगा। ड्रग की अवैध कमाई संगठित अपराध को आर्थिक शक्ति देती है और आतंकवादी वित्त पोषण में भी इसका इस्तेमाल होता है। प्रीकर्सर्स रसायनों का डाइवर्जन और डार्क वेब के माध्यम से लेनदेन इस चुनौती को और जटिल बनाते हैं।
1: गृहमंत्री ने कहा कि सदस्य देश आपसी समन्वय के माध्यम से सुरक्षित और मजबूत बिम्स्टेक क्षेत्र बनाने के लिए प्रतिबद्ध हैं। उन्होंने कहा कि मानव तस्करी की समस्या मानवाधिकारों के लिए गंभीर चिंता का विषय है।
2: मानव तस्करी भी हमारे साझा सुरक्षा और मानव अधिकारों के समक्ष गंभीर चुनौती है। पीड़ितों की पहचान, बचाव, सहायता, पुनर्वसन और सुरक्षित वापसी में सहयोग हमारे सामूहिक प्रयास का महत्वपूर्ण हिस्सा रहना चाहिए।
1: श्री शाह ने खुफिया जानकारी, कानून प्रवर्तन, वित्तीय निगरानी और सीमा प्रबंधन एजेंसियों के बीच त्वरित सहयोग और समन्वय की जरूरत पर बल दिया। श्री शाह ने आतंकवादियों को मिलने वाले धन और संगठित अपराध से निपटने में मनोनीत नोडल एजेंसियों के जरिए खुफिया जानकारी के आदान प्रदान और बेहतर समन्वय पर भी बल दिया। यूपीआई पर ग्राहक से व्यापारी के बीच 2,000 रूपये से अधिक के लेन देन पर यूपीआई मर्चेंट डिस्काउंट दीपावली के बाद लागू किया जाएगा। नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया एनपीए ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि यूपीआई और सेवा संचालन समिति ने त्योहारी मौसम को ध्यान में रखते हुए आज यह निर्णय लिया है। रिपोर्ट में कहा गया है कि इसकी तारीख की सूचना अलग से दी जाएगी। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF ने वित्त वर्ष 2026

0: 27 के लिए भारत के सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि दर को 6.4% से बढ़ाकर 7% कर दिया है। IMF की प्रमुख विश्व आर्थिक परिदृश्य रिपोर्ट में कहा गया है कि इन अनुमानों में ये सुधार सुदृढ़ घरेलू मांग और मजबूत सेवा गतिविधियों के कारण आर्थिक वृद्धि को मिली अपेक्षा से अधिक गति के कारण किया गया है। केंद्रीय वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने वर्ष 2027 में भारत की सकल घरेलू उत्पाद GDP वृद्धि दर 7% रहने के अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के अनुमान की सराहना की है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में कई मुक्त व्यापार समझौतों से वैश्विक आर्थिक गतिविधि को बल मिलेगा और आपूर्ति श्रृंखला सुदृढ़ होगी। भारत के कोस्टारिका के सैनजोस में स्थित नए रेजिडेंट मिशन ने कार्य करना शुरू कर दिया है। यह मध्य अमेरिका में अपने राजनयिक दायरे को बढ़ाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। उम्मीद है कि मिशन भारत और कोस्टारिका के बीच द्विपक्षीय संबंधों को और मजबूत करेगा। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि मिशन आपसी राजनीतिक जुड़ाव को सुगम बनाएगा, द्विपक्षीय व्यापार, निवेश और आर्थिक सहयोग को बढ़ावा देगा तथा परस्पर हित के क्षेत्रों में सहयोग को मजबूत करेगा। कनाडा की विदेश मंत्री अनीता आनंद आज से 2 दिन की भारत यात्रा पर रहेंगी। इस दौरान वे विदेश मंत्री डॉ. एस जयशंकर तथा कौशल विकास और उद्यमिता मंत्री जयंत चौधरी से कल मुलाकात करेंगी। इस बीच भारत में कनाडा के उच्चायुक्त क्रिस्टोफर कोटर ने कहा है कि कनाडा प्रस्तावित मुक्त व्यापार समझौते, अधिक निवेश और दोनों देशों के बीच लोगों की आवाजाही के जरिए भारत के साथ द्विपक्षीय व्यापार सुदृढ़ करने का इच्छुक है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज नई दिल्ली में चेक गणराज्य के उप प्रधानमंत्री तथा उद्योग और व्यापार मंत्री कारिल हावलेचक से मुलाकात की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री सिंह ने कहा कि दोनों देश आत्मनिर्भर भारत को बढ़ावा देने के लिए भारत चेक संयुक्त रक्षा समिति का और विस्तार करने पर सहमत हुए हैं। प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव पीके मिश्रा ने कहा है कि विशेष रूप से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के युग में साक्ष्य आधारित नीति निर्माण के लिए आंकड़े एकत्र करना और उनका विश्लेषण करना आवश्यक है। एक रिपोर्ट।
1: नई दिल्ली में भारत मंडपम में सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के एक सम्मेलन में श्री मिश्रा ने कहा कि आंकड़े भारत की विकास यात्रा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। उन्होंने केंद्र और राज्यों के बीच बेहतर समन्वय पर बल दिया ताकि आंकड़े जुटाने की प्रक्रिया में एक रूपता लाई जा सके और समान परिभाषाओं तथा मानकों को अपनाया जा सके। उन्होंने कहा कि विश्वसनीय आंकड़े इसीलिए भी आवश्यक हैं ताकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के वर्ष 2047 तक विकसित भारत के दृष्टिकोण की प्रगति को मापा जा सके और एक समृद्ध, समावेशी, नवोन्मेषी और सतत राष्ट्र बनने की दिशा में देश की प्रगति का आकलन किया जा सके। दीपेंद्र की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार बल।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जनसेवा में 25 वर्ष पूरे कर लिए हैं। जनसेवा से देश सेवा उनकी यात्रा का मूल मंत्र रहा है। सेवा और सुशासन के इसी दृष्टिकोण के साथ सरकार भारत को वर्ष 2047 तक विकसित राष्ट्र बनाने का लक्ष्य हासिल करने के लिए लगातार काम कर रही है। समावेशी विकास और सामाजिक सशक्तिकरण के जरिए लोगों के जीवन में बदलाव लाने के प्रयास किए जा रहे हैं। आज इस विशेष श्रृंखला में हम बता रहे हैं कि भारत के पूर्वोत्तर क्षेत्र में शांति, स्थिरता और विकास को कैसे स्थापित किया गया है।
2: 2014 से केंद्र सरकार ने एक्ट ईस्ट पॉलिसी के तहत पूर्वोत्तर भारत को एक नए राजनीतिक प्रवेश द्वार के रूप में स्थापित किया है। गृह मंत्रालय के अनुसार क्षेत्र में उग्रवाद से जुड़ी घटनाओं में 70% से अधिक की भारी कमी आई है। सुरक्षा के माहौल में ये बड़ा सुधार बोडो, कार्बी और उल्फा गुटों सहित सशस्त्र समूहों के साथ हुए 1 दर्जन से अधिक ऐतिहासिक शांति समझौतों का परिणाम है, जिसके चलते 10,000 से अधिक उग्रवादियों ने आत्मसमर्पण किया है। आर्म फोर्स स्पेशल पावर एक्ट को कई क्षेत्रों से हटाया गया है। इस सुरक्षित माहौल का लाभ उठाते हुए केंद्र सरकार ने क्षेत्र में रिकॉर्ड निवेश किया है। पीएम दिवाइन जैसी समर्पित योजनाओं के माध्यम से 8 राज्यों में बुनियादी ढांचे का बड़े पैमाने पर विकास हो रहा है, जिसमें हर मौसम के अनुकूल राजमार्गों, नए रेलवे नेटवर्क और हवाई अड्डे तक शामिल है। 2023 में अपने असम दौरे के दौरान श्री मोदी ने कहा था कि पूर्वोत्तर भारत देश के प्रमुख आर्थिक केंद्रों में से एक बनने की राह पर है।
3: असम में नॉर्थ ईस्ट में सरकार और समाज के सामूहिक प्रयासों से जैसे जैसे शांति लौट रही है, वैसे वैसे पुराने नियमों में भी बदलाव किया जा रहा है। लंबे समय तक आर्म फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट आपसा नॉर्थ ईस्ट के अनेक राज्यों में रहा है, लेकिन बीते 8 सालों के दौरान

0: बड़ी शांति और बेहतर कानून व्यवस्था लागू होने के कारण हमें आपसा को नॉर्थ ईस्ट के कई क्षेत्रों से हटा दिया है। बीते 8 सालों के दौरान नॉर्थ ईस्ट में हिंसा की घटना में करीब 75% की कमी आई है।
1: विशेषज्ञों का कहना है कि सरकार का यह समग्र दृष्टिकोण पूर्वोत्तर भारत को एक सीमांत इलाके से राष्ट्र के लिए एक महत्वपूर्ण आर्थिक विकास इंजन में तेजी से बदल रहा है। राकेश तोले, आकाशवाणी समाचार, गुवाहाटी।
2: केंद्रीय पर्यावरण और वन मंत्री भूपेंद्र यादव ने दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के साथ आज नई दिल्ली में 5 सार्वजनिक इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग स्टेशन का शुभारंभ किया। संवाददाताओं से बातचीत में श्री यादव ने दिल्ली में वायु प्रदूषण से निपटने के उपायों को लागू करने के लिए दिल्ली सरकार की सराहना की। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। भारतीय सलामी बल्लेबाज शेफाली वर्मा को महिला एशिया कप और एशियाई खेलों में शानदार प्रदर्शन और महत्वपूर्ण मैचों में निर्णायक भूमिका निभाने के लिए सितंबर 2026 के लिए आईसीसी महिला प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया है। भारतीय कप्तान शुभमन गिल को वेस्टइंडीज के खिलाफ एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय श्रृंखला में बेहतरीन प्रदर्शन के लिए रिकॉर्ड 5वीं बार आईसीसी पुरुष प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया है। डेनमार्क बैडमिंटन टूर्नामेंट आज स्वीडन में शुरू हो गया है। महिला सिंगल्स में पीवी सिंधु पहले दौर के मुकाबले में जर्मनी की यवोन ली से मुकाबला करेंगी। पुरुष सिंगल्स में लक्ष्य सेन और के श्रीकांत भी आज अपने अपने पहले दौर के मुकाबले खेलेंगे। घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक में आज दोपहर के कारोबार में 0.8% की वृद्धि दर्ज की गई। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 598 अंक बढ़कर 72,523 पर पहुंच गया, जबकि निफ्टी 189 अंक की बढ़त के साथ 22,552 पर था। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, वैश्विक अनिश्चितता के बीच भारत की आर्थिक वृद्धि मजबूत हो रही है। उन्होंने नई दिल्ली में ब्लूमबर्ग न्यू इकोनॉमी फोरम को संबोधित किया। गृह मंत्री अमित शाह ने बिम्स्टेक को क्षेत्रीय एकीकरण, आर्थिक सहयोग और सामूहिक सुरक्षा के लिए एक महत्वपूर्ण मंच बताया। यूपीआई पर ग्राहक से व्यापारी के बीच 2,000 रूपए से अधिक के लेन देन पर यूपीआई मर्चेंट डिस्काउंट रेट दीपावली के बाद लागू। आईएमएफ ने 2026-27 के लिए भारत की जीडीपी वृद्धि दर का अनुमान बढ़ाकर 7% किया। और शेफाली वर्मा तथा शुभमन गिल को सितंबर 2026 के लिए आईसीसी महिला और पुरुष प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
3: मीडियम वेव 343.6 मीटर यानी 873 किलोहर्ट्ज़ ते असी आकाशवाणी दे जलंधर केंद्र तो बोल रहे हैं। पेशे प्रोग्राम रंगली धरती। अज इस प्रोग्राम च देवराज दे साथियों कोलों माता दी पेटां सुनवाईयां जाणगियां। आओ सुनदे हां इन्हां दी आवाज़ विच पेट।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अज नवी दिल्ली विच ब्लूमबर्ग न्यू इकोनॉमी फोरम नू संबोधन किया। उन्हां कहा सरकार ने अपने शासन दृष्टिकोण विच शक्ति तो शक्तिकरण के सिद्धांत नू अपनाया है। गृह मंत्री अमित शाह ने दहशतगर्दी प्रति भारत की जीरो टॉलरेंस नीति नू दोहरांदिया इस दे मुकाबले लई समूहिक संकल्प का सद्दा दिता है। अंतरराष्ट्रीय मुद्रा फंड IMF ने मौजूदा अते अगले वित्तीय साल लई भारत की GDP विकास दर का अनुमान वधा के 7% कर दिता है। कैनेडा दे विदेश मंत्री अनीता आनंद अज तो भारत के 2 दिना दौरे ते होंगे। पंजाब दे मानसा विच अज नशा विरोधी कारकुन परविंदर सिंह झोटा की गोली मार के हत्या कर दिती गई। जलंधर डिवीजन दे पेंडू खेतर विच डाक विभाग दीआं वख-वख योजनावां अते सेवावां बारे जागरूकता वधाउण दे उद्देश नाल पंजाब डाक सर्कल वल्लों मोबाइल थिएटर वैन मुहिम शुरू कीती गई है। सूबे दे कैबिनेट मंत्री डॉक्टर बलजीत कौर ने दस्या कि पंजाब सरकार वल्लों वित्तीय साल दौरान पिछड़ियां श्रेणियां दे 139 लाभपात्रियां नूं स्वै रुजगार स्थापित करन लई 4,82,00,000 रुपए दे कर्जे मुहैया करवाए गए ने। विजिलेंस ब्यूरो ने सितंबर महीने विच 6 केसां च 6 सरकारी अधिकारियों समेत 8 व्यक्तियों नूं रिश्वत लैंदिआं रंगे हत्थी काबू कीता है। मौसम विभाग ने अगले 2 दिनों दौरान पंजाब हरियाणा चंडीगढ़ ते दिल्ली विच गरज चमक नाल तेज़ हवावां चलन की संभावना जताई है। ए सन हुण तक दीआं न्यूज़ हैडलाइनस। आओ सुनते हैं प्रोग्राम चिट्ठियां मिठियां।

नमस्कार, तुहाडा मनपसंद प्रोग्राम चिट्ठियां मिठियां लेके मैं तुहाडा दोस्त ते आरजे तेजिंदर सिंह एक बार फिर हाजिर हाँ। इस प्रोग्राम च असी तुहाडे वल्लों भेजिया जांदियां प्यार भरिया चिट्ठियां नूं शामिल करते हुए तुहाडे वल्लों कीती जांदी पंजाबी गीतां दी फरमाइश नूं पूरा करते हाँ। दोस्तों, जेकर 13 अक्तूबर भाव अज दे दिन की गल करिए तां इह दिन खुशी ते गमी दोवां नाल संबंधित है। जेकर खुशी की गल करिए 13 अक्तूबर 1911 नूं प्रसिद्ध अदाकार ते प्लेबैक सिंगर अशोक कुमार का जन्मदिन होया सी। जेकर गमी की गल करिए 13 अक्तूबर 1987 नूं प्रसिद्ध अदाकार निर्देशक ते प्लेबैक सिंगर किशोर कुमार का देहांत हो गया सी। इह दोवें सगे भरा सन। किशोर कुमार का मूल नाम आभास कुमार गांगुली अते अशोक कुमार का मूल नाम कुमुद लाल गांगुली सी। दोवां भरावां ने फिल्मां च अदाकारी ते गायकी का लोहा मनवाया ते अमिट यादां छड्डियां। दोस्तों, ये गल्लां प्रोग्राम दे नाल नाल चलदियां रहणगियां। प्रोग्राम की पहली फरमाइश लई सानू चिट्ठियां भेजण वाले ने पिंड अमीर शाह वाला जिला फिरोजपुर तो मुख्तियार सिंह वरवाल ते होर बहुत सारे दोस्त मित्र, जमशेदपुर तो हरजिंदर सिंह भाटिया, एंजल भाटिया, नवनीच भाटिया ते पप्पी भाटिया, रिंगणी छत्तीसगढ़ तो दिनेश वर्मा ते करुणा वर्मा, सैक्टर 67 मोहाली चंडीगढ़ तो टीडी मल्होत्रा, रितिक मल्होत्रा, प्रतीक मल्होत्रा, अनिल शर्मा, जयवीर सिंह ठाकुर, डॉक्टर अमनदीप ते कालका तो शुभचंद्र बजाज, बिट्टा बजाज ते साहिल, पिंड कुड़ियाणा फाजिलका तो त्रिलोक सिंह सुखना, शिवजोत सिंह समूह परिवार, इस तरह इन्हां दे दोस्त बलतेज कुड़ियाणा ते भोला सुहाग, चकला बाजार समाणा तो पप्पू राजा खुशदिल, संगीता जिंदल ते हसमुख जिंदल, बस अड्डा हाजीपुर वाले तो गेसी नंगल वाला, रिका टोनी, सोनू बाली, लाली बिट्टू, प्रेम मोटरा वाला, प्यारे लाल ते बाली वर्मा, इस तरह आज़ाद नगर लक्सर हरिद्वार तो ताज मुहम्मद अंसारी, गुलाब साबिर राही, महराज जहां, छत्तीसगढ़ भाटापारा दतरेंगी तो द्वारिका प्रसाद वर्मा, किशोर कुमार वर्मा, दीपक कुमार वर्मा, चावेंद्र कुमार वर्मा, महस गेट नाभा तो सोमदत्त कैरव, ज्योति राणी ते गुरमन्नत। दोस्तों, इन्हां सारयां दी फरमाइश ते सुणदे आं प्रोग्राम दा पहला गीत।

दोस्तों तुसी सुन रहे सीगे बब्बू मान की खूबसूरत आवाज़ विच गीत बूटा। दोस्तों DTH दी पंजाबी प्रसारण सेवा ते RJ तेजिंदर सिंह कोलो तुसी सुन रहे हो प्रोग्राम चिट्ठिया मिठिया। दोस्तों तुसी भी प्रोग्राम चिट्ठिया मिठिया च अपनी फरमाइश ते गीत सुनने लिए सानू चिट्ठिया भेज सकते हो। चिट्ठिया भेजन लिए साडा पता है प्रोग्राम चिट्ठिया मिठिया मार्फत स्टेशन डायरैक्टर आकाशवाणी जलंधर। दोस्तों तुसी सानू वध तों वध चिट्ठिया भेजो, असी पूरी कोशिश करांगे कि तुहाडे वल्लों भेजियां जांदियां चिट्ठियां नूं प्रोग्राम च शामिल करते हुए तुहाडे वल्लों कीती जांदी पंजाबी गीतां दी फरमाइश नूं जरूर पूरा करिए। प्रोग्राम की अगली फरमाइश लिए सानू चिट्ठिया भेजन वाले ने मुहम्मदपुर सोत्र टाणी रतिया तो जीवन सिंह बूक, शंटी बूक, सिमरन बूक, छल्या राणी, गुरछिंदर बूक, बब्बू, कुलदीप, कीरत, भूषण खेड़ा, जशन बूक ते पूरा बूक।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अज नवी दिल्ली विच ब्लूमबर्ग न्यू इकोनॉमी फोरम नूं संबोधन कीता। उन्होंने कहा कि सरकार अपने शासन दृष्टिकोण विच शक्ति तो शक्तिकरण दे सिद्धांत नूं अपनाया है। गृहमंत्री अमित शाह ने दहशतगर्दी प्रति भारत की जीरो टॉलरेंस नीति नूं दोहराया। इस दे मुकाबले ले समूहिक संकल्प दा सद्दा दिता है। अंतरराष्ट्रीय मुद्रा फंड IMF ने मौजूदा ते अगले वित्तीय साल लई भारत दी GDP विकास दर दा अनुमान वधा के 7% कर दिता है। कैनेडा ते विदेश मंत्री अनीत आनंद अज तो भारत दे 2 दिना दौरे ते रहनगे। पंजाब दे मानसा विच अज नशा विरोधी कारकुन पतविंदर सिंह चोटा दी गोली मार के हत्या कर दिती गई है। जलंधर डिवीजन के पेंडू खेतरां विच डाक विभाग दीआं वख-वख योजनावां ते सेवावां बारे जागरूकता वधाउण दे उद्देश नाल पंजाब डाक सर्कल वल्लों मोबाइल थिएटर वैन मुहिम शुरू कीती गई है। सूबे दे कैबिनेट मंत्री डॉ. बलजीत कौर ने दस्सिया कि पंजाब सरकार वल्लों वित्तीय साल दौरान पछड़ियां श्रेणियां ते 139 लाभपात्रियां नूं स्वै रोजगार स्थापित करने लई 4,82,00,000 रुपए दे कर्जे मुहैया करवाए गए ने। विजिलेंस ब्यूरो ने सितंबर महीने विच 6 केसां विच 6 सरकारी अधिकारियां समेत 8 व्यक्तियों नूं रिश्वत लैंदिआं रंगे हत्थी काबू कीता। मौसम विभाग ने अगले 2 दिनों दौरान पंजाब हरियाणा चंडीगढ़ ते दिल्ली विच गरज चमक नाल तेज हवावां चलन दी संभावना जताई है। ए सन हुण तक दे मुख समाचार। असी आकाशवाणी ते जलंधर केंद्र तो बोल रहे हां। शाम दे 4:02 वज रहे ने। आओ हुण तुहानूं जी खेड जगत दीआं जानकारियां ते भरपूर प्रोग्राम सुनांदे हां। खेड संसार।

0: पेट संसार। खेड संसार प्रोग्राम सुनने वाले नूं वीरेंद्र दा नमस्कार। खेडां सानूं जीउणा सिखाउंदियां ने। मुकाबले तो पहला जदों खिडारी अभ्यास करता है तो वह सारियां नूं इह सुनेहा दिंदा है कि जिंदगी दे इम्तिहान नूं पास करन लई भी बहुत जबरदस्त तैयारी की जरूरत हुंदी है। खेड मुकाबलियां च जदों असीं कांटे की टक्कर वेखदे हां तो यह मुकाबले सानूं इस गल का सुनेहा दिंदे ने कि मुश्किलां आउण ते इंसान नूं शरीरिक ते मानसिक समर्था पूरी तरह ला देनी चाहीदी है, कुछ भी बचा के नहीं रखना चाहिए। ते मुकाबले तो बाद जदों जित हुंदी है ते खिडारी जित दा जशन मनाउंदा है ते उस तो बाद फौरन अगले मुकाबले की तैयारी विच लग जांदा है। खिडारी दा ये रवैया सानूं ये सुनेहा दिंदा है कि जिंदगी हमेशा चलदे रहण दा नाम है। जित तो बाद अगली चुनौती लई तैयार रहीए ते जे किते हार हो जाए ते उस हार तो सबक लैके फिर निरंतरता विच चलदे जाइए। सो खेडां दे रोमांच नूं महसूस करदे करदे जिंदगी दे इस सबक भी चेते रखिए। अज दे खेड संसार प्रोग्राम च असीं तुहाडी मुलाकात करावांगे साबका अंतरराष्ट्री हॉकी खिडारी दलजीत सिंह ढिल्लों होरां दे नाल, जो कि इस वेले सीनियर पंजाब दी हॉकी टीम दे कोच ने ते इह पंजाब दी हॉकी टीम झांसी विच जा रही है नैशनल हॉकी मुकाबलियां दे विच। इहदे नाल नाल पिछले दिनां च होईआं खेड सरगर्मियां बारे भी गल्लबात होएगी ते खेड संसार प्रोग्राम च आओ सब तों पहलां साबका अंतरराष्ट्रीय हॉकी खिडारी दलजीत सिंह ढिल्लोंहरा नूं मिली। दलजीत सिंह ढिल्लोंहरा बारे तुहानूं दस दईए कि हॉकी दी दुनिया विच उहनां दा नाम बहुत अदब बहुत इज्जत नाल लिया जांदा है। दलजीत सिंह ढिल्लों बलजीत सिंह ढिल्लों दे छोटे भरा ने। बलजीत सिंह ढिल्लों जो बहुत साल भारतीय हॉकी टीम की कप्तानी भी कर चुके ने। दलजीत सिंह ढिल्लों जदों मैदान ते इनसाइड फॉरवर्ड की पोजिशन ते खेडदे सी बहुत वार विरोधी टीम की डी च जा वड़दे ते गोल दाग दिंदे। हॉकी दी दुनिया विच वो अपनी तेज रफ्तार ड्रिबलिंग ते गेंद दे शानदार कंट्रोल लई जाने जांदे रहे ने। इसे करके वो 100 तो वध अंतरराष्ट्रीय मैच खेड सके। उन्होंने साल 2002 विच कुआलालंपुर मलेशिया विखे हुए पुरश हॉकी विश्व कप विच भारत वल्लों शानदार प्रदर्शन किया सी। उन्हां दी जुबानी ही जानदे आ उन्हां दे जीवन उन्हां दे करियर ते उन्हां दी कोचिंग बारे।
1: थैंक यू सत श्री अकाल सारिआं नूं जी। मेरा डेब्यू जिहड़ा होया सीगा ओह होया सीगा कॉमनवेल्थ गेम तों। हाँ, उस कॉमनवेल्थ गेम तो बाद फिर एक सीरीज़ हुई सी इंडियन पाकिस्तान सीरीज़, तो वो सीरीज़ मेरे हिसाब ना तो होनी चाहिए हूँ दोबारा फिर होनी चाहिए है, क्योंकि इन्ना क्रेज़ लोगों का इन्ना शौक लोगों हॉकी का इन्ने स्टेडियम फुल स्टेडियम होंगे सी और खेडण का इन्ना मजा आता से कि क्या ही बात है
0: जी। दलजीत ढिल्लों जी, जिन्हां समयां च तुसीं भारतीय टीम की प्रतिनिधता की है उदों भारतीय हॉकी टीम की भी क्या ही बात होंदी सी। तुहाडे वड्डे भाई बलजीत सिंह ढिल्लों फिर भास्कर पिल्ले ते होर बहुत सारे दिग्गज खिडारी होंदे सी, उदों पंजाब दी टीम भी बहुत मजबूत हुंदी सी। पंजाब दी टीम चाउणा भारत दी टीम चाउणा ये बड़ा औखा सी। सो तुहाडा रस्ता किद्दां पद्धरा होया सी, तुसीं भारत दी टीम च किद्दां आए सी?
1: मेरा स्कूल दुआबा स्कूले पढ़िया, मैं दुआबा खालसा स्कूल मॉडल स्कूल पढ़िया लाडोवाली रोड। उत्थे मेरे ब्रदर पहला खेडदे स्कूल च, तो मैं वैसे ही ग्राउंड च टाई टूई लाई अपनी ड्रैस पाई तो मैं उत्थे ग्राउंड च बैठा सीगा ते कलोनी च खेडदे सीगे राजवीर कौर जिहड़े गोल्डन गर्ल ने अपने, वह साढ़े लागे रेंदे सी तो उन्होंने देख के माड़ी मोटी ही कलोनी झाकी खेडी दी सी। तो जिहड़े बच्चे उत्थे खेड रहे सीगे मेरे नाल दे सीगे सारे, वह दर्शन कौर भट्टी मैडम सीगे बहुत तगड़े प्लेयर सी अपने टाइम दे, तो वह कोचिंग करते सी उत्थे। तो नाल दे मुंडिया ने कहता जी ये दली बहुत वधिया खेडदा जी हाकी, तो वह मैडम मेरे को आए उन्होंने मेरी टाइट भी लाई तो मैनू कहते चल चक्कर ला, बस वो ऐसा चक्करी चढ़ाया जी, बस फिर हॉकी के दुआले ही हो गए जी। फिर सारा कुछ भुल गए, पढ़ाई भुल गए, सारा कुछ घर के फंक्शन भुल गए, सारा कुछ भुल गए, फिर हॉकी के दुआले हो गए जी बस
0: जी। बहुत वधिया गल है दलजीत सिंह जी कि तुसीं हॉकी के दुआले होए तो भारतीय हॉकी नूं इन्ना वधिया फॉरवर्ड मिलिया। पर यह भी गल नाल है जी कि जदों बंदा शौक के तौर पर हॉकी खेडता है तो उदों उहदा मजा लैंदा है, पर जदों प्रोफेशनल कोई खेड शुरू कर लैंदा है ना उहदे च फिर दबाव भी हुंदे ने, प्रैशर भी हुंदे ने, तुहाडे च इह भी हुंदा है कि तुसीं परफॉर्म करना। सो उहदे लई परफेक्शन लई तुसीं किन्नी कु मेहनत कीती, किन्ना कु अभ्यास कीता?
1: मैं जिवें दस्सिया दर्शन कौर भट्टी मैडम सी उन्होंने सानूं स्किल वर्क बहुत कराया क्योंकि आप बहुत स्किली सीगे उह। फिर उस तो बाद मैं स्पोर्ट्स स्कूल चला गया जिथे साडे गुरदीप सिंह मान कोच सीगे जिन्हां दे हत्थों बड़े बड़े ओलंपियन निकले ने, तो मैनू भी उन्होंने तराशिया, मेरी उन्होंने मेरे वाल देख के कहा भी तू इंडिया खेडेगा तू आह चीज़ा कराया कर। फिर उन्होंने मेरी स्टिक वर्क से बहुत काम किया, तो मैनू उन्होंने कई बार कहा भी तू जे तू सेंटरफोर्ड खेडता रहेगा तो तू इंडिया का कि वर्ल्ड का टॉप का सेंटरफोर्ड खेडेगा। पर मैं उत्थे थोड़ी जी नगैली कर गया कि मैं अपनी साइड बाद लैफ्ट इन लैफ्ट आउट खेडना पै ज़्यादा, तो मैं अजे भी उस गल

मिडी वेव 343.6 मीटर यानी 873 किलो हर्ट्ज ते असी आकाशवाणी ते जलंधर केंद्र तो बोल रहे हैं। शाम दे 4:30 बज रहे ने। आओ हुण तुहानूं लै चलदे हां श्री दरबार साहिब अमृतसर, जिथों तुसीं शब्द कीर्तन दा सीधा प्रसारण सरन करोगे।

प्रिय की प्रीत प्यारी मगन मने मैं चितवा वासा नैनो तार तुहारी ए इलाही फरमान प्रभु प्यारियां दी प्रभु नाल प्रीत दा वर्णन करता है। मन दी ऐसी अवस्था उना वडभागी प्राणियां दी हुंदी है जिन्हां दा चित प्रभु दे चरणां विच लग्या हुंदा है, क्योंकि उना नूं ए दृढ़ भरोसा हुंदा है कि अकाल पुरख प्रभु आद तो ही जीवां दा मददगार रहा है। जीव दे जन्म तो पहला, उस दे जन्म तो बाद, उस दे अंत तक, इतों तक कि प्रलोक विच भी उसका सहाई हुंदा है। ऐसा तनासरी राग विच साहिब श्री गुरु अर्जुन देव जी फरमाउंदे ने कि ऐसे प्रभु नाल मेरा चित जुड़ गया है। प्रभ स्यों लाग रहे हो मेरा चीत, आद अंत प्रभ सदा सहाई, तन हमारा मीत। इस शब्द का गायन कीता है भाई हरचंद सिंह रागी ते उना दे जत्थे ने।

प्रभ से हो लाग रहे हो मेरा चीत, आद अंत प्रभ सदा सहाई, तन हमारा मीत। इस शब्द का गायन कीता सी भाई हरचंद सिंह ते उना दे रागी जत्थे ने। उस प्रभु ते अटल भरोसा रखण वाले प्राणी गुरमुख जन जीव रूप इस्त्रियां अपने चित नूं उस अकाल पुरख प्रभु नाल जोड़ लैंदियां हन, क्योंकि उना दे मन अंतर दी वेदना नूं अकाल पुरख प्रभु ही समझ सकता है। इस करके वो चिंता मुक्त हुंदियां ने। मन बेध्या दयाल सेती मेरी माई, कौन जाने पीर पराई, हम नाही चिंत पराई। इस शब्द का गायन कीता है भाई अमरीक सिंह जख्मी रागी ते उना दे जत्थे ने।

0: मन बेध्या दयाल सेती मेरी माई, कौन जाने पीर पराई, हम नाही चिंत पराई। इस शब्द दा गायन कीता सी भाई अमरीक सिंह जख्मी रागी ते उना दे जत्थे ने। सरवण करदे हां इस शब्द दी व्याख्या। व्याख्याकार ने ज्ञानी शिवतार सिंह।
1: ये पावन शब्द श्री गुरु नानक देव जी द्वारा उच्चारण कीता।

0: शब्द दा गायन कीता सी भाई अमरीक सिंह जख्मी रागी ते उना दे जत्थे ने। सरवण करदे हां इस शब्द दी व्याख्या। व्याख्याकार ने ज्ञानी सिवतार सिंह।
1: यह पावन शब्द श्री गुरु नानक देव जी द्वारा उच्चारण कीता होया श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दे पावन अंग 795 उपरों सुभाए मन है। इस पावन शब्द अंदर गुरु साहिब बख्शिश करदे हन कि इस संसार अंदर हर जीव दी वेदना ओह परिपूर्ण परमात्मा ही समझ सकता है। होर किसे अंदर ताकत नहीं कि ओह किसे दा दर्द हर सके। विचार गोचरे शब्द दियां रुहाओ वालियां पंक्तियां जो कि शब्द दा केंद्री भाव है इस प्रकार हन। मन बेदया दयाल सेती मेरी माई कौन जाने पीर पराई हम ना ही चिंत पराई। गुरु नानक देव जी फरमान करदे हन कि हे मेरी माँ मेरा मन दया दे घर प्रभु दे चरणा विच विज गया है। मैनू यकीन हो गया है कि परमात्मा तो बिना कोई होर किसी दूजे दा दुख दर्द नहीं समझ सकता। इसे लई हुण मैं किसी होर दी आस नहीं रखदा क्योंकि मैं जानदा हाँ कि तू ही है जिहड़ा न्यासरियां दियां आसां पूरियां करदा है। पाशन क्रोत अग्रणी वह निरासन आस पूर्ण है निरधन भयंग तनवंत है रोगियंग रोग खंडन है। इसलिए हे भाई उस परमात्मा अगे झुकना चाहिदा है। विचार अधीन शब्द दियां आरंभ वालियां पंक्तियां अंदर सतगुरु जी फरमान करदे हन मन मंदर तन वेस कलंदर घट ही तीर्थ नावा एक शब्द मेरा प्राण बसत है बहुड़ जन्म ना आवा। हे प्रभु जदों दा मैं जान लिया है तू ही सबना दा दुख दर्द हरदा है ता मेरा मन तेरे रहन दा टिकाणा बन गया भाव प्रभु दे रहन ली मंदर बन गया। मेरा हरेक ज्ञान इंद्रा इस मंदर दी यात्रा करन वाला रमता साधु बन गया भाव मेरे ज्ञान इंद्रे बाहर भटकण दी थां अंदर वसदे परमात्मा वल परत आए। हुण मैं हिरदे रूपी तीर्थ उत्ते ही इशनान करदा हाँ इसी इशनान सदका परमात्मा दी सिफत सलाह दा शब्द मेरी जिंद विच टिक गया है मेरी जिंद दा आसरा बन गया है। इस वास्ते मैनू यकीन हो गया है कि मैं मुड़ जन्म मरण दे गेड़ विच नहीं आवांगा। विचार अधीन शब्द दियां अगलियां पंक्तियां हन अगम अगोचर अलख अपारा चिंता करो हमारी जल थल महियल भरपुर लीना घट घट जोत तुम्हारी। हे अपहुंच ते अदृष्ट प्रभु तू ही साड़ी संभाल कर रहा है तेरी व्यापकता हर थान नज़र आउंदी है पानी विच धरती उत्ते ते आकाश अंदर भाव हर थान तेरी ही जोत मौजूद है। गुरु अर्जन साहिब फरमाते हैं बिस्म पेखै बिस्म सुनिया बिस्माद नदरी आया जल थल महियल पूर्ण स्वामी घट घट रहया समाया। विचार अधीन शब्द दियां अगलेरियां पंक्तियां अंदर गुरु नानक साहिब फरमान करदे हन सिख मत सब बुद्ध तुम्हारी मंदर छावां तेरे तुझ बिन अवर न जाना मेरे साहिबा गुण गावां नित तेरे। हे मेरे मालक प्रभु जियो सब जीवां दे मन ते शरीर तेरे ही रचे हुए हन सिख्या अकल समझ ये सब कुछ जीवां नूं तेरे कोलों ही मिलदी है। इस संसार अंदर मैं तेरे बराबर होर किसे नूं नहीं जानदा तू ही रचनहार है आप ही नाश करन वाला है तेरे तो बगैर इस धरती ते होर कोई नहीं तू ही बेअंत है। विचार अधीन शब्द दियां अखीरलियां पंक्तियां अंदर सतगुरु जी फरमांदे हन जी जंत सब सरण तुम्हारी सर्ब चिंत तुद पासे जो तुद भावै सोई चंगा एक नानक की अरदासे। गुरु साहिब बख्शिश करदे हन कि हे अकाल पुरख सारे जीव तेरे ही आसरे हन तेनू ही सब दी संभाल दा फिक्र है इस करके हे परमात्मा जियो तेरे अगे यही अरजोई है कि जो तेरी रजा होवे ओ मैनू चंगी लगे मैं तेरी रजा विच राजी रहां। मेरी अरदास है कि यह जिंद शरीर सब कुछ तेरा है इस धरती उत्ते तेरी ही वडियाई है मैं नमाणे नूं

0: कि कोई नहीं जानता। इसलिए हे प्रभु, सदा इस शरीर मंदिर के अंदर मन अंदर नाम टिका के अपनी सदा होंद बनाई रखी।
1: मन बेदया दयाल सेती मेरी माई, कौन जाने पीर पराई, हम नाही चिंत पराई। इस शब्द की व्याख्या कर रहे सन ज्ञानी सिवतार सिंह। अकाल पुरख प्रभु दुखां दा नास करता है, इंसान नू पै तो रहत कर दिंदा है, अपने भगतां दी पैज रखता है। मनु ओ भव खंडन है, दुख पंजन है, ते भगत वच्छल है, निराकार भी है। तां ते मेरा मन उस प्रभु नाल लग गया है। अकाल पुरख प्रभु ने ऐसी कृपा कीती है कि मैं काम क्रोध लोभ मोह हंकार आदि ते जित प्राप्त कर ली है। पंजे दूत वस विच आ गए ने। भव खंडन दुख पंजन स्वामी, भगत वच्छल निरंकारे, कोट पराध मिटे खिन पीतर, जा गुरमुख नाम समारे। इस शब्द का गायन कीता है भाई बख्शीश सिंह ते उना दे रागी जत्थे ने।

पावखंडन दुख पंजन स्वामी भगत वच्छल निरंकारे कोट प्राद मिटे किन पीतर जा गुरमुख नाम समारे। इस शब्द का गायन कीता सी भाई बख्शीश सिंह ते उना दे रागी जत्थे ने।

0: गुरबाणी विचार इस प्रोग्राम दे प्रायोजक सन श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी श्री अमृतसर।
1: मीडियम वेव 343.6 मीटर यानी 873 किलोहर्ट्ज़, डीआरएम 864 किलोहर्ट्ज़, एफएम बैंड 100.8 मेगाहर्ट्ज़ फाजिलका, एफएम बैंड 100.9 मेगाहर्ट्ज़ कसौली ते डीटीएच दी आकाशवाणी पंजाब सेवा दा ए जलंधर केंद्र है। इस वेले शाम दे 6 वजन वाले ने, हुण तों कुछ ही पलां दे इंतजार तों बाद तुसी सुनोगे हिंदी समाचार साडे दिल्ली केंद्र तों।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सरकार ने अपने शासन के दृष्टिकोण और कार्य संस्कृति में पावर टू एम्पावर के सिद्धांत को अपनाया है। नई दिल्ली में आज ब्लूमबर्ग न्यू इकोनॉमी फोरम में श्री मोदी ने कहा कि भारत की प्रगति सामूहिक विकास और साझा अवसरों पर निर्भर करती है। प्रधानमंत्री ने कहा कि वैश्विक अनिश्चितताओं के बीच भारत का आर्थिक विकास मजबूत नींव पर टिका है।
1: ग्लोबल चैलेंजेस के लिए सॉल्यूशंस में भी योगदान देना होगा। क्लाइमेट चेंज हो, वाटर गवर्नेंस हो, पब्लिक हेल्थ हो या इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज का रिस्पॉन्सिबल यूज हो, दुनिया को ऐसा सामर्थ्य चाहिए जो सॉल्यूशन दे, नए अवसर पैदा करे।
0: भारत नई दिल्ली में बहुपक्षीय तकनीकी और आर्थिक सहयोग के लिए बंगाल की खाड़ी क्षेत्र की पहल बिम्स्टेक संगठन के गृह मंत्रियों की पहली बैठक की मेजबानी कर रहा है। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि ये ऐतिहासिक बैठक आतंकवाद, संगठित अपराधों, नशीले पदार्थों की तस्करी, अवैध धन प्रवाह तथा साइबर खतरों से निपटने के साझा संकल्प को उजागर करती है। श्री शाह ने मादक पदार्थों की तस्करी के खिलाफ अभियान में सभी पक्षों के सहयोग का आह्वान किया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज नई दिल्ली में चेक गणराज्य के उप प्रधानमंत्री और उद्योग तथा व्यापार मंत्री कारेल हावलीचेक से मुलाकात की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री सिंह ने कहा कि दोनों देश आत्मनिर्भर भारत को बढ़ावा देने के लिए भारत चेक संयुक्त रक्षा समिति के तत्वावधान में सहयोग को आगे बढ़ाने पर सहमत हुए हैं। भारत ने दोहराया है कि लद्दाख भारत का अभिन्न और अविभाज्य अंग है और चीन द्वारा किसी भी प्रकार का इंकार इस स्थापित तथ्य को नहीं बदल सकता। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने लद्दाख पर चीन की हालिया टिप्पणियों पर आज कहा कि गृह मंत्रालय की प्रेस विज्ञप्ति अपने आप में स्पष्ट है। विज्ञप्ति में केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख के 28 स्थानों की पहचान भारतीय सर्वेक्षण विभाग के आधिकारिक मानचित्र में मानक स्थान और भौगोलिक विशेषताओं के नामों के साथ की गई है। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा है कि एक विकसित भारत के लिए स्वस्थ, सशक्त और नशा मुक्त युवाओं की जरूरत है। उन्होंने कहा कि नशीले पदार्थों का सेवन देश के युवाओं की क्षमता में बाधा डाल सकता है। नई दिल्ली में आज विकसित भारत के लिए नशा मुक्त युवा विषय पर आयोजित युवा संवाद में श्री रिजिजू ने कहा कि जो समाज नशीले पदार्थों की लत की चपेट में आ जाता है वहां पूरी पीढ़ी प्रभावित होती है। भारतीय जनता पार्टी ने वरिष्ठ कांग्रेस नेता और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी को विशेष गहन पुनरीक्षण एसआईआर के मुद्दे पर देशवासियों को भ्रमित करने का आरोप लगाया। आज नई दिल्ली में भाजपा के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि कांग्रेस पार्टी निर्वाचन आयोग की कार्यशैली पर सवाल खड़ा कर रही है, लेकिन उसे अपने कार्यकाल के दौरान आयोग की कार्यप्रणाली दिखाई नहीं देती। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन की सरकार ने संवैधानिक संस्थाओं को मजबूत किया है।
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो एनडीए की सरकार ने इलेक्शन कमीशन को स्वावलंबी तरीके से देशहित और जनहित में अपने काम करने के लिए पूरी तरीके से ऑटोनॉमी दी है, और कोई भी इलेक्शन कमिश्नर जो अपॉइंट हुआ हो उसको कोई राजनीतिक लाभ कभी भी देने का प्रयास नहीं किया।
0: शिक्षा मंत्रालय ने भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान IIT रांची में एक छात्र की दुर्भाग्यपूर्ण मौत की जांच के लिए 3 सदस्यीय समिति गठित की है। समिति घटना से जुड़ी परिस्थितियों की जांच करेगी और संस्थान में दिशा निर्देशों के पालन का आकलन करेगी। आयुष मंत्रालय ने त्वचा संबंधी बीमारियों के उपचार और प्रबंधन के लिए आयुर्वेद, सिद्ध, यूनानी और होम्योपैथी के साथ योग को शामिल करते हुए मानक दिशा निर्देश जारी किए हैं। इन दिशा निर्देशों का उद्देश्य आयुष की विभिन्न चिकित्सा पद्धतियों में उपचार की प्रक्रिया को अधिक एकरूप बनाना, गुणवत्ता सुनिश्चित करना और वैज्ञानिक साक्ष्यों पर आधारित चिकित्सा को बढ़ावा देना है। UPI पर ग्राहक से व्यापारी के बीच 2,000 रुपए से अधिक के लेनदेन पर UPI मर्चेंट डिस्काउंट रेट दीपावली के बाद लागू किया जाएगा। नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ने बताया कि UPI और सेवा संचालन समिति ने त्योहारी मौसम को ध्यान में रखते हुए ये निर्णय लिया है। ओडेंस में डेनमार्क ओपन बैडमिंटन के पहले दिन किदाम्बी श्रीकांत ने फ्रांस के अर्नोड मर्कले को हराकर पुरुष सिंगल्स के अगले दौर में प्रवेश कर लिया है। महिला सिंगल्स में तन्वी शर्मा ने जापान की

0: नातूस की निदारा को हराकर प्री क्वार्टर फाइनल में जगह बनाई। इसके साथ ही यह समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: मीडियम वेव 343.6 मीटर यानी 873 किलोहर्ट्ज़ ते असी आकाशवाणी दे जलंधर केंद्र तो बोल रहे हां। इस वेले शाम दे 6:05 होए ने। आहुन जानदे हां अज रात तक दे बाकी रहंदे प्रोग्रामां दा वेरवा ते उहनां दा प्रसारण समां। शाम 6:30 खेतीबाड़ी ते किसान भलाई मंत्रालय वालों स्पॉन्सर्ड प्रोग्राम पेश कीता जाएगा किसान वाणी। आज दे इस प्रोग्राम दे सिलसिले होणगे किसान संदेश, किसान समाचार, एक सवाणी सपनप्रीत कौर दे नाल कीती मुलाकात भी सुनाई जाएगी। इस तो अलावा झोने दी पराली वाले खेतां च कणक दी बिजाई दे ढंग बारे जानकारी देणगे डॉक्टर परमिंदर सिंह। शाम 7:10 ते दिल्ली केंद्र तो विशेष प्रोग्राम प्रसारित किया जाएगा जन सेवा से देश सेवा। शाम 7:45 ते अंग्रेजी वार्ता पेश की जाएगी इंडियाज रिच कल्चरल हैरिटेज। वार्ताकार होंगे डॉक्टर बी के शर्मा। रात 8:10 ते विशेष प्रोग्राम पेश कीता जाएगा जन सेवा तो देश सेवा। आज दे इस प्रोग्राम च तुसी सुनोगे खास पेशकश भारत दी राष्ट्रीय पछाण दी नवी परिभाषा पीपल्स पद्मा द्वारा। रात 9:15 दिल्ली केंद्र तो प्रोग्राम आएगा स्पॉटलाइट। रात 9:30 तुसी सर्वन करोगे निर्धारित रागां ते आधारित शब्द कीर्तन। रात 10:02 ते शास्त्रीय संगीत दा प्रोग्राम होएगा सुर साधना। आज दे इस प्रोग्राम च तुसी सुनोगे उस्ताद सतविंदर पाल सिंह दा सारंगी ते वजाया राग बिहाग। ते रात 10:30 फोन इन ते व्हाट्सएप आधारित फरमाइशी गीतां दा प्रोग्राम पेश कीता जाएगा तुहाडी फरमाइश। आज दा एक खास प्रोग्राम समर्पित होएगा किशोर कुमार नो। एसन आज रात तक दे बाकी रहंदे प्रोग्रामां दा वेरवा ते उनां दा प्रसारण समां। इस तो अलावा हिंदी, पंजाबी ते अंग्रेजी समाचार अपने अपने समय ते प्रसारित कीते जाणगे। तुसी सुन रहे हो आकाशवाणी दा जलंधर केंद्र। हुण पेश ने कुछ देशभक्ति समूह गाना।

0: ਅਸੀਂ ਮਾਨ ਨੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖਰੀਦ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਹਨ ਤਾਂ ਕਿ ਕਿਸਾਨ 17% ਤੱਕ ਦੀ ਨਮੀ ਵਾਲੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਕੀਮਤ ਤੁਰੰਤ ਪਾ ਸਕਣ।
1: ਸੁੱਕਾ ਝੋਨਾ ਲਿਆਓ, ਦਾਣੇ ਦਾਣੇ ਦੀ ਕੀਮਤ ਪਾਓ।
2: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
3: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
4: शुरू करिए इन्वेस्टमेंट का सबक।

0: जागरूकता पहल और जानकारी ले सभी मिनिस्टर वेबसाइट पे विजिट करो या सभी साथी ऐप डाउनलोड करो।
1: आकाशवाणी जलंधर ते पेश है एक और देशभक्ति समूह गाना।

0: संस्करण में प्रस्तुत है परिचर्चा समुद्र बंदरगाह और नई आर्थिक शक्ति। इसमें भाग ले रहे हैं रक्षा विश्लेषक कोमोडोर केडी जोशी और रणनीतिक विश्लेषक प्रोफेसर राहुल मिश्रा। कार्यक्रम का संचालन कर रही हैं सोनू सूद।
1: जनसेवा से देश सेवा श्रृंखला में आप सभी का स्वागत है। जैसा हम जानते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 25 वर्ष पूरे किए हैं सार्वजनिक सेवा के, 13 वर्ष गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में और 12 वर्ष से वो देश के प्रधानमंत्री हैं। और आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करने वाले हैं, बंदरगाह, समुद्र और नई आर्थिक शक्ति। जैसा कि हम सब जानते हैं कि भारत का जो समुद्र तट है वो बहुत लंबा है, 11,099 किलोमीटर के करीब का, और जो इनलैंड वाटरवेज हैं उनकी भी लंबाई 14,500 किलोमीटर के करीब है, और 95% भारत का जो ट्रेड बाय वॉल्यूम और लगभग 70% बाय वैल्यू मैरिटाइम रूट से आवाजाही उसकी होती है। तो इसलिए बहुत ही एक ये इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है और इस पर हम एक्सपर्ट ओपिनियन आज जलेंगे, बारीकी से चर्चा करेंगे। तो हमारे विशेषज्ञ हैं हमारे साथ जुड़े हुए इस कार्यक्रम में, कॉमोडोर केडी जोशी जो है डिफेंस एनालिस्ट और प्रोफेसर राहुल मिश्रा जो है स्ट्रेटेजिक एनालिस्ट। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत।
2: धन्यवाद।
3: धन्यवाद।
1: कॉमोडोर जोशी, बंदरगाहों का जो विकास गुजरात में हुआ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में, सबसे लंबी कोस्ट लाइन है भारत में वो गुजरात में ही है, 2340 किलोमीटर। सो जिस तरह से वहां की सरकार ने ये रियलाइज किया कि प्राइवेट पार्टिसिपेशन बहुत जरूरी है और प्राइवेट पार्टिसिपेशन के साथ उन्होंने वहां पर कैपेसिटी बिल्डिंग की है, इसको आप कैसे देखते हैं और क्या ये मॉडल पूरे भारत में, पूरी जो कोस्ट लाइन है वहां पर भी सफल रहा है?
3: आप बिल्कुल सही बोल रही हैं कि जो प्राइवेट पार्टनरशिप है वही एक फ्यूचरिस्टिक, मैं कहना चाहूंगा कि आगे की सोच का कदम माना जाएगा, क्योंकि जब तक देश के सारे विभिन्न तरह के फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस कह लीजिए, इंडस्ट्रियल हाउसेस कह लीजिए, सरकार कह लीजिए, ये सारे एक साथ अगर आएंगे और पूरे देश का चौतरफा उन्नति की दिशा में अपना अनुदान देंगे, तभी देश में मेरे ख्याल से एक उन्नति ठीक से हो पाएगी। और अगर आप देखें तो सरकार ने जो 2-4 साल पहले मेरे ख्याल से 2020 के आसपास एक फाइनेंशियल शिप बिल्डिंग के लिए एक फाइनेंशियल व्हीकल लॉन्च किया था, तो वो भी सरकार की तरफ से एक कदम है कि ईज ऑफ बिजनेस जिसे बोलते हैं, कि अगर आपको किसी को शिप बिल्डिंग में जाना है, किसी को मैरिटाइम रिलेटेड किसी भी इंडस्ट्री में आपको पार्टिसिपेट करना है, तो ये एक कॉरपोरेशन है जिससे आप जो भी इन्वेस्टर्स हैं, जो भी इस फील्ड में जाना चाहते हैं, वो इसमें अप्लाई कर सकते हैं और उनको सरकार की तरफ से भी मदद मिलेगी।
1: जी, सो प्रोफेसर मिश्रा, जैसे कॉमोडोर जोशी ने बताया कि पूरी तरह से सरकार ने एक बढ़ावा दिया है निजी क्षेत्र को पोर्ट्स के जो सेक्टर है उसमें उतरने के लिए, हमारे यहाँ 13 मेजर पोर्ट्स हैं और 200 से भी अतिरिक्त पोर्ट्स हैं। आप हमें बताएं कि ये जो एक बल दिया गया है बंदरगाहों के विकास पर, समुद्री जो इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास पर, कैसे देखते हैं आप इसको, कितना इम्पोर्टेंट है ये हमारे लिए, हमारे आर्थिक सशक्तिकरण के लिए?
2: भारत में आर्थिक विकास की जो गति है और आर्थिक हमारी जो हर साल की जो सालाना हमारी आर्थिक विकास, आर्थिक प्रगति की जो परसेंटेज है वो कंसिस्टेंटली एक हाई लेवल पर पहुंच चुकी है। भारत सरकार ने पिछले 2 दशकों में, खासतौर से पिछले 12 सालों में, इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर, कनेक्टिविटी को लेकर के, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस जैसे कॉमोडोर जोशी ने कहा, इन तमाम क्षेत्रों में सरकार ने अपनी नीतियों को बहुत स्पष्ट तौर पर सामने रखा है कि सरकार का रोल एक इनेबलिंग एनवायरनमेंट प्रोवाइड करने का है। एक ऐसा एनवायरनमेंट तमाम जो प्राइवेट सेक्टर के लोग हैं उनके लिए और आम इंसान के लिए भी, ऐसा एनवायरनमेंट सामने रखना जिसमें कि वो अपनी जो उनकी क्षमताएं उनका विकास कर सकें। तो सरकार का काम एक इनेबलिंग एनवायरनमेंट क्रिएट करना होता है, जिसमें मुझे लगता है कि सरकार ने पूरी तरह से अपनी क्षमताओं को प्रदर्शित किया है। इस इनेबलिंग एनवायरनमेंट के साथ साथ प्राइवेट सेक्टर, क्योंकि देखिए व्यापार के लिए किसी भी देश की या राज्य की सरकार व्यापार में सीधे तौर पर नहीं उतरती है, अगर वो एक कम्युनिस्ट सरकार ना हो तो, ऐसा जो वातावरण बनता है उसमें प्राइवेट सेक्टर को सीधे तौर पर एक स्टेक होल्डर के तौर पर उतरना पड़ेगा। और इसलिए मुझे लगता है कि जैसे भारत की आर्थिक प्रगति हो रही है और भारत से मल्टीनेशनल कॉरपोरेशंस उभर रही हैं और उनका व्यापार बढ़ रहा है दुनिया के तमाम कोनों से, उसको ध्यान में रखते हुए प्राइवेट सेक्टर की पार्टनरशिप बहुत आवश्यक थी। और भारत के, जैसा आपने कहा कि भारत के बड़े जो बंदरगाह हैं, 13 बंदरगाह हैं, लेकिन 200 छोटे बंदरगाह भी हैं, इनको कैसे पूरी तरह से समेकित रूप से इनका विकास कैसे किया जाए, इस पर ध्यान देने की आवश्यकता थी। मुझे लगता है कि जो भारत का जो मैरिटाइम विजन 2030 है या मैरिटाइम

0: अमृतकाल 2047 है, उसको ध्यान में रखते हुए एक समग्र और समेकित विकास की आवश्यकता रही है, और उसके विकास के लिए ही मुझे लगता है बंदरगाह से जुड़ा हुआ है या पोर्ट लेड डेवलपमेंट जिसकी हम बात करते हैं वो आवश्यक एक जरूरत थी और वो पूरी तरह से निखर के आ रही है सामने। दूसरा एक बड़ा पहलू है कि भारत के जो बंदरगाह है, हम देखते हैं कि जो पूर्वी क्षेत्र के बंदरगाह हैं और पश्चिमी क्षेत्र के बंदरगाह हैं, दोनों में पहला तो पूर्व और पश्चिम के बंदरगाहों के बीच में क्षमता को लेकर के और का जो व्यापार है, एक जो टनेज का टर्नओवर है उसको ध्यान में रखते हुए ही पूर्व और पश्चिम में बहुत अंतर है। पश्चिम के पोर्ट बहुत विकसित है और मुंबई का जो बंदरगाह है उस पर बहुत ज्यादा लोड था, और इसको ध्यान में रखते हुए गुजरात के जो नए बंदरगाहों का अपग्रेडेशन हो रहा है वो बहुत आवश्यक था। इसमें पूर्व और दक्षिण के बंदरगाहों पर भी काफी व्यापक स्तर पर काम हो रहा है। आगे आने वाले समय में भारत की विकास की गति को सामने रखते हुए इन बंदरगाहों के विकास पर भी काम होगा और तभी भारत एक आर्थिक महाशक्ति के रूप में निखर कर सामने आ पाएगा।
1: बिल्कुल, जैसे आपने कहा कि अब प्राइवेट पोर्ट्स भी बहुत मेजर हो गए हैं, अगर हम देखें पीपावाव या हजीरा या मुंद्रा अब बाय वॉल्यूम सबसे बड़ा पोर्ट है भारत में, और जो पोर्ट कैपेसिटी है उसमें बहुत बढ़ोतरी हुई है। 2014-15 में 1561 MTPA मिलियन टन पर एनम था और अब वो बढ़कर 2817 पर पहुंच गया है, और जो एवरेज टर्न अराउंड टाइम है वो भी 96 घंटों से कम होकर 49 घंटे आ गया है। आप हमें बता सकते हैं कॉमोडोर जोशी की जो ये एवरेज टर्न अराउंड टाइम है ये कितना इंपॉर्टेंट है और ये किस तरह से एफिशिएंसी बढ़ाता है, जो पोर्ट लेड डेवलपमेंट की हम बात कर रहे हैं उसको गति देता है?
2: आपने बिल्कुल सही आंकड़े दिए हैं। इनफैक्ट मुझे ऐसा लगता है कि ये टर्न अराउंड टाइम अभी थोड़ा और भी शायद कम हो रहा होगा, क्योंकि जो सरकार का बेसिक अगर आप एक उद्देश्य मान लें कि टर्न अराउंड टाइम कम करने से पोर्ट में ज्यादा जहाज आएंगे, ज्यादा माल की ढुलाई होगी, ज्यादा माल उन पे लोड किया जाएगा, तो ये पूरा का पूरा जो काम होता है उससे पोर्ट का जो टर्नओवर कहते हैं आप, मुनाफा कहते हैं फाइनली, वो बढ़ेगा। तो अगर पहले क्या होता था, ये सारे जहाज जाते थे, दो दो तीन तीन दिन एक पोर्ट में ये रहते थे, सामान की आवाजाही उतर रही है, कंटेनर उतर रहे हैं, कंटेनर चढ़ रहे हैं, तो ये दो तीन दिन का टाइम लगता था। तो अभी अगर जैसे आपने बताया कि ये समय बहुत कम हो गया है, उसी हिसाब से तीन दिन में होता तो अभी एक दिन में तीन जहाज निकल गए, पहले एक ही जहाज निकलता तीन दिन में, तो उस हिसाब से टर्नओवर पर शिप अगर देखे तो 3 times हो गया है। उस हिसाब से मुझे ऐसा लग रहा है कि ये एक पूरा जो आर्थिक अपनी जो गति है देश की उसके लिए बहुत ही ज्यादा एक पैमाना है, टर्नओवर टाइम कितना है और इसको कौन देखता है। ये जो कंटेनर पोर्ट परफॉर्मेंस है, वर्ल्ड बैंक का ये कंटेनर पोर्ट परफॉर्मेंस का इंडेक्स है, वो ये सारे मेजर करके ये देखते हैं कि कौन कौन कैसे परफॉर्मेंस चल रही है इन सब चीजों में, एक ये पैमाना, उसके अलावा बहुत भी होंगे। अगर आप देखें इनका जो लेटेस्ट इंडेक्स आया हुआ है उसमें टॉप 30 में हमारे 3 पोर्ट्स आ रहे हैं, जैसे आपने सही बोला, मुंद्रा पोर्ट है गुजरात का, पारादीप पोर्ट है उड़ीसा में, और जवाहरलाल नेहरू पोर्ट है मुंबई का। ये 3 पोर्ट टॉप 30 में भारत के हैं, तो ये मेरे ख्याल से बहुत ही अच्छा देश के लिए ये एक गर्व करने की बात है कि ये हमारा देश एक ऐसी दिशा में जा रहा है जो थोड़ा वर्ल्ड स्टैंडर्ड के हिसाब से अच्छी मानी जाएगी।
1: जी बिल्कुल, इसी संदर्भ में हम आपसे जानना चाहेंगे प्रोफेसर कि जब हम बात करते हैं पोर्ट लेड डेवलपमेंट की या जो लॉजिस्टिक्स है समुद्री यातायात, तो उसमें कौन कौन से ऐसा कार्गो है जो बहुत हमारे लिए क्रिटिकल है, हमारे देश के लिए, जो समुद्री जो रास्ते हैं उनसे वो उसकी आवाजाही होती है और जिसके कारण ये जो समुद्री इंफ्रास्ट्रक्चर है इस पर इतना बल दे रही है सरकार?
0: यहाँ कुछ मूलभूत बातें हैं जिनको समझना आवश्यक है हमारे लिए भी और श्रोताओं के लिए भी, कि भारत का और दुनिया का अधिकतम व्यापार 95% से ज्यादा व्यापार वो शिपिंग रूट से ही होता है, समुद्री जहाजों से होता है, क्योंकि वो सस्ता पड़ता है और उससे ज्यादा माल की ढुलाई हो सकती है। इस बात को हम ध्यान रखें। पहली चीज ये है कि जितना तेल और गैस का व्यापार होता है वो सारा व्यापार समुद्री जहाजों के माध्यम से होता है, जितना हैवी कार्गो जाता है वो भी समुद्री जहाजों के माध्यम से जाता है, और इसके साथ ही साथ भारत के जो पड़ोसी देश हैं उनसे आने वाले खाद्य पदार्थों का आयात और निर्यात भी समुद्री क्षेत्र से होता है। तो एक तरह से हम ये कह सकते हैं कि अगर ये समुद्री यातायात की जो ये जो लाइफ लाइन्स हैं इनको अगर रोक दिया जाए तो दुनिया में व्यापार ही नहीं, दुनिया का चलना मुश्किल हो जाएगा। और ये हमने जब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज क्राइसिस में हमने ये बात देखी कि जब वहां से जहाजों का आवागमन रुका या उस पर एक तरह से नियंत्रण लगा तो दुनिया के तमाम

0: फिलीपींस और इंडोनेशिया जैसे देशों में ऊर्जा को लेकर के बहुत बड़ा संकट हो गया। भारत ने इस संकट को बहुत अच्छे से टैकल किया, ये एक प्रशंसनीय बात है, लेकिन हमने देखा कि कैसे दुनिया के तमाम देशों पर ऊर्जा के क्षेत्र में जो अपने को बहुत ही स्वावलंबी मानते हैं ऑस्ट्रेलिया जैसे देश, उनके लिए भी ये स्थिति बहुत ही चिंताजनक हो गई थी। तो इसलिए कार्गो के क्षेत्र में हम देखते हैं कि रोजमर्रा की जरूरतों के साथ साथ आयरन और स्टील जैसी चीजें, रबर जैसी चीजें जो औद्योगिक विकास के लिए आवश्यक है, लोगों के जीवन में जो खाद्य पदार्थ हैं या जो सामान उनके आम जीवन की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए जरूरी होते हैं उनकी भी, तो किसी भी देश की आर्थिक प्रगति, उसका एक सस्टेनेबल रहना और उसकी जो जनता है, उसके जो नागरिक है, उन लोगों का जीवन भी सुगम रूप से चले, इन सभी के लिए मैरिटाइम रूट्स और शिपिंग रूट्स की आवश्यकता है।
1: और कॉमोडोर श्री, जैसा कि प्रोफेसर मिश्रा ने बताया कि हमारे रोजमर्रा के जीवन के लिए, एक आम नागरिक के लिए जो जरूरत की चीजें हैं उनके लिए भी ये जो समुद्री कारोबार है कितना जरूरी है। अगर हम मैरिटाइम इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करते हैं तो आप नेवी में रहे हैं, तो आप बता सकते हैं हमें कि इसी संदर्भ में ये जो आवाजाही भी सुगम रूप से बनी रहे, मैरिटाइम सिक्योरिटी का कितना बड़ा एक एस्पेक्ट है जो हर देश के लिए और खासकर अब जब भारत की बात कर रहे हैं हमारे लिए इम्पोर्टेंट है।
2: आपने एक जो एक पॉइंट निकाला है मैरीटाइम सिक्योरिटी का, वो एक बहुत ही अहम मुद्दा है, आज से नहीं पिछले 15-16 साल से, जब ये दुनिया में जब इनका फूतीज जो थे या यहाँ पे जो हाईजेक हो रहे थे जहाज और उनसे रैंसम मांगी जाती थी और पूरा का पूरा जहाज बोर्ड कर लिया जाता था और समुद्री जो लुटेरे होते हैं वो आते थे एंड अभी भी आते हैं, और उसके कारण 2008 के करीब से भारतीय नौसेना ने इस एरिया में पेट्रोलिंग शुरू की थी और वो पूरा का पूरा जो एंट्री पॉइंट्स हैं ये मिडल ईस्ट के, उसमें बहुत सारे देशों का एक कंसोर्टियम कह सकते आते थे और काफी अच्छी पेट्रोलिंग के कारण ये जो समुद्री लुटेरे आते थे उनका जो इवेंट्स थे, इंसिडेंट थे सारे बहुत कम हो गए। अभी अगर आप देखें ये क्यों हुआ ये सारा, जब तक आपके पास नौसेना का बल नहीं है आप अपने सी लेन्स जो समुद्री रास्ते हैं समुद्री जहाजों के आने जाने के लिए जो रास्ते बने हुए हैं वो आप सिक्योर नहीं कर सकते, वो खुले पड़े रहेंगे, कोई भी आएगा रास्ते पे आपके जहाजों को वो लेके जाएगा, रैंसम मांगेगा या जो भी करेगा आगे। वो सिक्योर तभी हो सकते हैं जब नौसेना के जहाज उन सी लेन्स को सिक्योर करे। तो एक ये जो एक काम है भारतीय नौसेना का, एक प्रमुख काम है, पीस टाइम वर्क कह सकते हैं आप, कि जब युद्ध ना चल रहा हो एक मेजर काम रहता है, और हमारे जहाज कंटिन्यूसली वहां पिछले इतने सालों से पेट्रोलिंग कर रहे हैं, ऑपरेट कर रहे हैं, दो दो तीन तीन जहाज होते हैं वहां पे, तो उसके कारण मेरे ख्याल से आप ये कह सकते हैं कि अगर देश की आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी हो रही है तो उसके लिए एक सशक्त सेना कुछ सालों में सरकार ने ये काम किया हुआ है। अगर आप जहाजों का थ्रूपुट देखें जो नेवी के जहाज बन रहे हैं वो काफी सारे जहाज लॉन्च हुए हैं, काफी सारे जहाज कमीशन हुए हैं और बहुत मॉडर्न जहाज हैं। आज की तारीख में भारतीय नौसेना जो है वो एक सशक्त और आप कह सकते हैं नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर बोलते हैं इंडियन ओशन रीजन, तो जिसमें अरेबियन सी, बे ऑफ बंगाल भी आ जाता है, तो फर्स्ट रिस्पॉन्डर एंड नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर भारतीय नौसेना को माना जाता है।
1: बिल्कुल, बहुत ही जरूरी है दोनों का पैरेलल विकास जिस पर पूरा बल दिया गया है पिछले कुछ वर्षों में। प्रोफेसर मिश्रा, अगर आपके पास आए तो सागरमाला प्रोग्राम जो सरकार का 2015 में शुरू हुआ पोर्ट लेड डेवलपमेंट को बढ़ावा देने के लिए, जिसमें मैकेनाइजेशन, जो आजकल एडवांस टेक्नोलॉजी का जमाना है, तो डिजिटल सिस्टम्स को पोर्ट ऑपरेशंस में इनकॉर्पोरेट करना, मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी, इस सबको आप कैसे देखते हैं, ये जो एक कहें कि फोकस्ड एफर्ट है सरकार।
0: देखिए सागरमाला जो परियोजना 2015 में जिसको लॉन्च किया गया उसके पीछे जो महत्वपूर्ण उसके उद्देश्य थे वो ये थे कि भारत के तमाम बंदरगाह पुरानी तकनीक पर चल रहे थे जिसमें बहुत ज्यादा ह्यूमन इन्वॉल्वमेंट था और उसमें बहुत ज्यादा जो पुराने किस्म के तरीकों का इस्तेमाल किया जा रहा था। सागरमाला परियोजना के तहत ये बात की गई कि बंदरगाहों का न सिर्फ उनका आधुनिकीकरण करना है बल्कि बंदरगाहों के बीच में आपस में कनेक्टिविटी हो, और एक बार जब किसी जहाज से, किसी कार्गो या कंटेनर शिप से जब माल वो बंदरगाह पर डॉक होता है तो वहां से रोड कनेक्टिविटी कैसी है, और तमाम बंदरगाहों के साथ एक ये भी समस्या भारत में पहले रही है कि उनके लिए जो इनेबलिंग इकोसिस्टम है वो नहीं था, तो उसके विकास के लिए भी सागरमाला परियोजना में ध्यान दिया गया। साथ ही साथ इस इकोसिस्टम में ये बात की गई कि

0: किसी भी बंदरगाह में सिर्फ यही नहीं होना चाहिए कि वहां पर एक पोर्ट फैसिलिटी है, डॉकिंग फैसिलिटी है और वहां पर सामान उतर गया। उस सामान का स्टोरेज कैसे हो और वो अत्याधुनिक तकनीक पर कैसे बेस्ड हो। तटीय शिपिंग और अंतर्देशीय जो परिवहन है, चाहे वो जल परिवहन हो, चाहे वो रोड परिवहन हो या रेलवे के रास्ते जाए, उसको कैसे विकसित किया जाए और खास तौर से जो इनलाइन वाटरवेज हैं उनके विकास की कोशिशें की गई। तो सागरमाला परियोजना मुझे लगता है कि एक बहुत क्रांतिकारी कदम रहा है पोर्ट लेड डेवलपमेंट के क्षेत्र में भारत में, और इसने भारत की जो अर्थव्यवस्था है उसको भी बहुत तेजी से दुनिया की तमाम जो अग्रणी अर्थव्यवस्थाएं हैं उनसे कॉम्पीट करने और उनके बराबर चलने की क्षमता प्रोवाइड की है। 845 परियोजनाओं को नामांकित किया गया था 2015 में और उनमें से 315 परियोजनाएं अभी पूरी हो चुकी हैं। तो इससे हमें पता चलता है कि सागरमाला इनिशिएटिव, जैसा कि नाम भी खुद ये बताता है कि ये तमाम जो भारत के बंदरगाह हैं उनको एक माला की कड़ियों की तरह जोड़ना है
1: जी,
0: जिससे कि उन तमाम बंदरगाहों में आपस में भी कनेक्टिविटी रहे, एक कोऑर्डिनेशन रहे, अत्याधुनिक तकनीक से वो जुड़े रहें, कम्युनिकेशन और उन कोऑर्डिनेशन की उनमें लगातार एक सुगम यातायात रहे, और साथ ही साथ इस पूरी बंदरगाहों के विकास और उनके अत्याधुनिकीकरण के साथ साथ भारत के आम नागरिक, छोटे जो व्यापारी हैं, जो लोग पर्यावरण संबंधी मुद्दों से जुड़े हुए हैं या जो लोग टूरिज्म से जुड़े हुए हैं, हॉस्पिटैलिटी सेक्टर से जुड़े हैं, उनके लिए भी ऐसी व्यवस्थाएं और ऐसी परियोजनाएं चलाना कि वो भी जब बंदरगाहों का विकास हो और ज्यादा ढुलाई हो, व्यापार बढ़े तो लोग,
1: और लॉजिस्टिक्स कॉस्ट भी कम हुए हैं, समय जो लगता था उस सामान को पहुंचाने में वो भी कम हुआ। आपने इनलाइन वाटरवेज की बात करी, बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टेटिस्टिक्स हैं हमारे सामने कि लगभग 700% बढ़े हैं कार्गो मूवमेंट इनलाइन वाटरवेज में। सो इस संदर्भ में जो हमारा कहें कि जो वाराणसी मल्टी मोड टर्मिनल है, जो पहला मल्टी मोड टर्मिनल है गंगा नदी पर, जो गवर्नमेंट की जल मार्ग विकास परियोजना है, ये आपको कितना इम्पोर्टेंट लगता है, जैसा आप कह रहे थे कि लॉजिस्टिक्स कॉस्ट कम करने के लिए और जो समय है उसको भी कम करने के लिए?
0: देखिए, इनलैंड वाटरवेज भारत में उनकी परिकल्पना बहुत पहले से रही है, लेकिन इनलैंड वाटरवेज का उतनी अच्छी तरह से इस्तेमाल नहीं हो सका, और क्योंकि भारत में गंगा नदी मुख्य रूप से गंगा नदी के रास्ते बनारस से लेकर वाराणसी से लेकर कलकत्ता तक का एक वाटरवे बनता है जिसमें तमाम जो छोटे और बड़े शहर हैं वो उसके जुड़ सकते, जिसमें वाराणसी को एक बहुत प्रमुख स्थान दिया गया क्योंकि सीधे इस इनलाइन वाटरवे के माध्यम से भारत के उत्तरी जो राज्य हैं, जिसमें उत्तर प्रदेश, बिहार और पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान, तमाम ये जो प्रदेश आते हैं जो किसी भी तरह से किसी भी बंदरगाह से या समुद्र तट से जुड़े नहीं हैं, उनके लिए कैसे ये व्यवस्था की जाए कि वो भी पोर्ट लेड डेवलपमेंट में हिस्सेदार बने और उनके जो निर्यात के सामान है या उनके लिए जो सामान बाहर से आ रहा है उसको कैसे जल्दी से जल्दी पहुंचाया जा सके। क्योंकि देखिए, शिपिंग में और जो समुद्री व्यापार है ये वैसे ही है, एक बहुत अच्छा उदाहरण तो नहीं है, लेकिन किसी व्यक्ति को जब हार्ट अटैक आता है तो उसके जो 3 घंटे और 4 घंटे होते हैं वो बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। इसी तरह जब कोई माल, खास तौर पे खाद्य पदार्थ, जब वो किसी बंदरगाह पर डॉक होता है, जब उसको उतारा जाता है, वहां से कितनी जल्दी वो बाजार पहुंच सके, मार्केट में पहुंच सके, लोगों के पास पहुंच सके, ये बहुत महत्वपूर्ण है। खाद्य पदार्थों के मामले में ये इसलिए महत्वपूर्ण है कि अगर वो 48 घंटे और 72 घंटे के बाद पहुंचेगा तो आधे से ज्यादा सामान खराब हो जाएगा। भारत के उत्तरी राज्यों के लिए ये एक विशेष चिंता की बात है, क्योंकि जैसे अगर हम आम, क्योंकि उत्तर भारत के तमाम प्रदेशों में आम निर्यात करने की कोशिश होती है, उनके हमेशा अंतरराष्ट्रीय मार्केट तक पहुंचने से पहले ही सड़ जाते थे। तो इसलिए बहुत महत्वपूर्ण है कि इनलाइन वाटरवेज पर खास ध्यान दिया जाए और उनको विकसित किया जाए, और इसीलिए मुझे लगता है कि वाराणसी मल्टी मॉडल प्रोजेक्ट या नमो घाट और तमाम जो परियोजनाएं वाराणसी में चल रही हैं उनका एक बहुत दूरगामी परिणाम होगा इनलैंड वाटरवेज को आगे बढ़ाने में और उनके योगदान को बढ़ाने में पोर्ट लेड डेवलपमेंट की जो संकल्पना है भारत की आर्थिक विकास।
1: आपने बहुत ही खूबसूरत एनालॉजी देकर हमें ये बात समझाई है। कॉमोडोर जोशी, आपके पास हम आते हैं। विजिंगजाम इंटरनेशनल डीप वाटर मल्टीपर्पज सी पोर्ट जो केरला में विकसित हुआ है, 2015 में ये इनॉग्रेट हुआ, कैसे देखते हैं आप इसको, ये ग्लोबल सी रूट से हमें कनेक्ट करने के लिए कितना इम्पोर्टेंट है ये?
2: जी, अगर आप थोड़ा नक्शे पे ध्यान दें दुनिया के, तो आज की डेट में एक प्रोसेस बोला जाए, एक तो ट्रांसशिपमेंट का एक प्रोसेस है और वो सिंगापुर आज की डेट में सबसे बड़ा एक पोर्ट है जिसमें ये सबसे ज्यादा ट्रांसशिपमेंट होती है। ट्रांसशिपमेंट का मतलब यह है कि जो बड़े बड़े जहाज बहुत सारा सामान लेके आते हैं उनको

0: का पूरा डिस्टेंस ट्रेवल करना मतलब कॉस्ट इफेक्टिव नहीं होता है, बहुत ज्यादा उसकी कीमत लगती है। तो क्या किया जाता है कि समझिए आप सिंगापुर का एग्जाम्पल ले रहे हैं, जो ईस्टर्न साइड से सामान आ रहा है वो सिंगापुर में छोटे जहाजों में जाएगा, कंपैरेटिवली छोटे जहाजों में, और फिर वो बाकी वेस्टर्न साइड की तरफ मतलब हिंदुस्तान की तरफ मलाका स्ट्रेट से होता हुआ इस तरफ आएगा, या फिर मिडल ईस्ट या जो भी अफ्रीका में जाना है वो जाएगा। तो एक प्रोडक्शन सेंटर है, एक ट्रांसशिपमेंट सेंटर है। अगर हमारी ज्योग्राफी देखा जाए, पेनिनसुलर कंट्री बोलते हैं अपने को, एंड ये जो विरंजम इंटरनेशनल सी पोर्ट बन रहा है ट्रिवेंड्रम में, वो एक डीप वाटर पोर्ट है। एक 20 से 24 मीटर का ड्राफ्ट मिलता है वहां पे, स्ट्रेटेजिकली लोकेटेड है, और इंटरनेशनल शिपिंग लेंस जो है ये उसके बहुत करीब है। इनफैक्ट जो सिंगापुर से लेके जो पर्शियन गल्फ की तरफ लेन जा रही है, मलाका स्ट्रेट से पर्शियन गल्फ की तरफ, वो तो इसके बिल्कुल साथ से होती हुई जाती है, और जो स्वेज कैनाल की तरफ जो लेन जा रही है वो इससे करीब 20 से 30 नॉटिकल माइल, अगर किसी को विरंजम पोर्ट में आना होगा तो 20 से 30 माइल का डायवर्जन लेना पड़ेगा। तो ये लोकेशन इसकी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो उसमें क्या होगा कि जो समझिए आप मिडल ईस्ट से, यूरोप से, मेडिटेरियन से स्वेज कैनाल के थ्रू होते हुए जहाज इधर आ रहे हैं, वो सारे के सारे ट्रांसशिपमेंट अपने यहाँ हो सकती है, और फिर यहां से जहाज या तो लोकल डिस्ट्रीब्यूशन में इस्तेमाल होंगे या फिर ईस्टर्न साइड ऑफ द वर्ल्ड जाएंगे। सो मेरे ख्याल से ये जो एक दूरगामी जो परिणाम है इसका, वो काफी आगे देखने को मिलेगा, क्योंकि जो 24-25 में करीब करीब 1.2 बिलियन TEUs जो यूनिट होती है, 20 फुट इक्वेलेंट यूनिट बोली जाती है, वो इसका थ्रूपुट हो चुका है। और जब फेज टू और फेज थ्री खत्म होएगा 2028 तक, तो उस टाइम पे जो इनका जो एम है, टारगेट है, एक विजन है कि 4.5 मिलियन TEU से ऊपर का व्यापार होगा यहाँ पे, और फाइनल फेज 2040 में 7.2 मिलियन TEUs का होने का उद्देश्य है इस बात।
1: श्रोताओं, आप सुन रहे हैं जन सेवा से देश सेवा श्रृंखला, और आज हमारी चर्चा का विषय है बंदर का समुद्र और नई आर्थिक शक्ति। और हमारे साथ दो विशेषज्ञ आज इस कार्यक्रम में शामिल हैं, कॉमोडोर KD जोशी, डिफेंस एनालिस्ट, और प्रोफेसर राहुल मिश्रा, स्ट्रेटेजिक एनालिस्ट। प्रोफेसर मिश्रा, आपके पास आते हैं, एक जो बहुत ही रोचक और कहें कि बहुत ही उपयोगी ग्रास रूट्स लेवल पे जो प्रोग्राम है समुद्र तट के विकास को लेकर गुजरात ने, जहां पे सबसे ज्यादा लंबी कोस्ट लाइन है, सागर खेड़ू सर्वांगी विकास योजना जो 2007 में शुरू की गई, इसको आप कैसे देखते हैं, जिसमें लगभग 13,000 जो कोस्टल विलेजेस हैं वहां पर बिजली पहुंचाने की और उसको निर्बाध रूप से पहुंचाने की व्यवस्था पर बल दिया गया है।
2: देखिए, ये जो परियोजना है सागर कांठा के तमाम जो जिले हैं, जिसमें कच्छ, जामनगर, पोरबंदर, जूनागढ़ और तमाम भावनगर, अहमदाबाद, ये सभी उसमें आते हैं। इन तमाम शहरों के साथ एक समस्या ये थी कि जो बुनियादी ढांचा है, चाहे वो बिजली की आपूर्ति हो या पीने के पानी की सतत आपूर्ति हो, इन तमाम मुद्दों पर जो सामुद्रिक क्षेत्र का विकास होता है, खारे पानी के प्रवेश को रोकना, एक गुजरात के तमाम बंदरगाहों के साथ एक समस्या ये है कि क्योंकि वहां पर हाई टाइड के साथ बहुत ज्यादा सिल्टिंग हो जाती है और जो गाद आ जाती है उसको निकालना बहुत मुश्किल होता है। बहुत पहले के समय में, आज से 1000 साल पहले भी, जब लोथल एक मानव निर्मित जब बंदरगाह बनाया गया था सिंधु घाटी सभ्यता के समय, आज से 3000 साल पहले, बल्कि उससे ज्यादा, तब भी यही समस्या आई थी कि बहुत सारी गाद जो है वो बंदरगाह और उसके रास्ते उस क्षेत्र के अंदर आ गई। तो खारे पानी के साथ साथ इन तमाम समस्याओं से निपटने के लिए इस योजना का की संकल्पना की गई, और मूलभूत तौर से इसका उद्देश्य ये है कि जो लोग, जो जनता इन बंदरगाहों के आसपास रहती है, जो इन बंदरगाहों से होने वाले व्यापार और इन बंदरगाहों के सुचारू रूप से चलाने के लिए जिनकी जरूरत है, उनकी जो डेली लाइफ की जो आवश्यकताएं हैं उनको कैसे पूरा किया जा सके, उनके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर, उनके लिए इंटरनल पीपल सेंट्रिक कनेक्टिविटी को कैसे जोड़ा जाए, उनके लिए पीने का पानी कैसे मुहैया कराया जाए और तमाम इन समस्याओं से कैसे निपटा जाए, इसके लिए इस परियोजना को चलाया गया था। तो इसका फोकस बहुत ही लोकलाइज था, लेकिन इसका इम्पैक्ट मुझे लगता है कि बहुत अच्छा रहा है, क्योंकि ये किसी भी बंदरगाह के लंबे समय तक और सुदृढ़ रूप से चलने के लिए बहुत आवश्यक है,
1: कह सकते हैं एक तरह से मॉडल है। और सागरमाला के तहत 11 जो फिशिंग हार्बर प्रोजेक्ट्स हैं, जिसके तहत 30,000 जो मछुआरे हैं उनको फायदा हुआ है, आपको लगता है ये भी बहुत होलसम होलिस्टिक अप्रोच है?
2: जी बिल्कुल, दुनिया के तमाम देश जिन्होंने बंदरगाहों का आधुनिकीकरण किया है और उनके विकास पर ध्यान दिया है, उन्होंने ये भी देखा

0: है कि जो छोटे मछुआरे हैं, जो लोकल अर्थव्यवस्था है, वो बंदरगाहों पर जो निर्भर है या तटीय क्षेत्रों पर निर्भर है, उनको कैसे इस बंदरगाह के विकास में या पोर्टलेट डेवलपमेंट में से जोड़ा जा सके, क्योंकि बहुत समय ऐसा होता है और ऐसे भी उदाहरण है दुनिया के तमाम बंदरगाहों के जहां बहुत तेजी से विकास हुआ, बहुत तेजी से उनको डेवलप किया गया और वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर के बंदरगाह बन गए, लेकिन जो जनता उससे जुड़ी हुई थी वो कहीं ना कहीं मार्जिनलाइज हो गई। इन तमाम सागरमाला के तहत इन तमाम जो प्रोजेक्ट्स हैं उनके पीछे एक बड़ा उद्देश्य ये है कि जब हम आर्थिक प्रगति और आर्थिक विकास की बात कर रहे हैं, ज्यादा बड़े इंडस्ट्रियलाइजेशन और बहुत ज्यादा आयात और निर्यात की बात कर रहे हैं, तो हम आम जनता के कंसर्न्स और उनकी जरूरतों को कहीं पीछे ना छोड़ दें। तो ये एक बहुत ही होलिस्टिक, बहुत ही समेकित परियोजना है सागरमाला, और इसके तहत मुझे लगता है कि जनता विकास के साथ साथ आर्थिक प्रगति दोनों को जोड़ने की कोशिश की।
1: बिल्कुल कॉमोडोर जोशी, अभी प्रोफेसर मिश्रा ने एक मेंशन किया लोथल जो गुजरात में, वहां पर जो नेशनल मैरिटाइम हेरिटेज कॉम्प्लेक्स बन रहा है, क्योंकि ये एंशंट जो हमारी इंडस वैली सिविलाइजेशन है, वहां डॉकयार्ड था 4,500 वर्ष पुराना, तो ये जो हमारी एक हिस्ट्री है मैरिटाइम हिस्ट्री, उसके लिए आपको लगता है कि ये एक बहुत बड़ा उसको शोकेस करने का और पूरे देश के गौरव के लिए एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है? कहा जा रहा है ये विश्व का सबसे बड़ा मैरिटाइम म्यूजियम होगा जब ये बन जाएगा। तो
2: जी सुनो जी, बिल्कुल सही आप दिशा में आपने जो बोला है, ये जो 4,500 साल पहले जब ये बनाया गया था, इसमें एक ड्राई डॉक भी होता था, तो मतलब आप सोचिए कि कितना एडवांस वो सिटी होगा जिसमें एक जहाजों को अंदर लाके ड्राई डॉकिंग की भी फैसिलिटी बनाई गई हुई थी। तो उस हिसाब से मैरीटाइम कल्चर जो बोलेंगे, या फिर इंडियन सिविलाइजेशन का या इंडस वैली सिविलाइजेशन का जो मैरीटाइम कल्चर था जी, वो कहीं ना कहीं आज की डेट में हम सारे हमारे देश के लोगों को थोड़ा सा, हमें जानकारी नहीं है, हमें उस चीज का ज्ञान नहीं है। और मेरे ख्याल से जब ये नेशनल मैरीटाइम हेरिटेज कॉम्प्लेक्स जब बन पूरा हो जाएगा, ये दो फेजेस में बन रहा है और पहला फेज में फेज ए और फेज बी भी है, जब ये पूरा हो जाएगा मेरे ख्याल से ये एक बहुत ही आकर्षक जगह होने वाली है, जिसमें अपने आप में ये एक डेस्टिनेशन हो जाएगा कि आप लोग वहां पे जाएंगे और एक मैरिटाइम जो हेरिटेज है उसको कैसे हिंदुस्तान ने प्रिजर्व किया है और आज पास्ट, आज की डेट में और फ्यूचर, ये तीनों कैसे इंटीग्रेट होके उस जगह पे दिखाए जाएंगे, ये मेरे ख्याल से जन साधारण के लिए एक अच्छी परियोजना जो है वो स्थापित हुई है। और जब ये कंप्लीट हो जाएगी मेरे ख्याल से कि ये बहुत ही अच्छा एक आप कह सकते हैं एक दर्शनीय स्थल हो जाएगा लोगों के लिए, वहां पे भी जाना बहुत आवश्यक हो जाएगा।
1: प्रोफेसर मिश्रा, आप इस बारे में कुछ कहना चाहेंगे? नेदरलैंड्स और वियतनाम के साथ मिलकर उनसे भी लिया जा रहा है टेक्निकल एडवाइस, तो कैसे देखते हैं आप इस प्रोजेक्ट को?
0: मुझे लगता है इसमें दो चीजें हमें ध्यान में रखनी है। एक तो सबसे बड़ी बात यह है, विकसित भारत 2047 में भारत को एक आर्थिक महाशक्ति ही नहीं बनना है, भारत को अपने जो इतिहास को प्रेजेंट करने में जो गलतियां की गई हैं उनको भी सुधारना है। तमाम तथाकथित इतिहासकार जो भारत के हैं और भारतीय इतिहास पर लिख चुके हैं, वो ये हमेशा से कहते आए हैं कि भारत कभी एक मैरिटाइम नेशन नहीं रहा है, ये तो एक कॉन्टिनेंटल देश रहा है जिसने कभी समुद्री यातायात या समुद्री सुरक्षा को ध्यान में नहीं रखा। इस नैरेटिव को एक सिरे से नकारने के लिए और इस डिबेट को पूरी तरह से ध्वस्त करने के लिए मुझे लगता है इस मैरिटाइम हेरिटेज कॉम्प्लेक्स की स्थापना जरूरी थी। और क्योंकि ये इस बात को सामने रखता है कि आज से 5,000 साल पहले भी भारत एक समुद्री महाशक्ति था, भारत के पास उस समय की सबसे अत्याधुनिक तकनीक थी, जब हम अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में एक बड़ा स्थान रखते थे, हमने मानव निर्मित एक बंदरगाह बनाया जिसको आज फिर रिवाइव करने और उसको एक हेरिटेज कॉम्प्लेक्स में रखने की बात हो रही है। और इससे यह भी सिद्ध होता है कि लोथल जो कि अहमदाबाद शहर का हिस्सा है, अंतरराष्ट्रीय व्यापार में कितना बड़ा उसका योगदान रहा है। और इसमें आपने जो बात कही नेदरलैंड्स और वियतनाम के साथ सहयोग किए, ये दोनों देश भी, वियतनाम और नेदरलैंड्स दोनों ही देश ऐतिहासिक रूप से बहुत बड़े पोर्ट्स को लेकर के और अंतरराष्ट्रीय समुद्री व्यापार को लेकर के वो हमेशा से ही बड़े एक्टर्स और बड़े प्लेयर्स रहे, तो उनके साथ सहयोग मुझे लगता है इसलिए भी आवश्यक है क्योंकि हम कलेक्टिवली अपनी जो हमारी जो साझा विरासत है उसको भी हम सामने लेकर के आए। और इस लिहाज से एक यूरोपीय देश और वियतनाम जो कि जिसकी अपनी 5,000 साल की एक ग्लोरियस उसका इतिहास है, उसको भी सामने रखना बहुत जरूरी।
1: सो कॉमोडोर जोशी, जैसा आप दोनों ने ही बताया कि कितना हमारा ग्लोरियस इतिहास है, मैरिटाइम इतिहास, उसको दर्शाया जाएगा, और साथ ही साथ आपको लगता है कि बहुत होलिस्टिक अप्रोच है सरकार का कि विरासत का गौरव उसको बनाए रखना, साथ ही साथ जो मैरिटाइम इंडिया विजन 2030 जिसकी बात अभी प्रोफेसर मिश्रा भी कर रहे थे, जिसमें

0: 150 से ज्यादा पहले हैं, 3 से 3.5 लाख करोड़ रुपए की, और जिसमें पिछले वर्ष का लगभग 70,000 करोड़ रुपए का पैकेज शिप बिल्डिंग का भी शामिल है। और न सिर्फ ये, मैरिटाइम अमृत काल विजन भी 2047, उसको भी सरकार ने ऑलरेडी उसके बारे में सोचा है एक दूरगामी सोच के साथ। कितना आपको ये अप्रोच, कहें कि ऑलराउंड अप्रोच लगता है?
1: बिल्कुल, एक चौतरफा सोच मेरे को दिखती है पूरे इसमें, क्योंकि आप देखिए, बंदरगाहों को डेवलप करना, कोस्टल कम्युनिटी को साथ में लेके चलना, जो प्रोफेसर साहब अभी बोल रहे थे कि कई बार मार्जिनलाइज हो जाती है जो लोकल लोग रहने वाले हैं
0: जी,
1: वो बड़ी बड़ी इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहा है लेकिन लोकल लोगों को उनकी सुविधाओं का, उनकी जरूरतों का थोड़ा सा ध्यान नहीं रख पाते हैं बहुत बार। लेकिन अगर आप देखें, ये सारे के सारे जो प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, चाहे MIB के तहत हो, चाहे MAKV के तहत हो, या चाहे फिर सागरमाला के तहत हो, पांचवा जो पिलर है सागरमाला का वो है कोस्टल कम्युनिटी डेवलपमेंट का पिलर है। मतलब पूरा का पूरा एक फंडामेंटल पिलर यही बोल रहा है कि जो हमारी जो कोस्टल कम्युनिटीज है, नॉट सिर्फ पोर्ट में नहीं, सिर्फ बंदरगाहों में नहीं, पूरी कोस्ट में, उन सबको साथ में लेके हमको डेवलप करना है
0: जी,
1: और उनका ध्यान जरूर रखना है। और उसके लिए अगर आप देखिए, तो अगर डेवलपमेंट कोस्ट में हो रही है, पोर्ट्स पे हो रही है, तो जो सरकार ने इतना जो बजट आउटले किया हुआ है 3.5 लाख करोड़ रुपए का MIV के लिए, और करीब करीब 80 लाख करोड़ रुपए का इसके लिए MAKV के लिए, तो ये सारा का सारा बजट इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, पोर्टलेट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट जो सागरमाला के तहत एक और पिलर माना जाता है, जिसमें इस इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट में कोस्टल इको जोन्स, कोस्टल इको यूनिट्स एंड साथ में इंडस्ट्रियल कॉरिडोर्स बनेंगे, उसके अंदर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स लगाई जाएंगी, और पोर्ट कनेक्टिविटी जो थोड़ी देर पहले जिक्र हुआ था कि कैसे की जाए, तो अभी जिक्र में यही आया कि इनलैंड वाटरवेज के थ्रू समझिए पोर्ट कनेक्टिविटी हो रही है, समझिए आपका जो नेशनल वाटरवे 1 बन रहा है जो वाराणसी और अल्दिया को कनेक्ट कर रहा है, तो हिंटरलैंड जो इंडिया की है वो उनको एक, जिसे बोलते हैं, उनका दरवाजा खुल गया है समुद्री रास्ते के लिए, क्योंकि इनलैंड वाटरवेज बननी शुरू हो गई हैं। और वैसे ही अगर आप देखे हैं, कुछ दिन पहले एक ट्रायल रन हुआ था एक वेस्टर्न डेडिकेटेड कॉरिडोर का, जिसमें एक कंटेनर ट्रेन चलाई गई थी जवाहरलाल नेहरू पोर्ट से लेकर बड़ोदरा तक। तो अभी आप देख रहे हो कि मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट में हिंदुस्तान ने जो पहला कदम लिया है, पहला देश है जिसने एक बिजली की जो ट्रेन है उसमें डबल डेकर कंटेनर सिस्टम अपनाया है, बाकी पूरे दुनिया में सिंगल कंटेनर सिस्टम जाते हैं, मतलब एक के ऊपर एक दो कंटेनर नहीं रखे जाते हैं। तो ये जो ट्रेन गई है, करीब मेरे को लगता है 300-350 कंटेनर यूनिट से लेके गई थी, काफी लंबी ट्रेन थी ये, और ये एक पायलट प्रोजेक्ट माना जा सकता है, और ये सारी चीजें इन 3 प्रोग्राम्स के तहत हो रही है। और अगर आप देखेंगे कि अपनी जो लोकल सिटीजन्स हैं, नागरिक हैं, उनकी जानकारी के लिए मैरिटाइम कॉम्प्लेक्स बन रहा है,
0: बिल्कुल
1: सागर खेड़ू जो सर्वांगी विकास योजना थी गुजरात की, वो एक मॉडल था, उसके हिसाब से पूरे देश में वो मॉडल अभी अडॉप्ट हो रहा है किसी ना किसी स्कीम में, और उसके बाद में जो पोर्ट्स बन रहे हैं, बड़े बड़े पोर्ट्स बन रहे हैं, इनफैक्ट विंजम पोर्ट है, लेकिन अगर आप वाधवान पोर्ट देखें महाराष्ट्र में जो बन रहा है, वो एक और पोर्ट है, गलातिया बे का जो पोर्ट है अभी, वो तो बहुत ही स्ट्रेटेजिक पोर्ट माना जाएगा जो अंडमान में बना रही है, जो करीब करीब सिर्फ 40 मील है मलाका स्टेट से
0: जी,
1: तो आप देखिए कि आप कैसे पूरा देश में हर जगह पे, पूरी देश की पूरी जो लैंडमास है वो कवर हो रहा है, जो भूमि है देश की, सब जगह कहीं ना कहीं मैरीटाइम डेवलपमेंट हो रही है, चौमुखी विकास लग रहा है
0: जी। बिल्कुल कॉमोडोर जोशी, प्रोफेसर मिश्रा, बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए, और हमारी समुद्री अर्थव्यवस्था के समग्र विकास से देश के आर्थिक सशक्तिकरण पर प्रकाश डालने के लिए
2: धन्यवाद
1: जी। शुक्रिया।
3: में आप सुन रहे थे परिचर्चा, समुद्र, बंदरगाह और नई आर्थिक शक्ति। इसमें भाग ले रहे थे रक्षा विश्लेषक कोमोडोर KD जोशी और रणनीतिक विश्लेषक प्रोफेसर राहुल मिश्रा। कार्यक्रम का संचालन कर रही थी सोनू सूद।
4: गुड इवनिंग डियर लिसनर्स, दिस इज आकाशवाणी जलंधर। Now you are going to listen to a talk by Dr. B.K. Sharma. The topic is India's rich cultural heritage.

0: कहानियाँ हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
2: मीडियम वेव 343.6 मीटर यानी 873 किलोहर्ट्ज़ ते आकाशवाणी दा जलंधर केंद्र है। हुण तुसी समात फरमाओ एक खूबसूरत गजल चंदन दास दी आवाज़ च।

0: हुण तुसी सुन रहे सी चंदन दास दी आवाज़ च ए खूबसूरत गज़ल। ए आकाशवाणी दा जलंधर केंद्र है।
1: स्रोतियां दी जानकारी लई सूचित कीता जांदा है कि दिल्ली तो विशेष प्रसारण होण कारण अज तो 16 अक्तूबर 2026 तक पंजाबी खबरां दे प्रसारण समय विच तब्दीली कीती गई है। इस अनुसार 16 अक्तूबर 2026 तक पंजाबी खबरां हुण शाम 7:30 बजे दी बजाय रात 8:30 बजे प्रसारित कीतियां जाणगियां। सारे स्रोतियां नूं बेनती है कि कृपा करके नवे प्रसारण समय दा ध्यान रखण।
2: साइबर फ्रॉड या धोखाधड़ी की जानकारी लई 1930 हेल्पलाइन नंबर डायल करो जां www.cybercrime.gov.in ते शिकायत दर्ज करवाओ।
0: ए आकाशवाणी दा जलंधर केंद्र है। आउन सुनदे हां मोहम्मद अजीज, कविता कृष्णमूर्ति ते साथियां दियां आवाज़ां च करमा फिल्म दा एगीत।

0: शहरों की गंदगी पड़ने लगी और लोग जो श्रद्धे से आते थे वो नाराज होकर वापस जाते थे। हमें के सबसे पहले जो पानी को बचाने का, पर्यावरण को बचाने का काम पवित्र वहीं से शुरू किया जाए। पद्म श्री दे नाल भारत सरकार ने नाम नॉमिनेट किया है, उसका हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। उन लोगों का धन्यवाद करते हैं जिन्हें इस प्रयास में अपना तन मन धन से सेवा की और सरकार ने इसको सम्मान दिया है।
1: साढ़े पंजाब के दूर दुराडे पिंडां दी मिट्टी विच अणगिणत अजे हीरे छुपे हुए ने जिन्हां ने अपनी पूरी जिंदगी साड़ी अमीर विरासत, कला, साहित ते रवायती खेड़ां दे लई खिला दित्ती। पिंडां दीआं छिंजां विच रवायती पहलवानी दे जौर दिखाउण वाले अखाड़ियां दे शेर, शास्त्र विद्या गतका दी मर्यादा नूं संभालण वाले सूरवीर ते साड़ियां विसर रहीआं इतिहासिक लोक गाथावां ते बोलीआं नूं अपणीआं हिक्कां विच सांभी बैठे साड़े सतिकारयोग बजुर्ग। जदों अजे गुमनाम रूहां नूं राष्ट्रीय मंच ते पद्म सन्मान नाल नवाजिया जांदा है तां इह केवल इक व्यक्ति दा सन्मान नहीं हुंदा, इह सन्मान हुंदा है साडी अणखी पंजाबीयत दा, साडे पिंडां दे सभ्याचार दा, साडी अमीर विरासत दा। इसे रंगमंच ते पंजाबी सिनेमा दी बुलंद आवाज वैटरन अदाकारा निर्मल ऋषि जी इस गल दा पुख्ता सबूत ने। जदों असीं खेडां दे मैदान वल तकदे हां तां मोगा दी धरती तों उठ के भारतीय महिला क्रिकेट टीम दी कप्तान बनी हरमनप्रीत कौर, जिन्हां दी इतिहासिक प्राप्ति साडा सिर माण नाल उच्चा कर दिंदी है। साल 2026 विच जदों उन्हां नूं खेडां दी दुनिया विच बेमिसाल योगदान लई पद्म श्री दा सन्मान मिलदा है तां इह सन्मान पंजाब दीआं तीआं दे अणथक जज्बे ते मैदान च गड्डे झंडियां दी अमर इबारत बन जांदा है।
2: सुश्री हरमनप्रीत कौर बोलर खेल क्रिकेट,
3: इट्स एन ऑनर एंड वेरी इमोशनल फीलिंग फॉर मी टू रिसीव पद्मश्री अवार्ड एंड आई वुड लाइक टू सिंसियरली थैंक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ऑनरेबल प्रेसिडेंट, मिनिस्ट्री ऑफ स्पोर्ट्स एंड सिलेक्शन कमेटी फॉर रिकग्नाइजिंग माई स्पोर्टिंग जर्नी एंड अचीवमेंट्स विद दिस ऑनर। थैंक यू सो मच।
1: पंजाब दे नसराली पिंड तो उठ के समुचे देश दे ही मैन बने स्वर्गी धर्मिंदर सिंह देओल दा नाम हर भारती दे दिल विच गूंजदा है। साल 2026 विच जदों उन्हां नूं मरण उपरंत देश दे दूजे सब तो वड्डे नागरिक सम्मान पद्म विभूषण नाल नवाजिया गया तां इह सम्मान भारती सिनेमा विच उन्हां दे 6 दहाकियां तो वध दे बेमिसाल योगदान ते करोड़ां दर्शकां दी अमुल प्यार दा सच्चा जशन बन गया। ते जदों असी पंजाब दी इस मिट्टी वाल देखते हां ता इंदरजीत सिंह सिद्धू दी दहाकियां दी निष्काम सेवा साडे सामने आउंदी है। बिना किसी प्रचार या दिखावे दे उन्होंने वातावरण दी संभाल ते समाजिक भलाई लई अपना जीवन अर्पण कर दिता।
4: एक साफ देश लई एक अनमोल संदेश, सरदार इंदरजीत सिंह सिद्धू, पद्मश्री
5: 2026। 500 साल पहला गुरु नानक देव जी ने कहा सी के वातावरण नु साफ रखना महान है कि पवित्र गुरु पानी पिता ते माता धरत महत। जे कोई अपनी मां ते गंदगी फैलाउंदा है ता उस तो माड़ा कोई नहीं है। शर्म दा काम कूड़ा फैलाउणा है अते इज्जत दा काम है कूड़े नु सांभणा, अते लोग कूड़ा फैलाउण विच शर्म महसूस नहीं करदे, ओ सफाई करण विच शर्म महसूस करदे हन।
4: एने इंदरजीत सिंह सिद्धू एक रिटायर्ड पंजाब पुलिस अधिकारी जिन्हां नु चंडीगढ़ दे लोग हर रोज खुद सड़कां साफ करते देखते हन। 6 जून 1938 नु पंजाब दे संगरूर जिले दे एक फौजी परिवार विच जन्मे इंदरजीत सिंह सिद्धू नु देश भक्ति अते अनुशासन विरासत विच मिलिया है। एक होशियार विद्यार्थी इंदरजीत सिंह सिद्धू 1961 विच पंजाब पुलिस विच भर्ती हो गए। ड्यूटी प्रति अपनी समर्पण भावना अते निस्वार्थ सेवा दे कारण उन्हां नु राष्ट्रपति पुलिस

0: ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਸੀ ਗੁਰਦਾਸ ਮਾਨ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ 'ਚ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬੀ ਗੀਤ। ਮੀਡੀਅਮ ਵੇਵ 343.6 ਮੀਟਰ ਯਾਨੀ 873 ਕਿਲੋ ਹਰਟਸ ਦੇ ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਦਾ ਇਹ ਜਲੰਧਰ ਕੇਂਦਰ ਹੈ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਰਾਤ ਦੇ 8:45 ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਤੋਂ ਕੁਛ ਪਲਾਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣੋਗੇ ਸਮਾਚਾਰ ਸੰਧਿਆ, 9 ਵਜੇ ਨਿਊਜ਼ ਐਟ 9 ਤੇ 9:15 ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸਪੋਟਲਾਈਟ ਸਾਡੇ ਦਿੱਲੀ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं विशाल शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी व्यापार, ऊर्जा, प्रौद्योगिकी, सुरक्षा तथा लोगों के बीच संबंधों के क्षेत्र में रणनीतिक साझेदारी प्रगाढ़ करने पर सहमत। केंद्रीय मंत्री एल मुरुगन ने मंत्रिपरिषद और राज्यसभा सदस्यता से इस्तीफा दिया। भारत ने दोहराया, लद्दाख देश का अभिन्न अंग, चीन के इंकार से ये तथ्य नहीं बदलेगा। व्यक्ति से व्यापारी चुनिंदा लेनदेन पर यूपीआई मर्चेंट डिस्काउंट रेट दिवाली के बाद लागू होगा। घरेलू शेयर बाजारों में 1.5% से अधिक की तेजी, सेंसेक्स 73,034 पर हुआ बंद। और आनंद कुमार वेल कुमार ने विश्व स्केट गेम्स की 500 मीटर

स्प्रिंट में कांस्य पदक जीता। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी ने द्विपक्षीय संबंधों में सकारात्मक गति को आगे बढ़ाने और रणनीतिक साझेदारी के प्रमुख क्षेत्रों में काम करने पर सहमति जताई है। इन क्षेत्रों में व्यापार, ऊर्जा, प्रौद्योगिकी, सुरक्षा और दोनों देशों के लोगों के बीच संपर्क शामिल हैं। दोनों नेताओं के बीच आज सौहार्दपूर्ण और सार्थक बातचीत हुई। भारत में कनाडा के उच्चायुक्त क्रिस्टोफर कुटूर ने प्रधानमंत्री मोदी और कनाडा के प्रधानमंत्री के बीच बेहतरीन तालमेल का उल्लेख करते हुए कहा कि वर्तमान में

0: औद्योगिकी, सुरक्षा और दोनों देशों के लोगों के बीच संपर्क शामिल हैं। दोनों नेताओं के बीच आज सौहार्दपूर्ण और सार्थक बातचीत हुई। भारत में कनाडा के उच्चायुक्त क्रिस्टोफर कुटूर ने प्रधानमंत्री मोदी और कनाडा के प्रधानमंत्री के बीच बेहतरीन तालमेल का उल्लेख करते हुए कहा कि वर्तमान में दोनों देशों के संबंध बहुत अच्छे हैं। नई दिल्ली में कनाडा की विदेश मंत्री अनिता आनंद की भारत यात्रा पर श्री कुटूर ने दोनों देशों के नेताओं के बीच हालिया मुलाकातों के बारे में बात की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सरकार ने अपने शासन के दृष्टिकोण और कार्य संस्कृति में पावर टू एम्पावर के सिद्धांत को अपनाया है। नई दिल्ली में ब्लूमबर्ग न्यू इकोनॉमी फोरम में श्री मोदी ने कहा कि भारत की प्रगति सामूहिक विकास और साझा अवसरों पर टिकी हुई है। प्रधानमंत्री ने कहा कि 21वीं सदी में प्रौद्योगिकी, डेटा, ज्ञान और नवाचार शक्ति के महत्वपूर्ण स्रोत बन गए हैं।
1: क्या नॉलेज केवल कुछ लोगों की ताकत बनी रहेगी या सबकी क्षमता बढ़ाएगी? यहीं से एक नया विचार जन्म लेता है और ये विचार है पावर टू एम्पावर, पावर टू कंट्रोल से आगे पावर टू एनेबल, पावर टू कॉम्पीट से आगे पावर टू कोलैबोरेट, पावर टू सक्सीड से आगे पावर टू हेल्प अदर सक्सीड।
0: प्रधानमंत्री ने भारत में ब्लूमबर्ग के 30 वर्ष पूरे होने पर उसे बधाई दी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा है कि आगामी केंद्रीय बजट की तैयारियों के दौरान सरकार दीर्घकालिक पूंजीगत लाभ कर हटाने के सुझावों पर विचार करने के लिए तैयार है। श्रीमती सीतारामन ने आज ब्लूमबर्ग न्यू इकोनॉमी फोरम के दौरान अपने संबोधन में ये बात कही। गृहमंत्री अमित शाह ने आज कहा कि बिम्स्टेक देशों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि इस क्षेत्र का कोई भी हिस्सा आतंकवादी नेटवर्क को पनाह लेने, सदस्य बनाने, ट्रेनिंग लेने, फंड जुटाने या पड़ोसी देशों के खिलाफ गतिविधियां करने का अवसर न दे। नई दिल्ली में बिम्स्टेक गृहमंत्रियों की पहली बैठक की अध्यक्षता करते हुए श्री शाह ने इस बात पर जोर दिया कि आतंकवाद के खिलाफ भारत की कतई बर्दाश्त न करने की नीति है। गृहमंत्री ने बिम्स्टेक देशों के बीच सहयोग के 5 अहम क्षेत्रों पर बल दिया, जिनमें ड्रग्स पर नियंत्रण, आतंकवाद रोधी और कानूनी सहयोग, भागे हुए अपराधियों की वापसी, साइबर सुरक्षा और साइबर अपराध की जांच तथा संस्थागत सहयोग और क्षमता निर्माण शामिल हैं। सूचना और प्रसारण तथा संसदीय कार्य राज्य मंत्री डॉ एल मुरुगन ने अपने पद और राज्यसभा की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लिखे पत्र में डॉ मुरुगन ने कहा कि दिहाड़ी मजदूर के परिवार से निकलकर केंद्रीय मंत्रिमंडल में सेवा करने तक का सफर उनके जीवन का सबसे बड़ा सौभाग्य है।
2: मैं तमिलनाडु में पार्टी को मजबूत करना चाहता हूं और 2029 के चुनाव की तैयारी के लिए जमीन तैयार करना चाहता हूं। प्रधानमंत्री ने हमेशा तमिल गौरव को वैश्विक स्तर पर पहुंचाया है। मैंने प्रधानमंत्री से अनुरोध किया है कि मुझे मंत्री पद से मुक्त कर तमिलनाडु भेजा जाए ताकि मैं वहां पार्टी को मजबूत करने के लिए काम कर सकूं।
3: तो स्ट्रेंथन द पार्टी।
0: डॉक्टर मुरुगन ने कहा कि मंत्रिपरिषद में पिछले 5 वर्षों के दौरान उन्हें प्रधानमंत्री मोदी के धैर्य, करुणा और असाधारण समर्पण को करीब से देखने का अवसर मिला। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
4: तो शुरू करें इन्वेस्टिंग का पार।

0: सेबी इन्वेस्टर जागरूकता पहल। जानकारी के लिए सेबी इन्वेस्टर वेबसाइट विजिट कीजिए, डाउनलोड सेबी सारथी ऐप।
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। भारत ने दोहराया है कि लद्दाख भारत का अभिन्न और अविभाज्य अंग है और चीन द्वारा किसी भी प्रकार का इंकार इस स्थापित तथ्य को बदल नहीं सकता है।
2: लद्दाख पर चीन की हालिया टिप्पणियों पर विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि गृह मंत्रालय की प्रेस विज्ञप्ति अपने आप में स्पष्ट है। विज्ञप्ति में केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख के 28 स्थानों की पहचान भारतीय सर्वेक्षण विभाग के आधिकारिक मानचित्र में मानक स्थान और भौगोलिक विशेषताओं के नामों के साथ की गई है। ये कार्य लद्दाख प्रशासन और स्थानीय पक्षों के परामर्श से किया गया है। श्री जायसवाल ने कहा कि इन स्थानों को आधिकारिक मानचित्र में दर्ज करने का उद्देश्य उनकी सटीक पहचान सुनिश्चित करना और आम लोगों में उनके बारे में जागरूकता बढ़ाना है। सुपर्णा

0: रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से प्रशांत कुमार।
1: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज नई दिल्ली में चेक गणराज्य के उप प्रधानमंत्री और उद्योग तथा व्यापार मंत्री कारेल हावलीचेक से मुलाकात की। श्री सिंह ने कहा कि दोनों देश आत्मनिर्भर भारत को बढ़ावा देने के लिए भारत चेक संयुक्त रक्षा समिति के तत्वावधान में सहयोग को आगे बढ़ाने पर सहमत हुए हैं। उन्होंने कहा कि भारत और चेक गणराज्य के बीच साझेदारी ऐतिहासिक और सांस्कृतिक संबंधों पर आधारित है।
2: भारत और चेक गणराज्य के बीच आपसी सम्मान, लोकतांत्रिक मूल्यों और नियम आधारित वैश्विक व्यवस्था के लिए प्रतिबद्धता पर आधारित गहरे और पुराने संबंध हैं। बदलते समय के साथ भी हमारी ये दोस्ती कायम रही है। दोनों देशों के बीच रक्षा सहयोग बढ़ाने की भी अपार संभावनाएं हैं।
1: संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा है कि विकसित भारत के लिए स्वस्थ, सशक्त और नशा मुक्त युवाओं की आवश्यकता है। नई दिल्ली में आज विकसित भारत के लिए नशा मुक्त युवा विषय पर युवा संवाद में श्री रिजिजू ने कहा कि जो समाज नशीले पदार्थों की लत की चपेट में आ जाता है, वहां पूरी पीढ़ी प्रभावित होती है।
3: जो भी समाज नशे की गिरफ्त में आता है, वहाँ एक पूरी पीढ़ी के बर्बाद होने का खतरा पैदा हो जाता है। अगर हम अपने समाज को नशे से मुक्त करने में सफल नहीं होते, तो विकसित भारत के लक्ष्य को हासिल करने में हमारे सामने एक बड़ी चुनौती होगी।
1: प्रधानमंत्री गतिशक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान को आज 5 वर्ष पूरे हो गए हैं। हमारे संवाददाता ने बताया है कि इस मास्टर प्लान की शुरुआत वर्ष 2021 में आज ही के दिन देश के बुनियादी ढांचे के विकास को नई दिशा देने के उद्देश्य से की गई थी।
4: पिछले 5 वर्षों में पीएम गतिशक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान एक एकीकृत डिजिटल नियोजन मंच से विकसित होकर एक व्यापक भूस्थानिक नियोजन प्रणाली बन गया है, जो अवसंरचना, आर्थिक और सामाजिक क्षेत्र के विकास में सहयोग कर रहा है। इसने जीआईएस आधारित मंच के माध्यम से विभिन्न मंत्रालयों, राज्यों और अवसंरचना नेटवर्क को एक साथ जोड़ा है। आज पीएम गतिशक्ति डिजिटल प्लेटफॉर्म पर 1800 से अधिक डेटा लेयर एकीकृत हैं, जिनमें 58 केंद्रीय मंत्रालयों और विभागों तथा सभी 36 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को शामिल किया गया है। पीएम गतिशक्ति के सिद्धांतों के आधार पर इस मंच पर 20 लाख करोड़ रुपए से अधिक की लागत वाली लगभग 400 अवसंरचना परियोजनाओं का मूल्यांकन किया जा चुका है। शिवा मिश्रा, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जनसेवा में 25 वर्ष पूरे कर लिए हैं। जनसेवा से देश सेवा उनकी इस यात्रा का मूल मंत्र रहा है। सेवा और सुशासन के इसी दृष्टिकोण के साथ सरकार भारत को 2047 तक विकसित राष्ट्र बनाने का लक्ष्य हासिल करने के लिए लगातार काम कर रही है। समावेशी विकास और सामाजिक सशक्तिकरण के जरिए लोगों के जीवन में बदलाव लाने के प्रयास किए जा रहे हैं। आज इस विशेष श्रृंखला में जानकारी दे रहे हैं कि जीएसटी परिषद जैसी पहलों के माध्यम से इस दृष्टिकोण को कैसे अमल में लाया जा रहा है।
5: 1 जुलाई 2017 को लागू हुआ वस्तु एवं सेवा कर जीएसटी देश में कर व्यवस्था को सरल बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम था। इसके तहत केंद्र और राज्यों के कई करों को एक ही कर व्यवस्था में शामिल किया गया। इससे एक देश एक कर की अवधारणा को बढ़ावा मिला। जीएसटी परिषद के प्रस्तावों का उद्देश्य जीएसटी पंजीकरण की प्रक्रिया को अधिक आसान, पारदर्शी और करदाताओं के अनुकूल बनाना है। पिछले साल जीएसटी में किए गए नए सुधारों के तहत जीएसटी परिषद ने 4 कर दरों 5, 12, 18 और 28% की जगह अब केवल 2 मुख्य दरें 5 और 18% कर दी गई है। नई दिल्ली में आज ब्लूमबर्ग न्यू इकोनॉमी फोरम को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि जीएसटी के माध्यम से सरकार ने करों की जटिल व्यवस्था को आसान कर दिया है।
6: जीएसटी के जरिए हमने टैक्सेस के एक कॉम्प्लेक्स वेब को नेशनल मार्केट में बदला है। बिजनेस से जुड़े सैकड़ों छोटी मोटी गलतियों को डिक्रिमिनलाइज किया गया है और भारत की रिफॉर्म एक्सप्रेस तेज गति से आगे बढ़ रही है।
5: नई दिल्ली में जीएसटी परिषद की 58वीं बैठक के बाद केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने कहा कि परिषद ने जीएसटी के तहत गिरफ्तारी के प्रावधान को हटाने की सिफारिश की है।
7: परिषद ने जीएसटी के अंतर्गत गिरफ्तारी के अधिकार को समाप्त करने की सिफारिश की है। इसके अलावा परिषद ने अभियोजन की सीमा 1 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 5 करोड़ रुपए करने का भी सुझाव दिया है। इसका मतलब है कि 5 करोड़ रुपए से कम की राशि के मामलों में अभियोजन नहीं चलाया जाएगा।
5: पिछले 9 वर्षों में कर प्रक्रिया को आसान बनाने और कर दरों में बदलाव से कामकाज में पारदर्शिता बढ़ी है और जवाबदेही सुनिश्चित हुई है। इससे आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के साथ साथ एक भारत श्रेष्ठ भारत के संकल्प को भी मजबूती मिली है। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: भारतीय जनता

0: पार्टी ने वरिष्ठ कांग्रेस नेता और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी को विशेष गहन पुनरीक्षण एसआईआर के मुद्दे पर देशवासियों को भ्रमित करने का आरोप लगाया है। आज नई दिल्ली में भाजपा के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन की सरकार ने संवैधानिक संस्थाओं को मजबूत किया है।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो एनडीए की सरकार ने इलेक्शन कमीशन को स्वावलंबी तरीके से देशहित और जनहित में अपने काम करने के लिए पूरी तरीके से ऑटोनॉमी दी है और कोई भी इलेक्शन कमिश्नर जो अपॉइंट हुआ हो उसको कोई राजनीतिक लाभ कभी भी देने का प्रयास नहीं किया।
0: यूपीआई पर ग्राहक से व्यापारी के बीच 2,000 रुपए से अधिक के लेन देन पर यूपीआई मर्चेंट डिस्काउंट रेट दीपावली के बाद लागू किया जाएगा। एक रिपोर्ट।
2: नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया NPI ने बताया कि यूपीआई और सेवा संचालन समिति ने त्योहारी सीजन को ध्यान में रखते हुए आज ये निर्णय लिया है। रिपोर्ट में कहा गया है कि इसकी तारीख की सूचना अलग से दी जाएगी। व्यक्ति से व्यक्ति के बीच सभी यूपीआई लेनदेन निशुल्क रहेंगे। MDR शुल्क केवल 2,000 रुपए से अधिक के ग्राहक से व्यापारी के बीच लेनदेन पर लागू होगा। व्यक्ति से व्यक्ति व्यापारी श्रेणी के अंतर्गत यूपीआई QR कोड के माध्यम से प्रति माह 1,00,000 रुपए तक प्राप्त करने वाले छोटे व्यापारियों और रेहड़ी पटरी वालों को पहले की तरह लेन देन पर कोई MDR शुल्क नहीं देना होगा। दीपेंद्र की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से वैष्णवी।
0: और अब आर्थिक जगत की खबरों के साथ हैं निखिल कुमार।
3: घरेलू शेयर बाजार आज 1.5% से अधिक की बढ़त के साथ बंद हुए। सेंसेक्स 1,109 अंक चढ़कर 73,034 पर पहुंच गया। निफ्टी 359 अंक का उछाल दर्ज करता हुआ 22,722 पर बंद हुआ। अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में रुपया $1 के मुकाबले 50 पैसे की मजबूती के साथ 95.28 रुपए पर बंद हुआ।
0: सऊदी अरब स्थित भारतीय दूतावास ने वहां रह रहे भारतीय नागरिकों को सतर्क रहने और हवाई हमले की स्थिति के दौरान घरों में रहने की सलाह दी है। रियाद स्थित भारतीय दूतावास ने भारतीय समुदाय की सहायता के लिए 24 घंटे सक्रिय नियंत्रण कक्ष भी स्थापित किया है। भारतीय नागरिकों को एयरलाइंस के संपर्क में रहने और उड़ानों की ताजा जानकारी लेने की सलाह दी गई है। भारत के आनंद कुमार वेलकुमार ने प्रागवे में विश्व स्केटिंग गेम्स में 500 मीटर स्प्रिंट स्पर्धा में कांस्य पदक जीता है। 23 वर्षीय स्पीड स्केटर ने 40.856 सेकंड में तीसरा स्थान हासिल किया। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी व्यापार, ऊर्जा, प्रौद्योगिकी, सुरक्षा तथा लोगों के बीच संबंधों के क्षेत्र में रणनीतिक साझेदारी प्रगाढ़ करने पर सहमत। केंद्रीय मंत्री एल मुरुगन ने मंत्रिपरिषद और राज्यसभा सदस्यता से इस्तीफा दिया। भारत ने दोहराया, लद्दाख देश का अभिन्न अंग, चीन के इंकार से ये तथ्य नहीं बदलेगा। व्यक्ति से व्यापारी चुनिंदा लेन देन पर यूपीआई मर्चेंट डिस्काउंट रेट दिवाली के बाद लागू होगा। घरेलू शेयर बाजारों में 1.5% से अधिक की तेजी। सेंसेक्स 73,034 पर हुआ बंद। और आनंद कुमार वेलकुमार ने विश्व स्केट गेम्स की 500 मीटर स्प्रिंट में कांस्य पदक जीता। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

0: Spotlight. This is Akash Mani. In the program Spotlight, now we bring you a discussion on Prime Minister's address at Bloomberg New Economy Forum. The participants are Deepshikha Sikarwar, economic analyst, and Shreya Pathak, anchor.
1: Hello and welcome to Spotlight. Prime Minister Narendra Modi addressing the 8th Bloomberg New Economy Forum in New Delhi today has highlighted the vision of power to empower. He emphasized that technological progress should benefit every section of society, not just a privileged few. Before moving any further, let's listen to what PM said.
2: देश के नागरिक की सुविधा बढ़ी है, गवर्नमेंट और सिटीजन के बीच सीधा रास्ता बना है। साथियों, पावर टू एम्पावर की यही सोच भारत की ग्लोबल एंगेजमेंट में भी दिखाई देती है। कोविड महामारी के दौरान वैक्सीन मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी का बहुत बड़ा महत्व था। तब सवाल था कि क्या इस ताकत का फायदा भी कुछ ही देशों तक सीमित रह जाएगा या फिर जिनके पास ये सुविधा और ये सामर्थ्य

हुण तुसी सुन रहे सी शास्त्रीय संगीत दे प्रोग्राम सुर साधना च उस्ताद सतविंदर पाल सिंह दा सारंगी ते वजाया राग बिहाग। मीडियम वेव 343.6 मीटर यानी 873 किलो हर्ट्स ते आकाशवाणी दा ई जलंधर केंद्र है। हुण वेला हो गया प्रोग्राम तुहाडी फरमाइश दा, सुनदे हां ए प्रोग्राम। आकाशवाणी सुनने वाले सारे ही दोस्तों का बहुत बहुत स्वागत, खुशामदीद ते जी आयां नूं। अज है जी 13 अक्तूबर। आज की तारीख भारतीय संगीत जगत के लिए बहुत भावुक रही है, क्योंकि 13 अक्तूबर 1987 नूं संगीत की दुनिया का वो चमकदा सितारा सानू हमेशा लिए अलविदा कह गया, जिसकी आवाज़ ने हर दिल नूं तड़कना सिखाया। जी हाँ, सब दे चहेते गायक किशोर कुमार जी। अज उन्हां दी बरसी ते असी उन्हां दे सदाबहार नगमियां दे जरिए उन्हां नूं याद कर रहे हां। वैसे तां कोई भी दिन अजिहा नहीं जांदा जिस दिन आकाशवाणी ते किशोर कुमार दी आवाज़ ना गूंजी होवे। कुछ कलाकार अपनी कला दे जरिए अमर हो जांदे ने, ते उन्हां दे विच्चों ही एक नाम है किशोर कुमार। अज दा साडा इह प्रोग्राम समर्पित रहेगा किशोर कुमार जी नूं। ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰੋ 0181-3242-173 ਨੰਬਰ 'ਤੇ, ਅਤੇ ਦੱਸੋ ਕਿ ਕਿਸ਼ੋਰ ਜੀ ਦਾ ਕਿਹੜਾ ਗੀਤ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਲ ਦੇ ਬੇਹੱਦ ਕਰੀਬ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪਲੇ ਕਰਾਂਗੇ ਸਾਡੇ ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਆਓ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿਸ਼ੋਰ ਜੀ ਦੇ ਗਾਏ ਇਸ ਖੂਬਸੂਰਤ ਗੀਤ ਦੇ ਨਾਲ, ਜੋ ਕਿ ਹੈ ਫਿਲਮ ਆਰਾਧਨਾ ਤੋਂ।

आकाशवाणी जलंधर ते प्रोग्राम चल रहा है तुहाडी फरमाइश और आज दा प्रोग्राम समर्पित है बेमिसाल गायक किशोर कुमार जी नू। किशोर जी सिर्फ एक महान गायक ही नहीं बल्कि एक बेहतरीन अदाकार संगीतकार ते निर्देशक भी सन। एक प्लेबैक गायक दे तौर ते किशोर कुमार जी ने 1940 तो 1987 दे विचकार 58 साल की उम्र दे विच 16,000 तो वध गाने गाए सी। उन्होंने फिल्म फेयर दे 8 बेस्ट मेल प्लेबैक सिंगर अवार्ड जीत के ना एक अनोखा रिकॉर्ड कायम कर दिता सी जो अज तक कोई तोड़ नहीं सकिया। ते साडे प्रोग्राम दे विच वी जिहड़े दोस्तां दे फोन मिलदे ने ना ओह वी रिकॉर्ड ही हुंदे ने।

0: ਇਸੇ ਹੀ ਗੀਤ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਅੱਜ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜੋ ਸਮਰਪਿਤ ਸੀ ਕਿਸ਼ੋਰ ਕੁਮਾਰ ਜੀ ਨੂੰ, ਤੁਹਾਡੀ ਫਰਮਾਇਸ਼ ਇੱਥੇ ਹੀ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮੀਡੀਅਮ ਵੇਵ 343.6 ਮੀਟਰ ਯਾਨੀ 873 ਕਿਲੋ ਹਰਟਸ 'ਤੇ ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਦਾ ਇਹ ਜਲੰਧਰ ਕੇਂਦਰ ਹੈ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਰਾਤ ਦੇ 11 ਵੱਜ ਰਹੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਤੋਂ ਕੁਛ ਹੀ ਪਲਾਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣੋਗੇ ਹਿੰਦੀ ਸਮਾਚਾਰ ਅਤੇ 11:05 'ਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਸਮਾਚਾਰ ਸਾਡੇ ਦਿੱਲੀ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं अमन यादव। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी ने द्विपक्षीय संबंधों में सकारात्मक गति को आगे बढ़ाने और रणनीतिक साझेदारी के प्रमुख क्षेत्रों में काम करने पर सहमति जताई है। इन क्षेत्रों में व्यापार, ऊर्जा, प्रौद्योगिकी, सुरक्षा और दोनों देशों के लोगों के बीच संपर्क शामिल हैं। दोनों नेताओं के बीच एक सार्थक वार्ता हुई। भारत में कनाडा के उच्चायुक्त क्रिस्टोफर कुटूर ने प्रधानमंत्री मोदी और कनाडा के प्रधानमंत्री के बीच बेहतरीन तालमेल का उल्लेख करते हुए कहा कि वर्तमान में दोनों देशों के संबंध बहुत अच्छे हैं। नई दिल्ली में कनाडा की विदेश मंत्री अनीता आनंद की भारत यात्रा पर श्री कुटूर ने दोनों देशों के नेताओं के बीच हालिया मुलाकातों के बारे में बात की। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने आज नई दिल्ली में कनाडा के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मंत्री मनिंदर सिद्धू के साथ भारत कनाडा व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौते पर बातचीत को आगे बढ़ाने के मुद्दे पर चर्चा की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सरकार ने अपने शासन के दृष्टिकोण और कार्य संस्कृति में पावर टू एम्पावर के सिद्धांत को अपनाया है। नई दिल्ली में ब्लूमबर्ग न्यू इकोनॉमी फोरम में श्री मोदी ने कहा कि भारत की प्रगति सामूहिक विकास और साझा अवसरों पर टिकी हुई है। प्रधानमंत्री ने कहा कि 21वीं सदी में प्रौद्योगिकी, डेटा, ज्ञान और नवाचार शक्ति के महत्वपूर्ण स्रोत बन गए हैं।
2: क्या नॉलेज केवल कुछ लोगों की ताकत बनी रहेगी या सबकी क्षमता बढ़ाएगी? यहीं से एक नया विचार जन्म लेता है और ये विचार है पावर टू एम्पावर, पावर टू कंट्रोल से आगे पावर टू एनेबल, पावर टू कॉम्पीट से आगे पावर टू कोलैबोरेट, पावर टू सक्सीड से आगे पावर टू हेल्प अदर सक्सीड।
1: नई दिल्ली में बिम्स्टेक के गृह मंत्रियों की पहली बैठक आज दिल्ली घोषणा को अपनाने के साथ संपन्न हुई। नई दिल्ली के बिम्स्टेक देशों ने सीमा पार आतंकवाद सहित इसके सभी रूपों की कड़ी निंदा की। घोषणा में सदस्य देशों ने संयुक्त राष्ट्र चार्टर और अंतर्राष्ट्रीय कानून के अनुरूप आतंकवाद तथा हिंसक उग्रवाद को व्यापक और निरंतर प्रयासों के जरिए रोकने, उसका मुकाबला करने और उसे समाप्त करने के अपने संकल्प को दोहराया। सदस्य देशों ने एक दूसरे से जुड़े सुरक्षित संकटों का सामना करने में सक्षम

विकसित और समृद्ध बिम्स्टेक क्षेत्र के निर्माण के लिए क्षेत्रीय सहयोग मजबूत करने की प्रतिबद्धता को दोहराया। सूचना और प्रसारण तथा संसदीय कार्य राज्य मंत्री डॉ एल मुर्गन ने अपने पद और राज्यसभा की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लिखे एक पत्र में डॉ मुर्गन ने कहा कि दिहाड़ी मजदूर के परिवार से निकलकर केंद्रीय मंत्रिमंडल में सेवा करने तक का उनका सफर एक सौभाग्य है। गृह मंत्री और भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता अमित शाह ने कहा है कि गुजरात में 3 नगर निकायों के चुनाव में भाजपा ने जीत हासिल की है। नई दिल्ली में संवाददाताओं में श्री शाह ने कहा कि 2 नगर पालिकाओं और 1 नगर निगम की कुल 104 सीट में से भाजपा ने 90 सीट जीती हैं। उन्होंने बताया कि उनके लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले गांधीनगर नगर निगम की 44 सीट से भाजपा को 38 सीट मिली है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी का जिक्र करते हुए श्री शाह ने कहा कि कांग्रेस को 41 वर्षों में भी एक चुनाव जीत नहीं मिली। उन्होंने कहा कि भाजपा और प्रधानमंत्री मोदी की लोकप्रियता को SIR से जोड़कर खारिज करने की जगह कांग्रेस का आत्ममंथन करना चाहिए। पश्चिम बंगाल की पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर आज शाम कोलकाता के कालीघाट स्थित उनके आवास के बाहर कथित तौर पर चाकू से हमला करने की कोशिश की गई। राज्यसभा सांसद डोला सेन के अनुसार तनिष्ठा साहा नाम की एक महिला ने कथित तौर पर ममता बनर्जी की साड़ी खींची और चाकू से उन्हें चोट पहुंचाने की कोशिश की। फिलहाल महिला को हिरासत में लेकर कालीघाट पुलिस के हवाले कर दिया गया है। भारत के आनंद कुमार वेलकुमार ने पैराग्वे में विश्व स्केटिंग गेम में 500 मीटर स्प्रिंट स्पर्धा में कांस्य पदक जीता है। 23 वर्ष स्पीड स्केटर ने 40.856 सेकंड में तीसरा स्थान हासिल किया। मौसम विभाग ने कल तमिलनाडु, पुदुचेरी, कराईकल, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, गिलगित बाल्टिस्तान और मुजफ्फराबाद में तेज़ बारिश की बिजली गिरने और तेज़ हवाएं चलने का अनुमान जताया है। विभाग ने दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, हिमाचल प्रदेश, पंजाब और पश्चिमी राजस्थान में ओलावृष्टि की भी संभावना व्यक्त की है। इसके साथ ही यह समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

सतगुर की सेवा सफल है, जे को करे चित लाए, मन चिंदिया फल पावना, हो मैं विचो जाए। ए फरमान सच्चे गुरु दी सेवा करन नाल प्राप्त हुए लाभ बारे दर्शाउंदा है। होर भी फरमान है कि सच्चे गुरु दी सेवा कीत्या हर प्रकार दे फल दी प्राप्ति हुंदी है। हिरदे नू लगी जन्मा जन्मांतरां दी मैल भी मिट जांदी है, दूर हो जांदी है, क्योंकि उस प्रभु दा नाम पतिता नू भी पावन कर दिंदा है। सतगुर सेव सर्ब फल पाए, जन्म जन्म की मैल मिटाए। इस शब्द का गायन कीता है भाई अमरीक सिंह ते उना दे रागी जत्थे ने।

0: सतगुर सेव सर्व फल पाए, जन्म जन्म की मैल मिटाए। इस शब्द का गायन किया सी भाई अमरीक सिंह ते उना दे रागी जत्थे ने। अकाल पुरख प्रभु दातार दा किन्ना वड्डा गुण है कि आप ही सृष्टि नू पैदा करके उस दे संचालन दी प्रतिपालना करन दी सेवा भी कर रहा है। भगत कबीर जी दे बचना विच ओ अकाल पुरख प्रभु प्यारियां ते ऐसी कृपा करदा है कि उना नू सेवक बना लेंदा है ते उस दे सेवक भी कुल खलकत दी सेवा विच आनंद महसूस करदे हन। अकाल पुरख आप जीवां नू जीवन मुक्त कर दिंदा है ते उस दे प्यारे संत उस अकाल पुरख प्रभु दा नाम प्राणियां पासों जपौंदे हन। कबीर सेवा कौ दुए पले, एक संत एक राम, राम जो दाता मुक्त को संत जपावे नाम। सुनदिया हरविंदर सिंह वीर होरां पासों वार्ता, कबीर सेवा को दुए पले, एक संत एक राम।
1: संसार विच विचरदिया अनेकां सज्जन गुरमुख जन अते सेवा नू समर्पित प्यार करन वाले इंसान अक्सर सानू मिलदे हन जिन्हां दा सारा जीवन दूसरियां लई ही बीतदा है, भाव के उन्हां ने भला ही करना है पर उपकार ही करना है। वह अपना जीवन तो भली भांत बिताउंदे ही हन परंतु दूसरियां दा जीवन भी सवार दे जांदे हन। ऐसे प्यार करन वालियां नू गुरमत दे पंधी आख्या जा सकता।

सा सेवा कीति सफल है, जित सतगुर का मन मन्ने, जा सतगुर का मन मन्या, तं पाप कसम्मल पन्ने। इस शब्द का गायन कीता है भाई गुरमीत सिंह शांत ते उना दे रागी जत्थे ने।

सा सेवा कीति सफल है, जित सतगुर का मन मन्ने, जा सतगुर का मन मन्या ता पाप कसम्मल पन्ने। इस शब्द दा गायन कीता सी भाई गुरमीत सिंह शांत ते उना दे रागी जत्थे ने। सच्चे गुरु दे सच्चे सेवक अकाल पुरख दे चरना विच नेता प्रति अरदास बेंतियां करदे ही रहंदे हन ते उस प्रभु दे सोने चरना दा जाप करदे रहंदे हन। सेवक की अरदास प्यारे, जप जीवा प्रभ चरण तुम्हारे। इस शब्द दा गायन कीता है भाई प्रभजोत सिंह बाली ते उना दे

सेवक की अरदास प्यारे, जप जीवा प्रभ चरण तुम्हारे। इस शब्द गायन की तसी पाई प्रभजोत सिंह बाली ते उन्हां दे रागी जत्थे ने।

पौड़ी ना उतरा निरंकार है ना लिए नरक ना जाइए जियो पिंड सब तिसदा देखा जाए अग वाइए जे लोड़ है चंगा अपना कर पुनो नहीं सदाइए जे जरवाणा पर हर जर वेस करें दी आइए।

पौड़ी भगत रै मन पाम दे दरसौन कीर्त गाम दे नानक करमा बहारे दर टहो न लैनी थाम दे एक मूल ना बुझण अपना अणहोदा आप गणाई दे हों ढाडी का नीच जात होर उत्तम जास दाई दे तिन मंगा जे तुझे त्याई दे तिन मंगा जे तुझे त्याई दे।

0: साहिब ससुआल जिनकी थी सो पार पिया ओ नानकर तेकियां बाता जोग करना सुकरया महला दूजा
1: जोग शब्दन ज्ञान शब्दन भेद शब्दन ब्राह्मण खत्री शब्दन सूर शब्दन सूदर शब्दन।

0: भगत बेण गुण रवे सहजा तुम रंग माने जोग ध्यान गुर ज्ञान बिना प्रभ अवर न जाने सुख देव परीक्षित गुण रवे गौतम रिख जस गायो कब कल सो जस गावो गुरु नानक कब कल सो जस गावो गुरु नानक नित नव तन जग छायो।
1: गुण गावे पयाल

0: अब चल अटल आदि पुरख फुरमायो।
1: गुण गावे रविदास भगत जय देव त्रिलोचन नाम।

0: गुण गावे नवनाथ तन गुरु साज समायो माता दा गुण रवे जेन चकर में कहायो गुण गावे बलरा सपत पताल बसंता परथर गुण उच्चरे सदा गुर संग रहंता दूर बाप रूर अंगरे गुरु नानक जस गायो कब कल सजस नानक गुर कट कट सहज समायो कब कल सजस नानक गुर कट कट सहज समायो
1: कवन जोग कौन ज्ञान ध्यान कवन विद

जोबन रूप माया मद माता बिचरत बिकल बड़ो अभिमानी पर धन पर अपवाद नार निंदा यह मीठी जी माहे हितानी बल बंच छप करत उपावा पेखत सुनत प्रभ अंतर जामी सील धर्म दया सुचना सित

0: आप नारायण कलातार जग में परवरयो निरंकार आकार ज्योत जग मंडल करयो जय कहते भरपूर शब्द दीपक दे पायो जय सिख संग रहो तत हर चरण मिलायो नान कुल निमल अवतरयो अंगद लहने संग हो गुरु अमरदास तारन तरन जन्म जन्म पासरन तो
1: जप तप सत संतोख पिख दर्शन गुर सिख शरण पर है ते उबर है छोड़ जमपुर की लिख भगत पाए भरपूर हृदय उच्च रह कर तार गुर गौ हर दरियाओ पलक डुबंत तारे नानक कुल निमल अवतरयो गुण कर तारे उच्च रह गुर अमरदास जिन सेवयो तिन दुख दरिद्र पर हर पर

हो सिर साहा दैसा हो जिस पास बैठिया सोही है सबना दावेसाहु सज्जन सच्चा पातशाहु सिर साहा दैसाहु जिस पास बैठिया सोही है सबना दावेसाहु सतनाम श्री वाहे गुरु साहिब जी सोरठ महला पहला जिस जल निध कारण तुम जग आए सो अमृत गुर पाही जी

0: नानक मैं शरीर का एक राजिक जुग जुग फिर उठाइया ज्ञानी बुझाता सतयुग रासन तो का धर्म के रतवा रहते राज का जोर रतवा द्वापे रतपे का सत गे रतवा मोहल्ला पहला
1: शाम कहे से तंबर स्वामी सच में ऐसे साच रहे सब को समावे रे कह रहा भरपूर राम नाम देवा मैं सुर नाय लय प्राश्त जाए नानक तो मुखंतर पाए जुज मैं जोर श्री चंद्रावल कान कृष्ण राधु भया पार जा गोपी लाया बिंद्रा बन में रंग की।